ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज रविवार है। शक संवत 1948 के अश्विन मास की 12वीं तिथि, तदनुसार 4 अक्टूबर 2026 सुबह के 5:53 और 40 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में मुख्य समाचार, पर उससे पहले आइए आपको दे दें आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का एक छोटा सा विवरण। छह बजकर दो मिनट पर सुनिएगा कार्यक्रम सुप्रभात, 7 बजे हिंदी में मुख्य समाचार। 7 बजकर 2 मिनट पर लेकर आएंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। 9 बजे हिंदी में मुख्य समाचार, 9 बजकर 2 मिनट पर आपका पसंदीदा कार्यक्रम दिल के तराने, गाने नए पुराने। 10 बजे अंग्रेजी में समाचार, 10 बजकर 2 मिनट पर वेस्टर्न म्यूजिक पर आधारित कार्यक्रम मैचलेस म्यूजिक आर। 11 बजे प्रस्तुत किया जाएगा कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। 12 बजे अंग्रेजी में मुख्य समाचार, 12 बजकर 2 मिनट पर वेस्टर्न म्यूजिक पर आधारित कार्यक्रम प्लेट कूल। 1 बजे हिंदी में मुख्य समाचार और 1 बजकर 2 मिनट पर लेकर आएंगे कार्यक्रम मेरा वाला सॉन्ग।

0: कोयल सी तेरी बोली, कु
1: आए हाय।
0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
3: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक
4: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता।
1: स्टूडियो में इस वक्त 6 बज गए हैं और प्रस्तुत है अब तक के मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, पिछले एक दशक में राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश और निरंतर सुधारों के माध्यम से देश की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, भारतीय न्याय संहिता का पूर्ण कार्यान्वयन भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में परिवर्तन लाएगा। 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले साल 7 से 9 जनवरी तक पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मिलकर करेगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मछार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजराइल के आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह पारंपरिक औपचारिक ज्योति प्रज्वलित करने के

लिए आमंत्रित किया है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर मिसाइल हमला, 5 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान हाई कमीशन के कार्यवाहक उच्चायुक्त को तलब किया। ये कदम पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रही गैरकानूनी घुसपैठ के खिलाफ भारत का कड़ा विरोध दर्ज कराने के लिए उठाया गया। यूक्रेन ने रूस के साथ संभावित युद्ध विराम के लिए भारत के प्रस्ताव को अब तक मिले प्राप्त 4 प्रस्तावों में सबसे व्यापक बताया। कहा, ऊर्जा अवसंरचना और काला सागर को शामिल करने वाले युद्ध विराम पर विचार करने के लिए तैयार है। शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के लिए अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्रों को मंजूरी दी है। उच्च शिक्षा विभाग ने शास्त्रीय असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत के अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना को स्वीकृति दी। क्रिकेट में वेस्टइंडीज ने न्यू चंडीगढ़ में तीसरे और आखिरी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 5 विकेट से हराया। एशियन गेम्स 2026 का आज समापन होने जा रहा है। भारत ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 85 पदक जीते। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

मुस्कुराइए, चाहे वक्त कैसा भी हो। आप उदास हो, खुश हो और परेशान हो, हैरान हो कि ये सब हो क्या रहा है। जैसा भी वक्त क्यों ना हो, मुस्कुराइए, क्योंकि ये जो कला है मुस्कुराने की, हंसने की, इसे ईश्वर ने आपको नवाजा है। तो इस कला में थोड़ी सी महारत आप हासिल कर लीजिए, क्योंकि मुस्कुराना सेहत के लिए बहुत अच्छा है, आपके लिए बहुत अच्छा है। और ये कला भी ईश्वर ने आप ही को दी है, आप ही को नवाजा है, क्योंकि कभी आपने जानवरों को हंसते हुए देखा है? नहीं ना। तो इसलिए खूब हंसें, खूब मुस्कुराएं और ज़िंदगी के हर पल का खूब आनंद लें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी रेनबो के सफ़र में। मैं हूं आपके साथ नूपुर कुलश्रेष्ठ और ये सफ़र है, जी हाँ, ये प्रोग्राम है सुप्रभात। और आज ही में जीना सबसे अच्छी बात है, क्योंकि जीवन को बदलने का जो काम है, अगर हम वो कल पर टाल रहे हैं

तो वो कल कभी नहीं आता, ये आप और मैं बहुत अच्छे से समझते हैं। ये जो मन है ना, हमेशा भविष्य के काल्पनिक समय का लालच देकर आज काम करने से रोकता है, और ऐसा होता जाता है, होता जाता है, और फिर वो काम टलता जाता है, और आप इसी उम्मीद में कि हम इस काम को कल कर लेंगे, वो कल कभी नहीं आता। तो काल करे सो आज करो, और आज करे सो आप। तो जो भी करना है बस उसे कर डालिए, सोचिए नहीं। जुड़ रही हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो के इसी सफर में। जी हाँ, आप सुन रहे हैं सुप्रभात।

इस भागते हुए मन को रोकना ही तो सबसे मुश्किल काम है ना। ये मन आपको चलाता रहता है, कभी यहाँ भागता है, कभी यहाँ भागता है, कभी यहाँ कभी वहाँ। इस भागते मन के साथ हम भी भागते रहते हैं, है ना। हम जानते हैं कि हमें क्या करना है, लेकिन हमारा इस मन पर काबू ही नहीं है। ये मन हमें काबू में रखता है, तो जहाँ पर ये वाइस वर्सा हो गया ना, कि ये मन आपको काबू में ना करे, आप इसको कह पाएं कि नहीं, ये नहीं करना है, ये करना है, और फिर देखिए सब कुछ कैसे बदलता है। बहुत छोटा सा ही तो ये जीवन है ना। और एक दिन को भी ना आप ऐसे हल्के में मत लीजिए, पल भर में सब कुछ बदल सकता है, और पल भर में सब कुछ बदल भी जाता है। आपके पास जो कुछ भी है और आप जो कुछ भी हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि आप आभार व्यक्त करें। याद रखें कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन है, उनको हमेशा प्यार करें। जीवन एक उपहार है, बहुत ही सुंदर सा उपहार है ना, और हम धन्य हैं कि ये जीवन हमें मिला है, तो इसलिए इसका, जी हाँ, कृतज्ञता का भाव जो है वो हमेशा रखें। हमेशा आप ग्रेटफुल हैं जिन चीज़ों के लिए, उनके लिए ग्रेटिट्यूड हमेशा रखें, और ज़िंदगी के सफ़र में यूं ही गाते गुनगुनाते मुस्कुराते हुए, और ये मन को अपने पर हावी ना होते हुए आगे बढ़ते जाएं, और फिर देखिए जो भी आपने अपने लिए सोचा है वो आप यकीनन कर पाएंगे, क्योंकि जीवन की संभावनाएं जो है ना वो असीम है। सीमा हम खुद खींच लेते हैं। जीवन बरस रहा है, कभी प्रेम की तरह, कभी खुशबू की तरह, कभी उसकी बूंदों सा ये हमारे जीवन में चमक रोशनी दे रहा है, चमक दे रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं, इन सबको रोक लेते हैं। ये जो रुकावट है वो बाहर है, हमारे भीतर नहीं है। इसलिए ये जो असीम संभावनाएं हैं उनका स्वागत कीजिए, खुश होकर मुस्कुराकर यूं ही गाते गुनगुनाते हुए।

ये आपकी जिंदगी की जो पतंग है ना, वो भी आपके हाथों में है। ये पतंग और जीवन का जो संबंध है ना, वो बहुत गहरा है, बहुत ही सुंदर है। जिस तरह से एक छोटी सी पतंग हवा के सहारे आसमान की ऊंचाइयों को छूती है, वैसे ही हमारा जीवन भी सपनों और उम्मीदों के सहारे आगे बढ़ता है। आसमान में रंग बिरंगी पतंगे देखकर हमारे मन में भी ऊंचे लक्ष्य हासिल करने की प्रेरणा जागती है ना। और ये पतंग, जिस तरीके से हम इसकी डोर जो है उसको उसको हम कह सकते हैं थामे रखते हैं ना उसकी डोर को, तो ये संयम की डोर है। पतंग चाहे कितनी भी ऊंची उड़ जाए, उसकी सफलता उसके हाथ में थमी डोर पर निर्भर करती है। और पतंग हवा के विपरीत दिशा में भी उड़कर ऊंचाई पाती है, मुश्किलों का सामना करती है ना। जैसे मनुष्य के जीवन में कठिनाइयां और संघर्ष आते हैं, तभी उसकी असली क्षमता और व्यक्तित्व का विकास होता है। ऐसे ही जब पतंग आसमान में उड़ती है, तो क्या चुनौतियां कम हैं? देखिए, हवा के विपरीत दिशा में भी जाकर ऊंचाइयों को छूती है। तो हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए इस पतंग से। हमारे जीवन में परिवार, संस्कार और नैतिक मूल्य उस डोर की तरह हैं जो हमें बहकने नहीं देते और जमीन से जुड़े

सकते हैं। तो क्या बात है ना, हर गाना, कोई भी गाना आप सुनते हैं तो कुछ ना कुछ कनेक्शन जो है वो मिल जाता है। आप जीवन से जुड़ा हुआ है सब कुछ, है ना। आप जब भी कोई गाना सुनते हैं उसके जो लिरिक्स हैं वो इतनी खूबसूरती से लिखे गए हैं, इतने खूबसूरत है कि आप कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जिसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। और आखिरकार लिखने वाले का खुद का भी तो अनुभव है ना, और हमारे सबके अनुभव कुछ खट्टे मीठे एक दूसरे से जुड़े हुए से हैं, और तभी हम एक दूसरे की भावनाओं को बहुत बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। तो समझना ज़रूरी है और एक दूसरे की भावनाओं को, और ये जो जीवन है हमें जीवन जो है उसको बहुत जटिल बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपने देखा होगा पतंग उड़ती है तो जो बच्चे होते हैं उनको क्या खुशी मिलती है उसे देखकर, है ना। तो वो हमें सिखाती है कि जीवन को जटिल बनाने के बजाय सहजता और आनंद के साथ जीना चाहिए, और उन बच्चों को देखना चाहिए जो उस पतंग को देखकर कितना खुश होते हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ इसी सफर में। कुछ ही देर में आप सुनेंगे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम समर्पण। मैं नुपुर कुलश्रेष्ठ आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।

0: आकाशवाणी रेनबो पर अब वक्त है स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम सत्य वचन का।
1: कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण।

कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूँ मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सुनते चले आ रहे हैं श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद का नवा अध्याय, जहाँ पर ब्रह्मा जी भगवान से वर मांग रहे हैं, क्योंकि भगवान ने उन्हें अपना लोक दिखाया, अपना रूप दिखाया, अपने पार्षदों के दर्शन कराए, और ये सब देखकर ब्रह्मा जी तो बहुत अभिभूत हो गए, भावुक हो गए। तब भगवान ने कहा कि तुम मुझसे वर मांगो। और अब ब्रह्मा जी अपने हृदय की बात श्री भगवान

कह रहे हैं। तो आज 26वें, 27वें, 28वें और 29वें श्लोक में ब्रह्मा जी ने अपने हृदय की बात कही है। कह रहे हैं, यथात्म माया योगेन नाना शक्त्युपबृंहितम विलुम्पन विसृजन गृहणन विभ्रदात्मानमात्मना किरस्य मोघ संकल्प ऊणनाभीर्यथोणुते तथा तद्विषयां धेहि मनीषां मयि माधवा भगवच्चिक्षतमहं कर्माणि यतन्द्रितः नेहमाना प्रजासर्गं बध्येयं यदनुग्रहात् यावत् सखा सख्युरिवेश ते कृतः प्रजा विसर्गे विभजामि भोजनम् अविक्लवस्ते परिकर्मणि स्थितो मामे समुन्नध मदो अजमानिना। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि प्रभु, आप माया के स्वामी हैं, आपका संकल्प कभी व्यर्थ नहीं होता। जैसे मकड़ी अपने मुंह से जाला निकालकर उसी में कीड़ा करती है, फिर उसे अपने में ही लीन कर लेती है, वैसे ही आप अपनी माया का आश्रय लेकर इस विविध शक्ति संपन्न जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने के लिए अपने आप को ही अनेक रूपों में बना देते हैं और कीड़ा करते हैं। इस प्रकार आप कैसे करते हैं? इस मर्म को मैं जान सकूं, ऐसा ज्ञान आप मुझे दीजिए। आप मुझ पर ऐसी भी कृपा कीजिए प्रभु कि मैं सजग रहकर सावधानी से आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं, और सृष्टि की रचना करते समय भी कर्तापन आदि के अभिमान से ना बंध जाऊं कि सृष्टि की रचना मैंने की है। हे प्रभु, आपने एक मित्र के समान हाथ पकड़कर मुझे अपना मित्र स्वीकार किया है, इसलिए जब मैं आपकी इस सेवा सृष्टि रचना में लगूं और सावधानी से पूर्व सृष्टि के गुण कर्मानुसार जीवों का विभाजन करने लगूं, तब कहीं अपने आप को जन्म कर्म से स्वतंत्र मानकर प्रबल अभिमान ना कर बैठूं। आह, ब्रह्मा जी कितने दीन हैं, कितने सजग हैं। वो भगवान के द्वारा प्रदत्त कार्य को करना चाहते हैं, सृष्टि करना चाहते हैं, क्योंकि ये भगवान की इच्छा है। लेकिन देखिए उन्हें कितना डर है, वो भयभीत है कि कहीं ऐसा ना हो जाए प्रभु कि मैं अपने आप को ही कर्ता मान लूं। तो एक भक्त में तो ऐसा भय होना स्वाभाविक ही है, वो कभी भी अपने उस अभिमान को त्यागना नहीं चाहता कि मैं प्रभु आपका सेवक हूं, आप मेरे स्वामी हैं, जो कुछ हो रहा है वो आपके द्वारा हो रहा है, मैं तो एक माध्यम हूं। और माध्यम कभी भी ये श्रेय नहीं ले सकता कि ये मैंने किया, ये ज्ञान मैंने दिया, ये सृष्टि मैंने की, जीवों का विभाजन मैंने किया। नहीं, ये सब आप कर रहे हैं, ये सब आप कर रहे हैं प्रभु। तो आप ही मुझे इस कर्तापन के अभिमान में फंसने से रोक सकते हैं। तो आप ये बताइए कि आप माया के स्वामी हैं और आपका संकल्प तो कभी भी व्यर्थ नहीं होता, आप सृष्टि करना चाहते हैं कर ही लेते हैं, और आप बिल्कुल अपनी सृष्टि से लिप्त नहीं होते। जैसे मकड़ी है, वो अपने मुंह से जाला निकालती है और उसमें खेलती रहती है, कोई और कीट वहां आए तो फंस जाएगा और मकड़ी का आहार बन जाएगा। लेकिन आप इस तरह की लीला करते हैं मकड़ी की तरह कि वो अपने मुंह से जाला निकालती है, खेलती है, फिर उसी में अपने को लीन कर लेती है, कहां गई मकड़ी पता ही नहीं चलता। ऐसे ही आप अपनी माया का आश्रय लेते हैं और फिर आप इस विविध शक्ति संपन्न जगत की उत्पत्ति, पालन, संहार करने के लिए अपने आप को ही अनेक रूपों में बना देते हैं। सही बात है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन फिर वो बलराम जी, शंकर्षण जी से चतुर्व्यूह का निर्माण, और फिर वो जो चतुर्व्यूह का विस्तार है तो उनसे भी महाविष्णु जी, और महाविष्णु जी से फिर गर्भोदक्षाई विष्णु जी, फिर क्षीरोदक्षाई विष्णु जी, और फिर कितने कितने अवतार, फिर मन्वंतर में अवतार, कल्प अवतार, गुण अवतार, लीला अवतार, कितने कितने अवतार लेते हैं भगवान, कितने कितने अवतार। तो एक है भगवान लेकिन अनेक विस्तार हो जाता है उनका।

अज्ञात नहीं है, आप सब जानते हैं। आप जानते हैं प्रभु कि मैं ना तो आपसे भोग चाहता, ना मोक्ष चाहता, ना ही कोई सिद्धि पाना चाहता हूं। आप तो बस ये वर दीजिए कि आपने जो अपना ये स्वरूप दिखाया है मुझे, मैं उसी स्वरूप का कुछ तत्व जानना चाहता हूं, मेरी यही मनोवासना पूर्ण कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने ऐसी प्रार्थना की और फिर उन्होंने प्रश्न भी कर लिया कि आप अरूपी हैं, अर्थात प्राकृत रूप रहित हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी तो भगवान के सामने बैठकर ही तो प्रश्न कर रहे हैं ना, इसलिए अरूप का अर्थ यहां निराकार नहीं हो सकता। यहां दो ही प्रकार के रूप की बात हो रही है, प्राकृत और अप्राकृत। विराट रूप श्री भगवान का प्राकृत रूप है, आपने सुना, और लीला विग्रह रूप उनका अप्राकृत रूप है, असल रूप है। तो ब्रह्मा जी ने श्री भगवान को अरूप ना कहकर अरूपी कहा है। उसका कारण यह है कि जीव के तरह प्राकृत रूप के साथ उनका नित्य संबंध नहीं है, है ना। विराट रूप प्राकृत है, उसके साथ उनका नित्य संबंध नहीं है। स्थूल ब्रह्मांड की सृष्टि के बाद योग साधक गणों की योग साधना के लिए, योग धारणा के लिए श्री भगवान के इस रूप की कल्पना की गई है। लीला विग्रह मगर जो भगवान का है वो प्राकृत है, और इस लीला विग्रह के साथ ही उनका नित्य संबंध है। इसीलिए ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया, परावरे यथा रूपे जानियाम ते त्वरूपिणः, कि प्रभु मैं आपके पर और अवर रूप के स्वरूप को जानना चाहता हूँ, यानी पर रूप अर्थात सूक्ष्म और अवर रूप अर्थात स्थूल। तो सूक्ष्म रूप तो अप्राकृत है भगवान का, और स्थूल रूप प्राकृत है, यही वो जानना चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने प्राकृत और अप्राकृत रूप को जानना चाहा है और फिर कहा, जगत के कार्य के संबंध में भी मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि मकड़ी जिस प्रकार अपनी ही देह से जाल निकालती है, कहीं बाहर से जाल नहीं लाती है, और फिर अपनी ही देह में उसे खींच लेती है, ऐसे ही आप अपनी माया शक्ति के प्रभाव से अपने से ही ये जगत सृष्टि करते हैं और अपने अंदर ही उसे लय कर लेते हैं। मैं आपकी इस माया के स्वरूप को भी जानना चाहता हूँ, हे दया सिंधु, मैं सृष्टि शक्ति प्राप्त करने की आशा में आपके स्वरूप और माया के तत्व को जानना नहीं चाहता हूँ। मैं तो ये सब इसलिए जानना चाहता हूँ कि आपका कृपादेश हो और मैं आपकी चरण की सेवा का अधिकार प्राप्त कर पाऊँ, बस यही आशा है, इसीलिए प्रश्न कर रहा हूँ। क्योंकि ये सत्य है प्रभु कि मेरे जैसे कितने कितने करोड़ करोड़ ब्रह्मा आपके चरण कमलों में अपने मस्तकों को रगड़ने के लिए लालायित होकर कितने कितने ब्रह्मांडों में कठोर तपस्या में निमग्न हैं। मैं तो बहुत ही तुच्छ हूँ प्रभु, चार मुख हैं मेरे सिर्फ, लेकिन आपके तो सेवक अनंत ब्रह्मांडों के अनंत ब्रह्मा हैं, और अनंत ब्रह्मांडों में अनंत ब्रह्मा के कितने कितने मुख हैं, किसी के 10 हैं, किसी के 100 हैं, किसी के 1000 हैं, किसी के 1,00,000 हैं। मैं तो बहुत ही क्षुद्र हूं प्रभु, क्षुद्र, तथापि मैं बहुत भाग्यशाली हूं क्योंकि आपने अपने हस्त कमलों को मेरे मस्तक पर रखा है और मुझे अपने परम कृपा का पात्र बना लिया है। हे प्रभु, मैंने आपकी कृपा से सृष्टि शक्ति प्राप्त करके यदि सृष्टि कार्य आरंभ किया तो कहीं कोई अभिमान आकर मुझे जकड़ ना ले, कहीं कर्तापन का अभिमान आकर मुझे आपसे अलग ना कर दे, आपके चरण संबंध से हटा ना दे, बस मेरी रक्षा कीजिएगा, रक्षा कीजिएगा, रक्षा कीजिएगा, यही और यही प्रार्थना है। आपको सुख देना ही मेरा काम में है। तो ब्रह्मा जी ने ये जो सारे प्रश्न पूछे हैं, शिव भगवान ने इन प्रश्नों का उत्तर 4 श्लोकों के रूप में दिया है और उसे ही चतुर्श्लोकी

0: भागवत जी कहा जाता है। ब्रह्मा जी के प्रश्न से परम प्रसन्न होकर श्री भगवान ब्रह्मा जी को कुछ बोलना चाहते थे और ब्रह्मा भी अपने मन की वासना को पूर्ण करने की आशा में प्रश्न करके भगवान के चरण प्रांत में निपतित हो गए, बैठ गए। तो देखिए कितना सुंदर वर्णन है। ब्रह्मा जी कहीं से खुद को सृष्टिकर्ता नहीं मानते। जब नारद जी ने कहा कि प्रभु मुझे तो आप ही भगवान दिखते हो, यहाँ तो आप ही आप हैं, बस ब्रह्मांड में सर्वोच्च लोक भी तो आप ही का है, तब याद है ना ब्रह्मा जी ने कहा था, अरे भाई ऐसा कह के मुझे लज्जित मत करो, ये सब तो भगवान की कृपा है, भगवान कर रहे हैं, भगवान। तो उन्हीं भगवान के बारे में बता रहे हैं ब्रह्मा जी नारद जी से और प्रश्न भी पूछ रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने जो प्रश्न पूछा उसमें जो विशिष्ट बात है, जहां पर उन्होंने ये कहा कि आपने प्रभु मुझे सखा माना है, जैसे सखा एक सखा के साथ व्यवहार करता है, आपने भी कर स्पर्श यानी अपने हस्त कमल के स्पर्श के द्वारा मुझसे वैसा ही व्यवहार किया है, इसीलिए आपसे ही प्रार्थना है कि मैं स्थिर चित्त होकर उत्तम मध्यम आदि भेद से प्रजा सृष्टि का कार्य करते हुए आपकी सेवा में जब तक नियुक्त रहूं तब तक मैं भी अपने आप को आपकी तरह स्वतंत्र भगवान, कि भाई मेरा भी जन्म नहीं हुआ, अगर भगवान का जन्म नहीं हुआ मैं भी तो नाभि कमल से प्रकट हुआ हूं, मैं कोई जन्मा हूं, ऐसा सोचकर कहीं मुझे गर्व ना हो जाए, आपकी तरह स्वराट ना समझूं, आपके समकक्ष ना समझूं, कभी ये अभिमान ना जाए। देखिए इंसान को अभिमान ही मारता है। अरे कोटि कोटि ब्रह्मा प्रकट होते हैं और अप्रकट भी हो जाते हैं, भगवान की ऐसी माया है, ऐसी शक्ति है। तो ब्रह्मा जी इस बात को समझ रहे हैं, इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि प्रभु रक्षा तो आपको करनी होगी। तो किस तरह से भगवान से वो ये याचना कर रहे हैं कि प्रभु आप मुझ में कोई अभिमान मत आने देना, इसी पर चर्चा करेंगे हम। सुनते रहिए समर्पण।
1: आप सुन रहे हैं कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम समर्पण। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इन फोन नंबर्स पर 9350530528, 9811256747 और 9818451411। आप अपने प्रश्न हमें लिखकर भेजिए या रिकॉर्ड कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9193278889। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारी वेबसाइट www.krishnapremdharatrust.com।
0: कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेमधारा और हम चर्चा कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी अपने मन की वासना को प्रकाशित किए भगवान के आगे और ये भी कह दिए कि यावत सखा सक्युरिवेश ते कृतः प्रजा विसर्गे विभजामि भोजनम, कि प्रभु जब मैं ये कार्य करूं तो यही समझूं कि मैं आपका दासाभास हूं। हूं तो मैं आपका दासाभास ही, यानी अपने आप को आपका दास कह दूं, ऐसी शक्ति मुझ में नहीं है, ऐसी पात्रता ऐसी योग्यता मुझ में नहीं है कि मैं सीधा अपने आप को आपका दास कह दूं, क्योंकि मैं तो दासाभास हूं, दास हूं ये नहीं कह सकता, दासाभास ही रह गया हूं, इतनी योग्यता नहीं है कि दास हो जाऊं। लेकिन तो भी आपने जो मुझसे व्यवहार किया मेरे साथ, आपने अपने हस्त कमलों से मुझे छुआ है, स्पर्श किया है और आपने अपने सखा की तरह मेरा समादर किया है, प्रेम किया है, इसलिए आपकी सख्य भक्ति को मैं प्राप्त

तो हे प्रभु, जैसे कोई अधिकारी यानी किसी कार्यकर्ता को उसके स्वामी ने अधिकार दे दिया हो कि तुम्हें ये काम करना है और इस पद पर इतने समय तक बने रहना है, तो प्रभु बिल्कुल वैसे ही अपनी परम आयु तक मैं प्रजागण की सृष्टि करूंगा और इस सृष्टि के विषय में ही परमेश्वर मुझे उत्तम मध्यम अधम इस रूप में भी लोगों का विभाग करना पड़ेगा। तो हे प्रभु, मैं इस कार्य में अव्याकुल यानी बिना आलस के सावधानी से नियुक्त रहूं और जब तक मेरा यह कार्य चले प्रभु, इतना अवश्य कर दीजिएगा कि मुझ में कोई उत्कट गर्व ना आने पाए, यानी मैं अपने आप को स्वतंत्र सृष्टिकर्ता पुरुष ऐसे ना समझूं, ये अभिमान मेरे चित्त में उदित ना हो। प्रभु देखिए, जीव जब किसी भगवान के भक्त के पास भी जाता है ना, तो उसे तीन प्रकार के कार्य करने होते हैं। पहला प्रणिपात, दूसरा परिप्रश्न, तीसरा सेवा, तब उसका उद्धार होता है, है ना। भगवान ने कहा है ना, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। ये तीन चीज, ये तीन वृत्तियां होनी ही होंगी। प्रणिपात यानी इतना आदर और इतनी श्रद्धा कि दंडवत प्रणाम कर सके, चरणों में गिर सके एक महत के भक्त के, और फिर प्रश्न कर सके और उनकी सेवा करें। तब जब वो किसी तत्वदर्शी महात्मा के पास पहुंचता है, तो वो तत्वदर्शी महात्मा देखता है, अरे वाह, जीव तो सेवनमुख है, यानी ये सेवा करना चाहता है। तब वो तत्व ज्ञान बताते हैं। तब क्या होता है, उस सेवोन्मुख जीव के हृदय में शुद्ध अहेतुक ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी, पहले उन्होंने देखा कि मैं तो हूं एक नाभि कमल पर, यानी कमल पर हूं, नाभि कमल पर हूं, ये तो उन्हें पता ही नहीं था, कमल पर हूं। तो उन्होंने बहुत चेष्टा की कि मैं जान सकूं मैं कौन हूं, और ये भी चेष्टा की कि मैं जान सकूं कि मैं किसके द्वारा निर्मित हूं। भगवत स्वरूप को जानना चाहा, पर वो ज्ञान वो प्राप्त कर नहीं पाए। अब उन्होंने भगवान की पूरी तरह से शरणागति ले ली है, पूरी तरह से, और सर्वतोभाव से शरणागत होकर श्री भगवत प्रीति रूपी सेवा और उस विषय में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी श्री भगवान ने अर्जुन जी को लक्ष्य करके यही उपदेश प्रदान किया था। श्री कृष्ण अर्जुन के सखा थे। युद्ध क्षेत्र में जब समस्त आत्मीय स्वजन अर्जुन जी के सामने आए और उन्हें लगा, हाय हाय, मुझे इनको मारना पड़ेगा, गुरु वर्ग आदि को मारना पड़ेगा, अपने भाइयों को मारना पड़ेगा, पितामह को मारना पड़ेगा, तब तो अर्जुन के हृदय में विकलता आ गई, व्याकुल हो गए। और इससे पहले तो उन्होंने सोचा ही था कि हाँ ये मैं कर लूंगा, लेकिन अब वो किं कर्तव्य विमूढ़ हो गए, धर्म सम्मूढ़ चित्त हो गए कि ये धर्म है कि अधर्म, असलियत में मुझे क्या करना चाहिए, प्रकृत कर्तव्य क्या है। तब वो स्थिर नहीं कर पा रहे थे। सामने थे सखा श्री कृष्ण, सखा थे, तो श्री कृष्ण को अर्जुन जी केवल सखा कहकर नहीं सोच रहे थे। उन्होंने श्री कृष्ण के निकट कहा था, मैं आपका शिष्य हूं, यानी शासन योग्य हूं, आप मुझ पर शासन कर सकते हैं, आप मुझे सुधार सकते हैं, उपदेश दे सकते हैं, भर्सना कर सकते हैं, ताड़न भर्सन कर सकते हैं, मैं शिष्य हूं, आपके पास शिक्षा लेने के लिए प्रस्तुत हूं, संपूर्ण भाव से मैं आपके शरणागत हूं, शिष्यस्ते अहम् शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम्, यही तो कहा था। ब्रह्मा जी भी इसी तरह भगवान को कह रहे हैं कि प्रभु, लौकिक सखा की तरह, दुनियावी सखा की तरह, दुनियावी बंधु की तरह, कर स्पर्श के द्वारा आपने जो मेरा सम्मान किया ना, इससे मेरे अंदर अभिमान आ सकता है,
अभिमान आ सकता है। तो इसलिए मुझ में अभिमान ना आए, यही मैं मांग रहा हूं आपसे। कभी मैं अपने आप को ये ना सोचूं कि अरे इस सृष्टि का सृष्टिकर्ता मैं हूं। कभी मेरे अंदर ये अहंकार ना आए कि मैं भी स्वतंत्र भगवान हूं। इसके लिए आपकी कृपा की याचना कर रहा हूं, क्योंकि आप ही यथार्थ सृष्टिकर्ता हैं प्रभु, आप ही यथार्थ हैं। सामने मुझे कोई देख रहा है, लेकिन असलियत तो आप ही है ना। मैं तो केवल यंत्र मात्र हूं, जैसे कि कोई लेंस के आगे, यानी दोपहर का समय हो, आसमान में सूर्य देव निकले हो और कोई लेंस को सूर्य की रोशनी के आगे रखे और नीचे कागज रखे लेंस के नीचे, तो धीरे धीरे क्या होता है, उस लेंस से सूर्य की किरणें जब प्रतिफलित होती हैं तो वो कागज जलने लगता है। तो वहां लेंस कारण नहीं हुआ कागज को जलाने का, सूर्य ही कारण है, मूल कारण। इस प्रकार ब्रह्मा जी भी भगवान की शक्ति से शक्तिमान होकर विश्व सृष्टि के सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं। तो श्री भगवान के प्रति नित्य शरणागति और भगवत कृपा के अलावा जीव इस उत्कट अहंकार के हाथों से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकता। नित्य शरणागति होनी चाहिए भगवान के प्रति, भगवान की कृपा होनी चाहिए, तभी अहंकार उसे ग्रास नहीं कर सकता। नहीं तो अहंकार तो बस बैठा ही हुआ है ताक में, कहां से कौन सा छिद्र हो कि वो जीव को ग्रास कर ले। जीव जैसे ही भगवान के चरणों का अनादर करके उनकी शरणागति का त्याग करता है, तभी उसके अंदर ये भाव आ जाता है, ये दुर्बुद्धि आ जाती है, मैं भी स्वतंत्र भगवान हूं। और हम ऐसे बहुत लोगों को देखते हैं जिनके लोग, जिनके शिष्य ही कह देते हैं अरे ये तो भगवान है, अरे हमारे ये जो हैं महात्मा जी ये तो भगवान है, ये भगवान है भगवान। अरे भगवान कहीं बूढ़ा होता है भाई? वो तो नित्य किशोर है, नित्य सुंदर। निर्विशेषवादीगण और असुर इसी उत्कट मद के कारण पतित हो जाते हैं, क्योंकि वो भगवान की नित्य शरणागति नहीं ले पाते हैं। असुरगण क्या करते हैं, वो भगवान की शरणागति लेते ही नहीं है। जब वो तपस्या भी करते हैं और उन्हें कोई वर भी मिल जाता है, तो भी सोचते हैं कि मैं ही हूं अब सब कुछ, तो उनका पतन हो जाता है। इसीलिए ब्रह्मा जी ही है आदि गुरु, आदि गुरु ब्रह्मा जी आदि गुरु हैं, और भगवान के निकट ये प्रार्थना कर रहे हैं, शरणागति रूपी प्रार्थना। और भगवान भी देख रहे हैं कि भाई ये तो बड़े ही दीन हैं और इनके अंदर श्रवण करने की योग्यता है, इसलिए अब भगवान उनसे चतुर्श्लोकी भागवत का वर्णन करेंगे। चार श्लोक यानी भागवत जी के चार श्लोक, यानी चार श्लोकों में ही पूरी भागवत जी कह दी है भगवान ने, जिसका विस्तार सुखदेव गोस्वामी जी ने महाराज परीक्षित जी के सामने किया है ना। तो बहुत ही सुंदर वर्णन रहेगा, और इसी कथा को जारी रखेंगे हम। सुनते रहिए समर्पण। इसी के साथ अब आज्ञा दीजिए प्रेम धारा को, कीजिए स्वीकार मेरा नमस्कार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी,
1: आपकी वाणी आकाशवाणी पर पेश हैं इस वक्त मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले एक दशक में राजकोषीय विवेक, अवसंरचना, निवेश और निरंतर सुधारों के माध्यम से देश की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता का पूर्ण कार्यान्वयन भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में परिवर्तन लाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अलग अलग मंत्रालयों से जुड़ी कई संसदीय समिति का पुनर्गठन किया है। भाजपा सांसद राधामोहन सिंह रक्षा समिति के अध्यक्ष और राजीव प्रताप रूडी को जल संसाधन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले साल 7 से 9 जनवरी तक पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मिलकर करेगा। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसराइल के आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह पारंपरिक

औपचारिक ज्योति प्रज्वलित करने के लिए आमंत्रित किया है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर मिसाइल हमला, 5 नागरिक भारतीय नागरिक को बचाया गया। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान हाई कमीशन के कार्यवाहक उच्चायुक्त को तलब किया। यह पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रही गैरकानूनी घुसपैठ के खिलाफ भारत का कड़ा विरोध दर्ज कराने के लिए उठाया गया है। यूक्रेन ने रूस के साथ संभावित युद्ध विराम के लिए भारत के प्रस्ताव को अब तक मिले प्राप्त 4 प्रस्तावों में सबसे व्यापक बताया। कहा, ऊर्जा अवसंरचना और काला सागर को शामिल करने वाले युद्ध विराम पर विचार करने के लिए तैयार है। शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्रों को मंजूरी दी है। उच्च शिक्षा विभाग ने शास्त्रीय असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत के अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना को स्वीकृति दी। क्रिकेट में वेस्टइंडीज ने न्यू चंडीगढ़ में तीसरे और आखिरी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 5 विकेट से हराया। एशियन गेम्स 2026 का समापन समारोह जापान में नागोया सिटी के मिजुआ पार्क एथलेटिक स्टेडियम में होगा। भारतीय समयानुसार यह शाम 6 बजे शुरू होगा। समारोह में भारत की ध्वजवाहक महिला निशानेबाज नीरू ढांडा होंगी। भारत ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 85 पदक जीते हैं। इनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत पदक तालिका में 4th स्थान पर रहा। ये थे आकाशवाणी FM रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

आपकी वाणी आकाशवाणी। आपकी वाणी आकाशवाणी पर अजी मैंने कहा नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते, यानी कि महीना कौन सा शुरू हो गया साहब? अक्टूबर वाला, भक्ति भाव वाला महीना है, हार पर जीत वाला महीना है, है ना। मतलब त्योहारे का जो सीजन है वो शुरू हो चुका है, बाजारों के अंदर अभी से ही भीड़ भाड़ होनी शुरू हो चुकी है, चेहरों पर चमक वाले महीने की शुरुआत हो चुकी है साहब। और उससे भी बड़ी बात कि ये अक्टूबर के महीने का पहला शनिवार, पहला इतवार आप सब लोगों के साथ में आ गया है। कल शनिवार चला गया, आज इतवार आ गया, तो मतलब वीकेंड भी हो गया, छुट्टियां भी हैं, और इसके साथ साथ कई सारे काम भी आपके अटके हुए हैं। तो यहाँ कौन सा हम भी रुकने वाले, तो हम भी आपके साथ शुरू हो चुके हैं आज का जो प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर का, लेकर इस महीने के पहले रविवार आप लोगों के साथ में है। रेडियो पर जो आवाज़ आ रही है, मेरा नाम है मनीष आज़ाद, रेडियो वाला। तो शुरू करते हैं आज का पीरोग्राम। पीरोग्राम पीरोग्राम ये कैसे, अरे कैसे भाई, ऐसे चलेगा नहीं।

और डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग, अरे उन्होंने तो ऐसे बोला था डिंग डंग डिंग डोले, तो फिर अब हम भी डिंग डंग डिंग डंग। तो पर क्या रहेगा खास आज के प्रोग्राम में लेकर चलते हैं आपको, यानी कि 4 अक्टूबर की तारीख है साहब, जाने की आज की 4 तारीख का इतिहास क्या कहता है। मनाएंगे आपका हैप्पी वाला बर्थडे, कि आप अपना आज हैप्पी वाला बर्थडे किन महान लोगों के साथ, अपने सेलिब्रिटी लोगों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। खास दिवस के साथ साथ आपको यह बताएंगे कि आज कौन कौन से खास दिवस है, कौन कौन से सप्ताह की शुरुआत हो चुकी है, उसमें क्या कुछ है, और फिर क्यों भारत ने उस समय डेविस कप में जाने से कर दिया था इंकार, इसके पीछे की क्या बात है, वो भी आपको हम इतिहास के पन्नों पर जब नजर डालेंगे तो आपको बताएंगे। खास याद करेंगे व्यक्तियों को जिन्होंने बहुत कुछ अहम अहम रोल अदा किए अपने अपने जिंदगी के अंदर, और किसने कह दिया कि मैं ले रहा हूं आज के दिन ही संन्यास। तो फिर बस सुनते रहिए, बने रहिए और आकाशवाणी रेनबो पर सुनते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। मेरा नाम है मनीष आजाद, रेडियो वाला आपके साथ में, यहां पर हम हैं वहां पर तुम हो, भैया कैसे कैसे बात करेंगे। मोनाली ठाकुर

Right. मैं भी इतना ही सीखा बस। वो भाई साहब क्या बोल के चले गए, लेकिन हाँ कोरस में भी आपका नाम आना चाहिए, क्योंकि इन लोगों की भी साहब बड़ी अहमियत होती है कभी कभी, क्योंकि गाना तो तभी कंप्लीट होगा। चलिए, लेकिन जिंदगी आपकी कंप्लीट तब हो सकती है जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, लोगों का साथ देंगे और उनको भी अपने साथ साथ में आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते रहेंगे। जिस तरह से आज का इतिहास क्या कहता है साहब, 4 अक्टूबर की तारीख है और 4 अक्टूबर का अगर इतिहास आपको पता चल जाए, हमने आपको बताया था कि आज ही के दिन क्यों भारत ने डेविस कप में जाने से मना कर दिया था। तो साहब बात है 1974 की, 4 अक्टूबर की, कि भारत ने 1974 में दक्षिण अफ्रीका और की सरकार, जो उस समय की सरकार थी वहां पर, सरकार की रंगभेदी नीति का प्रतिरोध करने के लिए वहां जाकर डेविस कप में भाग लेने से कर दिया था साहब इनकार। 1977 की बात कर लेते हैं, 4 अक्टूबर की, जब भारत के विदेश मंत्री उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी हुआ करते थे, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक को हिंदी में उन्होंने संबोधित किया और हिंदी में दिया गया यह पहला संबोधन था। मैंने कहा ना, इतिहास रोजाना रोजाना रोजाना आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, कुछ कुछ आगे बढ़ता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं कि जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो नोबेल पुरस्कार समिति ने 2011 को भौतिकी क्षेत्र में अमूल्य योगदान के लिए अमेरिका के सॉल पर्लमटर और एडम रिस्क तथा अमेरिकी मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक जो थे ब्रायन स्मिथ को वहां पे 2011 का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की थी आज ही के दिन, यानी कि 4 अक्टूबर की तारीख थी वो भी। अलग अलग अलग अलग लोगों के साथ साथ अलग अलग जब चीज़ें होती हैं तो उसमें बड़ा ध्यान रखने वाली बात हो जाती है कि 2011 की ही बात करते हैं, जब 2011 के अंदर दुनिया के नंबर एक डबल ट्रैप निशानेबाज भारत के रोंजन सोडी ने 2011 में ही संयुक्त अरब अमीरात के अल आइन में विश्व का मुकाबले में ओलंपिक पदक विजेता चीन के विन युआन को पराजित करके अपने खिताब की रक्षा करने वाले दुनिया के वो पहले खिलाड़ी बन गए थे साहब। और रोजगार की तलाश में 2011 की बात करें, ब्रिटेन आने वाले विदेशी चिकित्सकों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा में काम करने के लिए एक अंग्रेजी परीक्षा पास करना अनिवार्य कर दिया था वहां की सरकार ने आज ही के दिन। और साहब जिन्होंने घोषणा करी संन्यास लेने की वो थे फॉर्मूला 1 के बादशाह माइकल शूमाकर ने 2012 4 अक्टूबर को संन्यास ले लिया था। इतिहास रोजाना कुछ ना कुछ नया बनेगा। आज भी अगर आपके घर में कुछ नई चीज आ रही हो, आज आपके घर में कुछ शायद वाइट वॉश हो रहा हो, आज आपके घर के अंदर कोई नया उपहार आ रहा हो, आज शायद किसी की कहीं की नौकरी की बात हो रही हो, तो साहब ये भी इतिहास के पन्नों पे कुछ ना कुछ लिखा ही जाएगा। तो ऐसे ही इतिहास रोज बनते हैं और रोज धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहते हैं, इसलिए हर दिन कुछ नया कीजिए ताकि आपको याद रह जाए, और जब आपकी यादों के अंदर आप वो लिखेंगे कि हाँ जी हमारे साथ भी ऐसा है, याद रखेंगे आप। सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो, गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर का सफर है आपके साथ, बंदा मनीष आजाद।

जी प्रोफेसर तो हम भी हैं थोड़े से अपने अपने फील्ड के। अब आप भी अगर प्रोफेसर हैं तो साहब देखिए ना, दोनों के दोनों ही पढ़ाने वाली बात करते हैं, लेकिन फिलहाल शो को आगे बढ़ाने वाली बात करते हैं, क्योंकि आज का जो दिवस है साहब बहुत अच्छा है, क्योंकि आज जिस दिवस की हम बात कर रहे हैं उनकी जो थीम है 2026 की, सी द वर्ल्ड थ्रू देयर आइज, यानी कि उनकी नजरों से दुनिया को देखो। विश्व पशु दिवस की हम बात कर रहे हैं, वर्ल्ड एनिमल डे है साहब आज। हर साल 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस जो मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है कि इस दिन का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में जानवरों की स्थिति और उनके कल्याण यानी कि एनिमल वेलफेयर में सुधार करना है। अब अगर देखा जाए तो इस थीम को अगर आप देखोगे, जिस तरह से उन्होंने ये थीम बताई है कि उनकी नजरों से भी दुनिया को देखो, यानी कि इसका महत्व क्या कहता है, इसका महत्व यह कहता है साहब कि अगर इंसानों को यह सोचने के लिए प्रेरित करती है कि यदि वे जानवर हैं तो क्या है साहब, है आपके घर में वो पेट यदि वे जानवरों की जगह लेते हैं तो इस दुनिया को वो कैसे देखते हैं, जिससे जानवरों के प्रति करुणा और भी बढ़ जाए। इसीलिए साहब इस दिवस की शुरुआत की गई है। तो ध्यान रखिए, विश्व पशु कल्याण दिवस भी इसको कह सकते हैं आप इसको कहें कि विश्व पशु संरक्षण दिवस भी आप इसको कह सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात है साहब, और इससे भी बहुत बड़ी बात है कि जो राष्ट्रीय वन्यजीव जो सप्ताह है 2026 का, 2 अक्टूबर से शुरू होकर 8 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। इस वर्ष का जो थीम है कि आवासों को जोड़ना, वन्य जीवों को फलने फूलने देना चाहिए भी उनको भी, 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर

तक चलेगा। इसका उद्देश्य अगर आप देखोगे तो खंडित वनों और प्राकृतिक आवासों को आपस में जोड़ना, ताकि जो वन्य जीव है सुरक्षित रूप से आ जा सके और मानव जो है वन्य जीव संघर्ष को कम किया जा सके। अब इसका आयोजन आप देखेंगे ना तो बहुत जगह पर, अलग अलग जगह पर किया जा रहा है। कहीं पर इसके वो कुछ स्टोरी राइटिंग है, कहीं पर वो ऐसे राइटिंग है, नुक्कड़ नाटक है, जागरूकता रैलियां हैं, अगर आप देखें अलग अलग जगह पर। लेकिन इसके लिए बहुत जोर देकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि आप अगर इसको देखेंगे तो उन्होंने भी इस पर जोर दिया है कि वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा, प्रकृति को संतुलन बनाए रखने के लिए आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए एक मूल्यवान विरासत को सुरक्षित रखने हेतु ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। उन्होंने अपने संदेश के अंदर कहा है कि नागरिकों से वन्य जीवन और उनके आवासों की रक्षा में योगदान देने का उन्होंने आग्रह भी किया है। और उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जानवरों की सुरक्षित आवाजाही जो है, पर उनकी परिस्थिति जो संतुलन बनाए रखने के लिए जुड़े आवास वन्य जीव गलियारे जो आवश्यक है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों के सहयोग से वन्य जीव गलियारों की पहचान और संरक्षण के लिए निरंतर जो है वो कार्य कर रही है। तो अगर आपके भी घर में कोई पेट हैं तो बस एक वो जो थीम है ना, थीम वाली बात कि उनकी नजरों से भी दुनिया को आप देखिए। ठीक है, सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो पर प्रोग्राम। भाई रेडियो पर जो आवाज आ रही है वो बंदे की आ रही है, कैसी लग रही है आपको जो मैसेज है ना वो देख देख के बताएंगे आप। 9867107070 मेरा नंबर है, मैं इसी नंबर पे ही मैं बैठे मेरे को मैसेज भेज के बोलेंगे।

0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल। रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

आकाशवाणी रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, और मेरा नाम है आपके साथ मनीष आजाद रेडियो वाला। साहब देखिए, कभी कभी कहते हैं कि कुछ कुछ आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ लोग ऐसे आते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भारत की धरती पर आते हैं और बहुत ही बड़ा नाम बना के जाते हैं। साहब हम बात कर रहे हैं आज जिनकी जयंती है रामचंद्र शुक्ल जी की, और कहते हैं कि 20वीं शताब्दी के वो हिंदी के प्रमुख साहित्यकारों में से एक थे और उनके द्वारा लिखे गए हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो सब बहुत ही ज़्यादा प्रमुख है, बहुत ही ज़्यादा। अगर जितने भी आप अगर जो सिलेबस पढ़ते होंगे उनमें भी इनके द्वारा लिखे गए हिंदी साहित्य का इतिहास आप

अंग्रेजी भी सीख डाली और उसके अंदर अपने आप को इतना दक्ष कर दिया कि आज जो कहते हैं ना कि हिंदी की जो प्रमुख साहित्यकार में, और जिस तरह से हम कह रहे हैं 20वीं शताब्दी के प्रमुख साहित्यकारों में से एक, रामचंद्र शुक्ल जी, आज आपकी जयंती है। हम आकाशवाणी की पूरी टीम की तरफ से शत शत नमन करते हैं।

हाँ जी, तो आप ये सोच रहे हैं कि आज की तारीख में आप अपना हैप्पी वाला बर्थडे किनके साथ सेलिब्रेट करेंगे? तो आप अपना जो हैली वाला बर्थडे हैप्पी वाला बर्थडे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं किनके साथ? आप कर रहे हैं सोहा अली खान के साथ, उनका भी आज हैप्पी वाला बर्थडे है साहब। आपको नाम याद होगा श्वेता तिवारी, है ना, वो बिग बॉस में कई सारी वो सीरियल्स के अंदर वो काम उन्होंने किया है। तो आज इनका भी हैप्पी वाला बर्थडे, अगर वो आप उनको पसंद करते हैं तो। भाई देखिए, अपना तो दिल ये कहता है कि साहब हम हैं भारतीय, जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया ही जीतेगा, कोई बात नहीं, कल का मैच हार गए कोई बात नहीं, लेकिन उससे पहले वाले दो मैच क्यों, वेस्ट इंडीज कैसे कैसे करके धोया था, है कल का मैच जीत गया कोई बात नहीं, लेकिन हाँ क्रिकेटर की दुनिया की अगर बात करें तो ऋषभ पंत साहब, अगर आप उनके फैन हैं तो उनका भी हैप्पी वाला बर्थडे है साहब। और अब हम जिनकी बात कर रहे हैं वो हैं साहब हैप्पी वाला बर्थडे में शैलेंद्र सिंह साहब की हम बात कर रहे हैं, आज उनका हैप्पी वाला बर्थडे है। और शैलेंद्र कहा जाता, मतलब उस समय कहा जाता था कि जो ऋषि कपूर साहब की जो आवाज़ होती थी वो इनके ही ऊपर बिल्कुल फिट फिट बैठती थी, या ये कह सकते हैं इनकी आवाज़ उनके ऊपर फिट बैठती थी, दोनों की तरफ से आपका बात कर सकते हैं ना। तो आप उनको कहें कि वो सिंगर तो थे ही थे, लेकिन उन्होंने एक्टिंग भी की है साहब, यस, और कुछ कुछ उन्होंने मराठी वाले गाने भी गाए हैं। अगर आप देखेंगे बॉबी फिल्म के जितने भी गाने हैं वो सभी के सभी उन्होंने गाए हैं, है ना। फिल्म में बात करें, दो जासूस फिल्म आई थी उसके अंदर भी उन्होंने रोल निभाया था, गिन्नी और जॉनी फिल्म आई थी उन्होंने उसके अंदर भी उन्होंने काम, जनता हवलदार फिल्म आई थी उसके अंदर वो डॉक्टर का रोल किया था, आपको ये याद होगी वो फिल्म मैंने देखी थी इसलिए मेरे को याद है, फिल्म आई नौकर उसमें भी वो थे, एग्रीमेंट उसमें भी वो थे, ये फिल्मों पे तो काम किया ही किया, लेकिन इसके साथ साथ कई सारे टेलीविजन में भी उन्होंने काम किया। लेकिन बहुत सारी जो चीज़ आप देखेंगे तो जो बॉबी फिल्म के जो गाने थे साहब मुझे तो बड़े अच्छे, वैसे तो खेल खेल में आपको है ना ये इस तरह के गाने अगर आप देखेंगे, बिल्कुल एक अलग तरह की आवाज़ जो ऋषि कपूर साहब के ऊपर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल जचती थी। तो आज आपका हैप्पी वाला बर्थडे, आपको बहुत बहुत बधाई अगर आप हमें सुन रहे हैं। तो आइए एक वही वाला गीत, ऋषि कपूर साहब भी हैं, शैलेंद्र भी हैं, दोनों ही हैं भाई, देखिए है।

अरे भाई ऊपर जाओगे आप सब? मनीष भाई ऊपर कहाँ भेज रहे हो? ऊपर जाने का मतलब है साहब, हम रॉकेट की हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह यानी कि वर्ल्ड स्पेस वीक, जिसकी आज से शुरुआत हो चुकी है। ऊपर जाओगे? चलिए, ये चार से आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है और 10 अक्टूबर तक चलेगा साहब। इसका थीम है इस बारी क्या है? रॉकेट क्रांति, यानी कि रॉकेट रेवोल्यूशन इसकी थीम है। और यह जो विषय है अंतरिक्ष प्रक्षेपण, जो कहते हैं जो वहाँ जो प्रणाली में हो रहे, जो बहुत तेज़ी से परिवर्तन होते हैं, अगर आप देखेंगे तो जो रॉकेट हैं, जो वाणिज्य जो वहाँ पर अंतरिक्ष तक जो जाने वाली चीज़ें, उनको आसान बनाने की जो चीज़ है ना साहब, इसलिए इस सप्ताह को

मनाया जाता अगर आसानी से इसको बताया जाए तो। इसका जो मेन इसकी स्थापना हुई थी अगर हम देखते हैं तो इसकी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1999 के अंदर विश्व अंतरिक्ष सप्ताह की इसकी घोषणा की थी। 4 अक्टूबर 1957 की अगर हम बात करें यानी कि आज ही के दिन पहला कृत्रिम यानी कि एआई वाला उपग्रह जो है, अगर उस समय की बात करते हैं 90 का पहले स्पुतनिक 1 यानी कि अंतरिक्ष के अंदर उसको साफ भेजा गया था। दूसरी बात 10 अक्टूबर 1967 की बात करें यानी कि 10 साल के बाद तो जब आउटर स्पेस ट्रीटी जो उसको लागू की गई थी। ये सब भारत के अंदर भी बहुत सारे इसके आयोजन होते हैं, भारत में अंतरिक्ष की जो शिक्षा है उसके बारे में जन जागरूकता अभियान के और कई सारे ऐसे जो मतलब जागरूकता फैलाने वाले अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं उनके माध्यम से इसको मनाया जाता है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है VSSCC और इसरो और स्कूल्स हैं, कई सारे कॉलेजेस हैं, उनमें छात्रों के लिए विशेष व्याख्यान और जागरूकता कार्यक्रम वहाँ पर रेगुलर चलाए जाते हैं ताकि वहाँ पर बच्चों को इसका ज्ञान दिया जा सके। अब ज्ञान के साथ साथ बारी आती है साहब कि आपके मैसेजेस भी हमें मिल रहे हैं। साहब बहुत अच्छा है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मैं उसके लिए आपको बोलूँगा कि राजकुमार संतानी उन्होंने सर जी आपने जो जानकारी दी है उसके लिए बहुत अच्छी लग रही है और आपने इसके साथ साथ कई सारे हमें मैसेज भेजे हैं, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। पंकज अमरावती महाराज से, धन्यवाद जी, गुड मॉर्निंग है जी, आपकी जो जानकारी बहुत अच्छी लग रही है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। इसके साथ साथ हमारे को दिलीप मोहन शिंपी नंदूरबार महाराज से, सर जी ईस्ट और वेस्ट रेनबो इज द बेस्ट, थैंक यू सो मच। आज मेरी बेटी संध्या जी का हैप्पी बर्थडे, तो बहुत बहुत बधाई जी आपको संध्या जी का हैप्पी बर्थडे के लिए, थैंक यू सो मच। अनिल ठाकुर साहब हमारे को लिख रहे हैं दिल्ली से, डॉली हमारे साथ जुड़ी हुई है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच है। धरती पर क्रिएचर के जीने का उतना ही हक मिलना, सबको हक मिलना चाहिए, बिल्कुल लिखा जी। मस्त मनीष भाई आपका प्रोग्राम बिल्कुल मस्त लग रहा है जी, मस्त लग रहा है तो मस्त आप हैं तो इसीलिए मनीष भाई गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी। फहीम ले लिखा श्रीनगर से हमें, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ हमें राजेश भल्ला जी एडवोकेट खंकड़ खेड़ा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर जी। हम आपका भी पिरोग्राम सुन रहे हैं, कौन, रामचरण विश्वकर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, धन्यवाद, थैंक यू सो मच है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कौन कौन हमारा पिरोग्राम सुन रहा है साहब, तेजपाल सिंह प्रजापति यमुनानगर से, सर जी बहुत बढ़िया, आप भी पिरोग्राम हमारा सुन रहे हैं, चलिए सुनते रहिए। और महसूस कीजिए रिनवो आपके आसपास है, मैंने कहा ना जहाँ पे कोई नहीं होगा वहाँ हम आपको मिलेंगे। मोनू पराशर अलीपुर दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सुनते रहिए, महकते रहिए और खुश रहिए बस, क्योंकि किसी ने कहा है कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि साहब खुशियाँ जो होती बहुत कम समय के लिए आती है, सच में कोई बात नहीं, लेकिन दुख तो बहुत लंबे समय के लिए रहते हैं, तो उन खुशियों को याद करके जीते रहिए, महकते रहिए, लोगों को साथ देते रहिए और चिल रहने का। परेशानी ऐसा इस संसार के अंदर शायद कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास ना हो, लेकिन उससे पार करना ही अपने आप में साहब बहुत कमाल की होती है, ठीक है। इसलिए जाते जाते मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अब 9 बजे के बाद शुरुआत होगी तो फिर हम तब आपसे जब बात करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि एक बात आपको जाते जाते मैं बता दूं, क्या कि परमात्मा दोनों ही तरह से आजमाता है, देकर भी और लेकर भी, परंतु दोनों ही परिस्थिति में संयम रखना जो रखता है वही सफल होने में सक्षम हो जाता है। तो चिल रहने का और सुनते रहने का आकाशवाणी रेनबो।

नमस्कार, आकाशवाणी रेनबो पर सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अलग अलग मंत्रालयों से जुड़ी कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति के अध्यक्ष और राजीव प्रताप रूडी को जल संसाधन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जबकि कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्रों को मंजूरी दी है। उच्च शिक्षा विभाग ने शास्त्रीय असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत के अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना को स्वीकृति दी। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान हाई कमीशन के कार्यवाहक उच्चायुक्त को तलब किया। ये कदम पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रही गैरकानूनी घुसपैठ के खिलाफ भारत का कड़ा विरोध दर्ज कराने के लिए उठाया गया। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दूसरी सिखो इंडियन एयर फोर्स मैराथन को हरी झंडी दिखाई। 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले साल 7 से 9 जनवरी तक पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय, पश्चिम बंगाल

सरकार के साथ मिलकर करेगा। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसराइल के आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह पारंपरिक औपचारिक ज्योति प्रज्वलित करने के लिए आमंत्रित किया है। होर्मुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर मिसाइल हमला, 5 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। यूक्रेन ने रूस के साथ संभावित युद्ध विराम के लिए भारत के प्रस्ताव को अब तक मिले प्राप्त 4 प्रस्तावों में सबसे व्यापक बताया। कहा, ऊर्जा अवसंरचना और काला सागर को शामिल करने वाले युद्ध विराम पर विचार करने के लिए तैयार हैं। मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। एशियन गेम्स 2026 का समापन समारोह जापान में नागोया सिटी के मिजुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में होगा। भारतीय समयानुसार ये शाम 6 बजे शुरू होगा। समारोह में भारत की ध्वजवाहक महिला निशानेबाज नीरू धांडा होंगी। भारत ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 85 पदक जीते हैं। इनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत पदक तालिका में 4th स्थान पर रहा है। और ये थे आकाशवाणी रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी रेनबो के सफर में। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। मैं हूं आपके साथ नुपुकुल श्रेष्ठ और ये साथ बिल्कुल आपके साथ बना रहेगा 9 बजे तक। तो जुड़ रही है सफर में हमारे साथ, क्योंकि आज बहुत ही खास होंगी बातें, और हमेशा वो खास बातें बन जाती हैं जब हम आपसे मिलते हैं, और बातें जो ज़रूरी है आपके लिए जानना। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर सुन रहे हैं आप, तो आपके शहर में क्या है कुछ खास, क्या हो रहा है आपके शहर में, क्या गतिविधियाँ रही हैं, बिल्कुल जानेंगे, और कैसे आप उसका हिस्सा बन सकते हैं, वहां जा सकते हैं, ये तमाम जानकारी आपके साथ साझा होगी इसी सफर में। तो बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो पर। ला ला ला।

आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, और आज है संडे और संडे होता है फन डे, और फन डे को और भी फन के साथ एंजॉय करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके आसपास क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं, क्या चहल पहल है और कैसे आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। माना कि यूं ही अंगड़ाइयां लेते हुए बहुत मुश्किलों से आप आज उठ गए हैं, क्योंकि लगता है कि भाई अब संडे है तो इसको अच्छे से इंजॉय करें, सेलिब्रेट करें, और उसके लिए लगता है कि आराम से उठें, कुछ फुर्सत के जो पल हैं वो खुद के साथ बिताएं, और फुर्सत के इन पलों को खुद के साथ बिताने का ये जो आपका मन है ना, ये क्या बात है, ये होना चाहिए। एक दिन तो अपने लिए होना चाहिए, थोड़ा सा मोबाइल से दूर आप अपने से बात करें और अपने को जानने के लिए कदम आगे बढ़ाएं, और साथ ही साथ एक खूबसूरत से सफर पर निकल जाएं जहाँ पर आप हों, आपकी फैमिली मेम्बर्स हों, आपके दोस्त हों। लेकिन ये जो मोबाइल है ना और ये सोशल मीडिया जो है उससे आप कोसों दूर हो। सुकून के कुछ पल आज के दिन तो बनते हैं, क्योंकि आज है संडे और संडे है फंडे, और इस फंडे को सेलिब्रेट करेंगे जब आप, तो कैसा रहेगा मौसम का हाल उसके बारे में भी जानकारी दे देते हैं। तो अधिकतम तापमान रहेगा 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहेगा 24 डिग्री सेल्सियस। तो मौसम के अनुसार अपने मूड को बेहतर बनाए रखें, खुद को हर तरीके से प्रिपेयर करके रखें, क्योंकि जब सफ़र पर निकलते हैं तो सारी तैयारी के साथ निकलते हैं ना। तो सफ़र में जब आप निकलें तो सारी तैयारी के साथ निकलें, और बस इस सफ़र को और भी सुहावना बनाएं जब आप रहेंगे फिट एंड फाइन, हेल्दी एंड स्मार्ट। मौसम बदल रहा है, लेकिन इस बदलते मौसम के बीच आपकी जो सेहत है वो बिल्कुल ठीक से रहे उसके लिए ज़रूरी है आप ज़रूरी एहतियात बरतें। आपके लिए क्या ज़रूरी है, क्या नहीं है, किस तरीके से आप स्वस्थ रह सकते हैं, मास्क लगाइए और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखिए, और बस इस सफ़र पर यूं ही पूरा डट के आगे बढ़ते रहें। तो आज अगर हम बात करें तो मौसम सामान्य रहने वाला है, ना अधिक धूप निकलेगी। तो बस अपना ध्यान रखिए, आनंद लीजिए, और मौसम बदलता है तो मूड भी बदलता है। तो सुबह शाम की जो ठंडक है उसमें आपको लगता है कि बस अभी सर्दियों की जो दस्तक है वो शुरू हो गई है, दस्तक देना शुरू कर दिया है, लेकिन दोपहर में थोड़ी सी धूप है और ये जो धूप छाव है इसका सिलसिला भी कुछ दिन और चलने वाला है। तो बस आप इस सिलसिले में शामिल रहें, इस सफ़र में आगे बढ़ते रहें, पूरी जानकारी के साथ रुकना बिल्कुल नहीं है और हम भी बिल्कुल नहीं रुक रहे हैं। ये गाना सिर्फ और सिर्फ आपके लिए प्ले हो रहा है।

और किसी ना किसी सफ़र पे तो निकलना ज़रूरी है और बाहर निकलिए, देखिए कितना खूबसूरत जो प्रोग्राम है उनका आयोजन हो रहा है और उसका हिस्सा आप भी बन सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिनके बारे में आप जानेंगे और बहुत ही एक ख़ास हमारे जो एक मैं बोलूँगी ख़ास प्रोग्राम है और आपको जुड़े रहना होगा उसके बारे में जानने के लिए। उसकी जानकारी जल्द ही मैं आपके साथ साझा करूँगी, लेकिन उससे पहले एक बेहद खूबसूरत शाम के लिए भी आप तैयार हो जाइए। और आज आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं कि आपको चूज़ करना पड़ेगा कि कहाँ जा सकते हैं और कहाँ नहीं जा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं शास्त्रीय नृत्य की लय, भाव और मनमोहक मुद्राओं का आनंद लेने के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्योंकि एक बहुत ही ख़ास प्रोग्राम इंद्रप्रस्थ नृत्य महोत्सव जो है उसका आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली पर्यटन विभाग की ओर से ये 3 दिवसीय महोत्सव है जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर से हो चुकी है और आज यानी कि 4 अक्टूबर तक आप इस कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं। और इस कार्यक्रम में कुचिपुड़ी, सत्रिया, मोहिनीअट्टम, कथक और भरतनाट्यम, हमारे जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं उनकी जो आपको प्रस्तुतियां हैं देखने को मिलेंगी, है ना। तो आप ज़रूर यहां पर पहुंचिए, ओडिसी सब कुछ आपको देखने को मिलेगा और भारतीय शास्त्रीय नृत्य की जो परंपराएं हैं वो आप देखेंगे। देश विदेश के जाने माने कलाकार और नृत्य दल अपनी कला से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करेंगे, तो आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। शाम 6:30 से यानी कि 6:30 से इसका आयोजन किया जाएगा, इसकी शुरुआत होगी। और आपको कहाँ पहुँचना है, पुराना किला आपको यहाँ पहुँचना है और इस शास्त्रीय नृत्य की खूबसूरत शाम का हिस्सा बनना है।

0: चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए तो जिंदगी में रंग भर दे।
1: मेरी जैसी मेरी अपनी पताका,
0: पताका चाय गजब का स्वाद।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
3: हिमालय की गोद से लेकर
4: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
3: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
4: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
3: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
4: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
3: तो सुनना ना भूलें
4: रेनबो डेस्टिनेशंस
3: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। मैं हूं आपके साथ नूपुर कुलश्रेष्ठ और हम जी हाँ बिल्कुल आकाशवाणी रेनबो पर ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में भी एक बहुत ही ख़ास जो अभियान है उसका आयोजन किया जा रहा है। सेवा संकल्प जो अभियान है उसका जो आयोजन है 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक इस अभियान को पूरे देश में इसका आयोजन किया जा रहा है, इसको चलाया जा रहा है। और इसका मकसद यही है कि जो भी योजनाएं हैं जो जन कल्याण के लिए जो योजनाएं हैं वो आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ ले सकें और आप उसके बारे में जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको प्राप्त हो। तो आज इस अभियान के तहत हम बात कर रहे हैं जल जीवन मिशन की और जल जीवन मिशन का उद्देश्य है कि देश के हर ग्रामीण घर में 2028 तक शुद्ध और पर्याप्त पेयजल पहुंचाना। तो इसमें ये इसका संकल्प है कि हर कोई जो है उसके पास पानी जो है उसकी सुविधा हो, उपलब्धता हो और किसी भी तरह की कोई भी समस्या ना हो। तो इस अभियान को बिल्कुल आप भी इस अभियान में जुड़कर अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। वो इस तरीके से कि जब हम बात करते हैं कि जल ही जीवन है और इसको बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए, आप इसका पूरा ख्याल रखिए जैसे आप अपना ख्याल रखते हैं। प्यास लगती है तो पानी बहुत ज़रूरी है, इस बात को समझिए कि ये कितना ज़रूरी है कि जो प्यास है वो पानी से ही बुझती है। पानी की प्यास, आप कुछ भी ले लीजिए आपको वो तृप्ति नहीं मिलती।

जो पानी पीकर ही मिलती है। और आप जो ये ऐसी टैप खुला छोड़ देते हैं ना, और पानी बहता रहता है और आपको लगता है कि क्या ही फ़र्क पड़ता है, तो फ़र्क पड़ता है। इस बात को समझना ज़रूरी है, और हम सब की जो भूमिका है वो मायने रखती है। आप सोचते हैं कि मैं नहीं करूँगा या करूँगी तो उससे क्या ही हो जाएगा, लेकिन आप समझिए, आपके करने से, एकमात्र आपके करने से भी बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। तो आप पानी को जितने अच्छे से बचा सकते हैं उसको बचाइए, और इस अभियान में और साथ ही साथ जुड़ जाइए। जल जीवन जो मिशन है इस अभियान में, जल संरक्षण, हर घर जल पहुंचाना, स्वच्छता और सामुदायिक सहभागिता जो कार्य हैं, सेवा कार्य हैं, उनको प्राथमिकता दी गई है, और आप भी इसमें अपनी भूमिका बिल्कुल निभा सकते हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो के इसी सफ़र में, और एक बहुत ही खूबसूरत से प्रोग्राम के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी मिलेगी। एक बहुत ही प्यारा सा गीत मैं यहाँ आपके लिए प्ले कर रही हूँ, और आप समझ पाएंगे कि जो प्रोग्राम है वो किसके नाम है।

जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा, जितनी भारी गठरी होगी उतना तू हैरान रहेगा, उससे मिलना नामुमकिन है जब तक खुद का ध्यान रहेगा, हाथ मिले और दिल ना मिले ऐसे में नुकसान रहेगा, जब तक मंदिर और मस्जिद है मुश्किल में इंसान रहेगा, नीरज तो कल यहाँ ना होगा उस गीत का विधान रहेगा। हिंदी साहित्यकार, शिक्षक, कवि, सम्मेलनों के मंचों पर काव्यवाचक और फिल्मों के गीत लेखक, पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित गोपाल दास नीरज जी का हिंदी भाषा के प्रति प्रेम उनकी रचनाओं में बखूबी दिखता है। और हिंदी केवल भाषा नहीं

0: स्वागत है आपका आकाशवाणी रेनबो पर।
1: नमस्कार, सभी आपके श्रोताओं का उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक नमन करता हूँ उनको।
0: जी सर, कैसे हैं आप? और मुझे लगता है कि आज एक बेहद खूबसूरत सा जो प्रोग्राम है उसका आयोजन किया जा रहा है, जिसके बारे में पूरी आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन उसको लेकर आपके मन में किस तरह के भाव हैं इस प्रोग्राम को लेकर?
1: नीरज साहब का एक दुआ है शुरुआत करने से पहले, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य है। आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, और मानव होना भाग्य और कवि होना सौभाग्य है। अगर आप इस सौभाग्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो आज शाम 6:30 बजे मावलंकर हॉल दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आइए, जहां पर नीरज साहब के कारवा गीतों का नीरज जब कार्यक्रम बड़ा मैं सोच के रखा गया है। नीरज साहब के 77 साल का जो साहित्यिक इतिहास है, जो उनकी करुणा, जो उन्हें करुणा का कवि समझता है, जो उन्हें वेदना का कवि समझता है, जो उन्हें श्रृंगार का कवि समझता है, जो दर्शन समझता है, वो उस पूरे उनके जीवन के 77 साल के इतिहास को मैंने एक स्क्रिप्ट में पूरा तैयार किया है, और उस स्क्रिप्ट में तमाम प्रसंग मिलेंगे नीरज साहब का। वो संघर्ष में बचपन मिलेगा, वो दास्ताने मुंबई मिलेगी आपको, वो यौवन काल का उनका संघर्ष दिखाई देगा, वो उनके प्रेम पत्र दिखाई देंगे, वो सारी चीजें दिखाई देंगी, और कुछ अद्भुत और रेयर वीडियोस नीरज साहब के वहां दिखाई देंगे। इसके अलावा मुंबई से कलाकार जो आए हुए हैं वो उस पूरी स्क्रिप्ट को पूरा संगीतबद्ध किया गया है, तो वो आपको नीरज साहब के फिल्मों के गाने भी सारे सुनने को मिलेंगे, उनके मुखड़े, उनके दोहे, सारी चीजें आपको देखने के मिलेंगे। एक खूबसूरत शाम, मुझे याद है जब मैं बाबूजी के साथ जाया करता था प्रोग्राम में, तो जगह जगह कार्यक्रम हुआ करते, लिखा रहता था कहीं एक शाम नीरज के नाम, तो आज एक शाम कारवा गीतों के नाम, आप जरूर आइए शाम को 6:30 बजे मावलंकर हॉल दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में, जहां पर नीरज आपको दिखाई देंगे, उनका साहित्य दिखाई देगा, उनका दर्शन दिखाई देगा आपको। बहुत खूबसूरती से इसे बनाया गया है और मुंबई के कलाकार इसे प्रेजेंट करेंगे। जी
0: तो बेहद एक खूबसूरत सी शाम है जिसमें हम सब शामिल हो सकते हैं, जिसमें गोपाल दास नीरज जी के जीवन और रचनात्मक सफर की पूरी जो सफर है वो देखने को हमें मिलेगा। जी मृगांक प्रभाकर जी, आप हमारे साथ हैं, और जैसे कि आप ने हमें बताया कि आप अक्सर नीरज जी के साथ हुआ करते थे, जब भी आप किसी भी सफ़र पर उनके साथ, उनकी कोई भी हम कहें कि कोई भी प्रोग्राम होता था, आप उसमें शामिल रहते थे, तो आपने बहुत ही करीब से उनसे बात की है, उनके जीवन का जो संघर्ष रहा है उसके बारे में भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी है, साधना सफलता का जो भी उनका अनूठा सफ़र रहा है, तो क्या कोई ऐसा प्रसंग है जो आप हमें बताना चाहेंगे जो उन्होंने आपसे साझा किया हो?
1: बिल्कुल, देखिए इस पूरी स्क्रिप्ट के अंदर तमाम प्रसंग नीरज साहब के जीवन से जुड़े हुए हैं, चाहे वो बचपन का जीवन का प्रसंग हो, चाहे जवानी के प्रसंग हो, चाहे अटल जी के साथ वो एक कमरे में कानपुर के हॉस्टल में रहते थे वो प्रसंग आपको सुनने को मिलेगा, कैसे दोनों कवि सम्मेलन में इंदौर एक साथ जाते थे, या फिर आपको देव साहब से नीरज साहब की कैसे मुलाकात हुई, देव साहब ने नीरज जी को वादा किया वो काम उनके साथ काम करेंगे, फिर एक दिन नीरज साहब ने उनको जो है वादा याद दिलाया, तो देव साहब से उनकी कैसे मुलाकात हुई, शंकर जी जयकिशन जी के पास वो अपना एक गीत लेके गए और शंकर जयकिशन जी ने फेंक दिया, किस तरह से एस डी बर्मन ने जो है एक मुंबई में आए एक नए गीतकार के गीत को चैलेंज किया और किस तरह से रंगीला रे बना, ये तमाम सारी कहानियां हैं कि किस तरह से राज कपूर साहब ने नीरज साहब के दर्शन को देख के उन्हें मौका दिया कि मेरे नाम जोकर के आप गीत लिखिए, कैसे नई पीढ़ी के डायरेक्टर महेश भट्ट साहब के साथ उन्होंने नई फिल्म में फरीम में काम किया, तो ये सारे तमाम प्रसंग और अनकही दास्तान हम आपको सुनाएंगे। एक प्रसंग मुझे बहुत अच्छा याद आता है और बड़ा दिल को छू देने वाला है कि एक कवि किस तरह से परिस्थितियों में काम करता है। नीरज साहब बहुत साल पहले की बात है, नीरज साहब इटावा कवि सम्मेलन में गए हुए थे, वहां से लौट रहे थे, तो गाड़ी डिटूर हुई तो वो मुरैना की तरफ से उन्हें वापस आना पड़ा। उस समय मुरैना में जो है ग्वालियर में है, उस समय बड़ा दस्यु ग्रहों का जो है बड़ा बोलबाला था, तो नीरज साहब को रात में एक दस्यु ग्रहों ने रोक लिया और उसके सरकना जो है लाकू मानसिंह थे उन्हें रोक लिया गया है और उससे लूटपाट के इरादे से उनसे सबसे बोला गया कि जो जीप में शामिल लोग थे कि आप बताइए पैसे आपकी जेब में कितने हैं।

0: तो नीरज साहब ने कहा साहब मैं तो कवि सम्मेलन पढ़ के आ रहा हूँ, एक कवि आदमी हूँ और थोड़ा बहुत पारिश्रमिक मुझे मिला है वही ले जा रहा हूँ अपने साथ। तो उन्होंने कहा कि हम कैसे मान लें कि तुम कवि हो। हाँ। तो नीरज साहब ने उनको दो चार अपनी कविताएं सुनाई तो उन्होंने कहा क्या नगमा गूंजता है तुम्हारे गले से। और तुरंत उन्हें जो है पारिश्रमिक क्या कह दिया, पारितोषिक के रूप में 51 रुपए दिए। तो ये प्रसंग बड़ा अपने आप में सुनने वाला है। तो इस तरह के तमाम प्रसंग मैं आपको सुनाऊंगा। तो आज शाम को 6:30 बजे दिल्ली के मावलंकर हॉल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आइए। तो तमन्नीगर साहब के जीवन से जुड़े तमाम ऐसे प्रसंग, चाहे वो जवानी के प्रसंग हो, चाहे जो है लास्ट स्टेज में किस तरह से वो अपने कमरे में रुके हुए जब उनको ऑपरेशन हुआ, फिर कमरा बंद करके तुरंत कवि सम्मेलन में पहुंच गए, ऐसे तमाम प्रसंग है जो और अनकही बातें हैं जो आपने नहीं सुनी होंगी। तो आज आइए शाम कारवा गीतों के नाम। नीरज जी
1: बहुत बहुत शुक्रिया मृगांक प्रभाकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बिल्कुल हम इसका हिस्सा बनेंगे और जितने भी हमारे श्रोता हैं उनसे बिल्कुल उम्मीद है कि वो इस गोपाल दास नीरज जी को और भी करीब से जानना चाहते हैं, तो ज़रूर कारवा गीतों का नीरज इस प्रोग्राम में शामिल हो। शुक्रिया मृगांक जी। तो नीरज जी के जीवन, उनके गीतों और उनसे जुड़ी अनमोल यादों को बिल्कुल एक बार आप फिर से जीना चाहते हैं तो आप पहुंच सकते हैं इस प्रोग्राम में। और बिल्कुल कहना होगा कि गोपाल दास नीरज जी के शब्द समय की सीमाओं में बंधे नहीं है। वे आज भी प्रेम करना, संवेदनशील रहना और जीवन से उम्मीद लगाए रखना सिखाते हैं। और उनके गीतों में जो संघर्ष उन्होंने जिया है वो हमें बखूबी समझ आता है। और एक गीत बेहद खूबसूरत सा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आकाशवाणी रेनबो पर।

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: वफादार है, खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, जीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, जीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
6: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन,
6: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

तो आज एक और मौका है आपके पास और एक और प्रोग्राम है जिसका आप हिस्सा बन सकते हैं, तो बिल्कुल उस बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। प्रसिद्ध गायिका बेगम अख्तर, जिन्हें मलिका ए गज़ल भी कहा जाता है, और उनके लिए उनको डेडिकेटेड ये प्रोग्राम है, अ ट्रिब्यूट टू बेगम अख्तर साहिबा। और इस कार्यक्रम में आप पहुंच सकते हैं इंडिया हैबिटेट सेंटर। इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, शुरुआत होगी 7 बजे से, शाम 7 बजे, और कार्यक्रम में हिंदुस्तानी सेमी क्लासिकल संगीत की प्रस्तुति होगी। गायिका सुमिता दत्ता अपनी सुरीली आवाज़ से शाम को सजाएंगी। उनके साथ सारंगी पर उस्ताद कमाल अहमद, तबले पर उस्ताद सलीम अहमद और हारमोनियम पर उस्ताद सलामत अली संगत करेंगे। तो सुरों की इस यादगार महफिल का आनंद लेने के लिए पहुंचे बिल्कुल शाम 7 बजे इंडिया हैबिटेट सेंटर के थिएटर हॉल में। कार्यक्रमों का सिलसिला यूं ही जारी है आकाशवाणी रेनबो के इस सफर में। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR में बस इतना ही, लेकिन आप जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रोग्राम दिल के तराने, गाने नए पुराने, और इसमें आपके साथ जुड़ेंगे मनीष आज़ाद, और उसके बाद आप सुनेंगे मैचलेस म्यूजिक आर, जिसमें आपके साथ होंगी अदिति बिष्ट, और उसके बाद आप सुनेंगे हमारा प्रोग्राम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। तो जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो के इस सफर में। कार्यक्रमों का सिलसिला यूं ही जारी है। मैं नुपुर कुलश्रेष्ठ अब आपसे लेती हुई इजाज़त, नमस्कार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: पेश है अब तक के मुख्य समाचार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अलग अलग मंत्रालयों से जुड़ी कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति के अध्यक्ष और राजीव प्रताप रूडी को जल संसाधन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जबकि कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं असमिया बंगाली मराठी पाली और प्राकृत के अध्ययन के लिए 5 नए उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति दी। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ का किया कड़ा विरोध, पाकिस्तान उच्चायोग के कारावास प्रभारी को तलब किया। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दूसरी सेखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन को हरी झंडी दिखाई। 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले साल 7 से 9 जनवरी तक पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मिलकर करेगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट स्मिथ मच्छार को भारत इजराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। कैप्टन मच्छार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजराइल के स्वतंत्रता दिवस समारोह में किया आमंत्रित। होर्मुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर मिसाइल हमला, 5 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। यूक्रेन ने रूस के साथ संभावित युद्ध विराम के लिए भारत के प्रस्ताव को अब तक मिले प्राप्त 4 प्रस्तावों में सबसे व्यापक बताया। कहा ऊर्जा और अवसंरचना और काला सागर को शामिल करने वाले युद्ध विराम पर विचार करने के लिए तैयार है। मौसम विभाग ने आज केरलम माहे तमिलनाडु पुदुचेरी और करेकली में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। जापान के नागोया में आज एशियाई खेलों का भव्य समापन समारोह होगा। भारतीय निशानेबाज नीरू ढांडा होंगी ध्वजवाहक। भारत ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 85 पदक जीते हैं। ये थे अब तक के आकाशवाणी रेनबो पर मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: भाई मेरे पैर के तलवों में ना बड़ी खुजली खुजली हो रही है, तो इसका मतलब क्या ये कहीं कहीं जाने का संकेत है क्या? ऐसा होता है तो फिर मैं आपको लेके चलता हूं अपने इस सफर के अंदर, जिस सफर का नाम है दिल के तराने, गाने नए पुराने, यानी कि गाने बैक टू बैक होंगे, जहां पर आपके लिए होगा झमाझम वाला म्यूजिक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद, अरे कितने के बाद एक, अरे भाई एक के बाद एक आएगा। तो इसलिए शुरू हो जाइए हमारे साथ इस फर्राटा वाले संगीत के साथ साथ, जहां पर हम आपके साथ साथ में दिल के तराने गाने नए पुराने के अंदर, जब पुराने गानों का रेट्रो गानों का तड़का होगा तो फिर कमाल होगा। लेकिन फिलहाल
1: उड़े उड़े
0: अरमान मलिक और आदित्य फर्राटा।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: ये भाई साहब, मैं एक बात पूछना चाह रहा था कि आप कभी गर्मी लगती है थोड़ा सा? मेरे को कभी कभी ऐसा लग रहा है कि गर्मी भी बहुत होगी, लेकिन मन ने तो ऐसे लग रहा है कि भाई ये पंखा इतनी चल रहा है कि जैसे मैं सुबह का टाइम देखूँ, माने भाई ऐसे काम कर, इस पंखे ने थोड़ा सा एक नंबर कम कर दे भाई, दो कर दे कम। हाँ, नहीं तो फिर वो चादर उड़नी पड़ती है, नहीं तो आपको कुछ ना कुछ सहारा लेना पड़ता है इस थोड़ी सी सुबह वाली ठंडक से। लेकिन अब देखा जाए, हल्की हल्की सी ठंडक का एहसास हो चुका है स्टूडियो के अंदर। अगर मैं देख रहा हूँ, मेरे जो हाथ है ना, ऐसे लग रहा है जैसे सिकुड़ते जा रहे हैं। होता है ना कभी कभी ठंड ठंड सी लगती है। तो ठंड ठंड के अंदर बता दें कि जो मौसम है भाई साहब, वो बड़ा ही वाला औसम है। यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर की हम बात करें, वो 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा। कम वाले की बात कर लें, 24। अब बताओ क्या करोगे? संडे का दिन है साहब, एक चाय आप पी चुके हो, दूसरी चाय अगर आपको पीनी है तो भाभी जी से थोड़ा प्यार से बोलिए। अजी सुनती हो? वहां से बजाए क्या है? नहीं नहीं, मैं कुछ बोल नहीं रहा। तो अगर आप भी थोड़ा सा, नहीं तो फिर क्या होगा, जब कुछ नहीं बोल रहा तो चुपचाप से किचन में जाइए, चाय बनाइए और फिर शुरू हो जाइए गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर के सफर के अंदर। दिल का तराने, गाने नए पुराने का सफर ऐसा अभी आपके साथ रेडियो पर जो आवाज आ रही है, आपके दोस्त मनीष आजाद रेडियो वाला।

रुक जा बेबी सांस तो ले ले। Yeah.

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

भाई साहब आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, आपको कहाँ जाना है जी, कहाँ जाना है भाई साहब, कहाँ जाना है? तो मैं आपको बता दूं, अगर आप कहीं जाने की सोच रहे हैं, वैसे तो संडे आपको आराम करना चाहिए घर पे, लेकिन अगर मेरे इस मैप के हिसाब से अगर

जैसे वो समय बढ़ेगा, जैसे जैसे समय आगे चढ़ेगा, तो आप उस रूट को अवॉइड करके अगर आप जो निजामुद्दीन वाला ब्रिज है अगर उसकी तरफ से भी जाएंगे तो वो भी ठीक रहेगा साहब, है ना। थोड़ा सा समय भी आपका बचेगा, फिर वहां से आप बारापुरा चढ़ जाइए, ओके सब ठीक रहेगा। अब ये जो यहां दिख रहा है रजौरी गार्डन बिल्कुल ठीक ठाक दिख रहा है साहब, ओ लेकिन ये नीचे की तरफ आ रहे हैं तो भाई साहब थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा जाम है। जखीरा वाला जो पुल है जैसे ही वो नीचे उतरने वाला है वहां पर ये हल्का हल्का सा एक रोड पे मरम्मत का काम चल रहा है उल्टी वाली तरफ से, हाँ, तो जिस वजह से थोड़ा सा मध्यम मध्यम सा ट्रैफिक है, बाकी सब कुछ ठीक ठाक है, समूथ समूथ चल रहा है, संडे का दिन है, बिल्कुल ठीक ठाक है। हमारे पास एक मैसेज आया साहब, कहाँ से, उन्होंने लिखा है सर मेरा नाम चीनू है, मेरी मम्मी को आपकी जो स्माइल है सर बहुत अच्छी लग रही है, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, आप अपनी मम्मी को कहिए बहुत अच्छी बात है और उनको मेरा नमस्ते बोलिएगा। थैंक यू सो मच, सुनते रहिए, महकते रहिए और बस धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए, बाकी सब ठीक हो जाएगा। ओके, दिल के तराने गाने नए पुराने।

0: है चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए तो जिंदगी में रंग भर दे।
1: मेरी जैसी मेरी अपनी पताका,
0: पताका चाय, गजब का स्वाद।
2: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

देखियो भैया, मैं तो यूं कह रहा हूं कि देख भाई, मेरे तो जाने का हो लिया समय। मैं तो सुबह से 4:30 बजे से मेरी तो गैल में यूं चिल्ला कि मेरे नींद ही नींद आ जा रही है, लेकिन जब मैं शो करता हूँ ना साहब, ये नींद पता नहीं कहाँ चली जाती है। लेकिन अब जैसे मुझे लग रहा है कि शो का खत्म होने का समय आ गया, अब ये आंखों में नींद आ रही, जबकि अभी मेरे को जाना है, मेरी क्लास भी है भाई क्या करूँ मैं, जाना तो पड़ेगा। लेकिन मेरे जाने के बाद यहाँ पर कौन आएगा आपके लिए, क्योंकि 24 घंटे लगातार आपको यहाँ पर मनोरंजन देने के लिए हमारे पास अलग अलग जो आर्जेस आते हैं, तो अदिति बिस्ट आएंगी लेकर प्रोग्राम वेस्टर्न म्यूजिक का मैचलेस म्यूजिक आर। इसके बाद में साइमा होंगी आपके साथ में, प्रोग्राम होगा पोस्ट बॉक्स 111 नंबर का साहब जी। उसके बाद में प्रियंका ममगैन आपके साथ में होंगी, प्रोग्राम लेकर आएंगी वो आशियाना। कोमल भारती आपके साथ होंगी, प्रोग्राम होगा रेडियो डॉक्टर। इसके बाद में अगर आप देखेंगे साहब, ये जब कार्यक्रम चलता रहेगा उसके बाद आगे चलकर सुप्रदीप मुखर्जी आप, नहीं उससे पहले सॉरी वापस आ जाओ, भगवती आपके साथ होंगी तीन बार, माँ से मैसेज, माँ से मसाला और माँ से मिक्स कर देंगे, लेकिन माँ से मनीष होता, जबकि मैसेज मसाला मिक्स भगवती करेंगी। उसके बाद सुप्रदीप मुखर्जी आपके साथ होंगे, वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम होगा लाइव वायर। विनीता बेदी आपके साथ में होंगी, आपकी याद आती रहे, ठीक है साहब। और भाई साहब देखो, हमारा तो हो गया समय, ये आपने देखे होंगे कैसे इसमें आवाज़ आ रही है, तो अपन तो चलेंगे। ये बंदा जो है, ये बात जो कर रहा है, ये रात की बात कर रहा है, लेकिन फिलहाल मैं कहता हूँ दिन में भी इसी तरह से नाचते रहिए, मुस्कराते रहिए, हंसते रहिए बस।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू 102.6 एफएम रेनबो एंड अ वेरी हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। यू ट्यून्ड इन टू, यस यू गॉट इट राइट, 102.6 एफएम रेनबो एंड दिस इज द मैचलेस म्यूजिक आवर। यू नो द एनर्जी ऑफ संडेज इज ऑल्सो क्वाइट मैचलेस बिकॉज संडेज आर सो still, and Sunday makes you slow down, breathe, and just take stock of where you are in life, and that's not waste your time, and that's very much what we need to get some clarity and get ready for the week ahead. So let's bring you some good Sunday energy with some music from the past. Here's Easy by the Commodores.

0: सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
1: पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
2: नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीलम अलकानिया आप सभी का स्वागत करती हूं। साथियों, जैसा कि हम जानते ही हैं, हमारा ये कार्यक्रम मन की बात का विस्तार है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार मन की बात में पूजनीय बापू को याद किया है, गांधी जयंती का उल्लेख किया है और साथ ही उस मंत्र की एक बार फिर से हमें याद दिलाई है, जो मंत्र पूरे देश को तो एक साथ जोड़ता ही है लेकिन हमारे भविष्य, हमारे वर्तमान को हमारे इतिहास से, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन से भी जोड़ता है। एक छोटा सा शब्द लेकिन अपने आप में अथाह समुद्र जैसा, स्वच्छता। आज का हमारा कार्यक्रम बापू के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि, स्वच्छता। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में बापू का किन शब्दों में उल्लेख किया है, आइए आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं।
3: मेरे प्यारे देशवासियों, बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हम अक्सर अपने आसपास स्वच्छता से जुड़े अनेक प्रयासों को देखते हैं। ये प्रयास बहुत प्रेरक और उत्साह बढ़ाने वाले हैं। सोशल मीडिया पर भी ऐसी तस्वीरें, ऐसे वीडियो, ऐसी रील्स बार बार हमारा ध्यान खींचती है। हाल के दिनों में मैंने ऐसे कई प्रयास देखे हैं। कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं, इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है। मुंबई में कुछ युवा समुद्र तटों को साफ रखने की पहल कर रहे हैं। हर हफ्ते किसी न किसी बीच पर सैकड़ों युवा साथी इकट्ठा हो रहे हैं, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं। यहाँ दिल्ली में बच्चे और युवा लोगों को कचरा अलग अलग रखने और अपने आसपास सफाई रखने के लिए जागरूक कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में युवा छात्रों और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पिकनिक स्थलों पर बाजारों की सफाई कर रहे हैं। साथियों, इन सभी प्रयासों में एक बात बहुत सहजता से दिखाई देती है, कहीं शुरुआत एक व्यक्ति ने की, फिर उसके साथ कुछ और लोग आ गए, कारवा बढ़ता गया, यही तो जनभागीदारी है। बापू के प्रति हमारी सबसे सुंदर श्रद्धांजलि भी स्वच्छता ही है।
2: तो ये थे माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्गार बापू के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में और स्वच्छता के बारे में। आइए इस विषय के बारे में विस्तार से जानते हैं और ये भी समझने का प्रयास करते हैं कि हमें स्वतंत्रता से पहले जो मंत्र दिया गया था, क्या आज भी वो हमारे लिए कारगर है? आज हम जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं, क्या उनका समाधान हमें बीते समय में मिलता है? और किस तरह से बापू का जो दर्शन है, महात्मा गांधी का जो चिंतन है, वो समसामयिक है? आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है हमारे विशेषज्ञ को, डॉक्टर राजीव रंजन गिरी। आप गांधीवादी चिंतक और विचारक हैं, आप लेखक हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, गांधी स्मृति और दर्शन समिति राजघाट से आप जुड़े रहे हैं, गांधी दर्शन की पत्रिका अंतिम जन के संपादक रहे हैं, गांधीवाद रहे न रहे, पुरुषार्थ, त्याग और स्वराज सहित कई पुस्तकों के आप संपादक और लेखक भी हैं। डॉक्टर राजीव रंजन, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
4: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: जैसा कि हमने अभी सुना, माननीय प्रधानमंत्री जी ने गांधी जी के जो विचार हैं उनका उल्लेख किया है, स्वच्छता जो मंत्र हमें दिया गया है फिर से हमें उसकी याद दिलाई है और हमें ये कहा है एक तरह से कि हम इससे जो कुछ सीख सकते हैं वो सीखें, लेकिन बहुत सारे सवाल भी हमारे मन में आते हैं, तो इन्हें और बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं आपसे जानना चाहूंगी। आप ये बताएं कि गांधी जी ने स्वच्छता को कैसे स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ा?
4: दरअसल गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे और वहां से कोई 22-23 साल अपना जीवन बिताने के बाद हिंदुस्तान आए, तो उन्होंने भारत का भ्रमण किया था
2: जी।
4: यह सलाह थी उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की और ये भ्रमण उन्होंने तीसरे दर्जे में किया था, रेलवे में तब तीसरा दर्जा होता था। वे कांग्रेस के कार्यालयों में जाते थे, उन दिनों आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका कांग्रेस की थी,
2: तत्कालीन
4: कांग्रेस की, और कांग्रेस के कार्यालयों में, कांग्रेस के अधिवेशनों और सम्मेलनों में होने वाली गंदगियों की तरफ भी उनका ध्यान गया था। 1916 में जब महामना मदन मोहन मालवीय जी के आमंत्रण पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के उद्घाटन समारोह में शामिल होने गांधी जी गए
2: जी।
4: तो उससे एक दिन पहले वे बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने गए थे। वहां उन्होंने नोट किया कि बाबा विश्वनाथ के यहाँ जाने की जो गलियां हैं वे बेहद गंदी हैं। गांधी जी ने उनके ध्यान में आया कि अगर कल अंग्रेज चले भी जाएं तो क्या बाबा विश्वनाथ की गली साफ हो जाएगी, क्या अंग्रेजों ने उन गलियों को गंदा किया है।

0: जब वे कह रहे थे तो उनके ध्यान में था कि दरअसल हमारे यहाँ गंदगी फैलाने और गंदगी की सफाई करने, इन दोनों के बीच एक बड़ी खाई है, एक द्वैत है। तो गांधी जी ने सोचा कि जब तक व्यक्ति अपने दायित्वों को, अपने कर्तव्यों को नहीं समझेगा और बुनियादी जरूरतों को नहीं समझेगा, बुनियादी दायित्वों को नहीं समझेगा, तब तक उसको स्वराज के आंदोलन से जोड़ा नहीं जा सकेगा
1: जी।
0: तो गांधी जी ने जो भाषण किया था उस भाषण में इस सवाल को उठाया था और ये जिक्र किया था। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मैं समझता हूँ कि वो लिया होगा विचार गांधी जी का, उन्होंने पूछा उसी भाषण में। और उस भाषण में देश भर के सारे राजे रजवाड़े आए थे। 1916 का बनारस में दिया गया गांधी जी का वो भाषण उनके पूरे व्यक्तित्व और उनके पूरे दर्शन को समझने की लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। वहां उन्होंने पूछा था युवाओं से, सबसे, कि अपनी गंदगी के लिए हम दूसरे को कब तक जिम्मेवार ठहराएंगे और अपनी काहिली या अपनी अकर्मण्यता के लिए क्या हम अंग्रेजों को ही जिम्मेवार ठहराएंगे। और तभी उन्होंने ये सवाल किया था कि कल के डेट में अगर अंग्रेज चले गए तो जिस बाबा विश्वनाथ को हम इतना पवित्र और अपना आराध्य मानते हैं, क्या उनकी गलियां साफ हो जाएंगी? ये गलियां हमने गंदी की है।
1: तो क्या ये कहा जा सकता है कि इस तरह से गांधी जी ने स्वच्छता को सामाजिक सुधार का भी एक माध्यम बना दिया था?
0: दरअसल था ये कि हमारे यहाँ एक फर्क था, जो लोग गंदगी की सफाई में जुड़े हुए थे वो दरअसल एक पूरा सामाजिक तबका था, और जो गंदगी फैलाते थे उनको श्रेष्ठ, और जो गंदगी की सफाई करते थे उनको हेय मानने की रवायत थी हमारे यहाँ। गांधी जी दरअसल इस पूरे दर्शन को, इस पूरे विचार को ही बदलना चाहते थे। इसी में जुड़ा हुआ था उनका विचार, जो दार्शनिक स्तर पर समझ में आता है, कि शरीर का श्रम और बौद्धिक श्रम, मानसिक श्रम, दोनों एक ही लेवल पर माने जाने चाहिए।
1: जी।
0: ये नहीं कि बौद्धिक श्रम करने वाला श्रेष्ठ है और शारीरिक श्रम करने वाला निकृष्ट है, ऐसा गांधी जी नहीं मानते थे। इसीलिए उन्होंने जो हमारे समाज में किन्हीं कारणों से जो ये चली आ रही थी परंपरा, जिसमें एक खास सामाजिक समुदाय को, लोगों को लाद दिया गया था कि यही लोग गंदगी की सफाई करेंगे, तो इसको वो पलट रहे थे
1: जी।
0: तो दरअसल गांधी जी ऐसा करके एक समता पर आधारित समाज के निर्माण की कोशिश में भी लगे थे, भले ही वे इस बात को सीधे तौर पर कहते हों या न कहते हों।
1: जी, बहुत रोचक बातचीत ये हो रही है। मैं आपसे बहुत सारे सवाल इस बारे में पूछने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले आपकी पसंद का एक गाना हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे। कौन सा गाना आप सुनवाना चाहते हैं?
0: एक फिल्म है तूफान और दिया, मन्ना डे साहब ने उस गीत को गाया है
1: जी।
0: गीत का बोल है, निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की।
1: जी, बहुत ही प्यारा सा गाना है और एक संदेश भी हमें देता है। लीजिए, हम श्रोताओं को सुनवा रहे हैं यही गाना।

0: गाने के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं बापू के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि की, जो है स्वच्छता। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में बापू के विचारों का, उनके चिंतन का और स्वच्छता का उल्लेख किया है। और आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव रंजन गिरी, गांधीवादी चिंतक और विचारक आप हैं, लेखक हैं, गांधी दर्शन की पत्रिका के आप संपादक भी रहे हैं। राजीव जी, मैं अब आपसे ये जानना चाहूंगी, आपने जिक्र किया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की तो शायद बापू के जो संभाषण रहे हैं, उन्होंने जो भाषण दिए, जो संवाद किया जनता से, वहां से वो प्रेरित हुए। भारत सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान में महात्मा गांधी जी के चश्मे को ही एक प्रतीक चिन्ह बनाया है, तो आपको क्या लगता है कि ये अभियान गांधी जी के स्वच्छता के सपने को जन जन तक पहुंचा पाया, उसे साकार कर पाया?
1: अगर आप 1915 और उसके पहले सफाई को लेकर जनता के बीच चेतना के प्रसार को अनुपात के तौर पर या तुलना के तौर पर देखेंगी तो एक बड़ा परिवर्तन दिखेगा। सामान्य और जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता था, लोगों को लगता था ये बहुत छोटा और मामूली विषय है, और इसी मामूली विषय को गांधी जी ने तब उठाया था और भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने उसी विषय को जिक्र करके और उससे खुद को जोड़कर भी केंद्र में ला दिया था। और जब एक सामान्य विषय माने जाने वाले मसले को, मुद्दे को केंद्र में लाने की कोशिश देश का कोई बड़ा नेता करता है तो जाहिर है उसका असर अखिल भारतीय होता है। और चूंकि ये बहुत सुचिंतित और सुनियोजित ढंग से भारत सरकार ने इसको चलाया था और देश के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को इससे जोड़ा था, तो इस वजह से भी बड़े पैमाने पर ये प्रसार हुआ। दूसरा, ये समय वही है जब बड़े पैमाने पर हमारे देश में कचरा इकट्ठा हो रहा था, कई तरह के ई कचरा भी और सब कुछ, तो ये एक तरह से सही समय पर लिया गया फैसला भी था जिससे जनता उसके प्रति भी या निकट भविष्य में आने वाली अस्वच्छ

0: स्वच्छता के तमाम आयामों को भी साफ करने के प्रति सचेत हो जाए, जागरूक हो जाए, तो इसका असर तो हुआ ही है निश्चित तौर पर।
1: जी, जैसे आपने ई वेस्ट की बात की, तो ये सही है कि वर्तमान समय में हमारी चुनौतियां थोड़ी अलग हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक है, ई वेस्ट है, या उपभोक्तावादी जो संस्कृति है, एक तरह से हम सभी उसके शिकार हैं। आपको क्या लगता है कि इन सब के बीच में गांधी दर्शन से क्या हमें कोई समाधान मिलता है?
0: देखिए, असल में ये जो चुनौती है ये पूरे विश्व की है
1: जी,
0: और आप उसको दूसरे शब्दों में चाहें तो कहें कि ये पूरे मनुष्यता के भविष्य पर खड़ा हुआ सवाल है, प्रश्नांकन है। तो ये जो चुनौतियां, ये जो समस्याएं बढ़ती जा रही है, जिसके वजह से प्रकृति, पर्यावरण और पारिस्थितिकी चिंता बढ़ रही है
1: जी,
0: उपभोक्ता संस्कृति की वजह से ऐसा लगता है कि सारे प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, और ऐसे में हमारी भावी पीढ़ी और हमारी मनुष्यता का क्या हश्र होगा
1: जी।
0: उदाहरण के तौर पर देखिए, पानी समाप्त हो जाए, ऑक्सीजन खत्म हो जाए, ओजोन में छेद होता जा रहा है, उसका सब कुछ बढ़ता जा रहा है। तो इसके लिए जरूरी है, अगर हम चाहते हैं कि ये दुनिया ऐसी ही बनी रहे और इससे बेहतर हो, तो विकल्प के तौर पर दिखेंगे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ही। उन्होंने सुझाया था और उनका वो विचार दुनिया भर के लोग, अब के इन्वायरमेंटलिस्ट इसके प्रति ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने कहा था बहुत बेबाकी के साथ कि इस नेचर में, इस प्रकृति में दुनिया के सारे लोगों की जरूरतों को पूरी करने की क्षमता है, लेकिन किसी भी एक व्यक्ति के लालच को पूरी नहीं कर सकती ये प्रकृति। तो जो ये उपभोक्तावादी संस्कृति है, जहां दरअसल हम अनावश्यक ढंग से आवश्यकता पैदा करते जा रहे हैं, मुनाफा के चक्कर में कुछ चीजों के आविष्कार होने के बाद उसकी जरूरत विज्ञापनों के जरिए या अलग अलग तरह के पीयर प्रेशर के जरिए उसको पैदा किया जा रहा है। तो रास्ता तो वही है, अगर आप सुकून का जीवन ये मनुष्यता चाहती है, व्यक्ति के स्तर पर भी, समाज के स्तर पर भी, राष्ट्र और दुनिया के स्तर पर भी, तो जाना तो पड़ेगा उसी दर्शन के पास। और दरअसल ये दर्शन भारत की आर्ष परंपरा का निचोड़ है। हमारे यहाँ आप ध्यान दीजिए, पुराने समय में जो महान जिनको हम मानते थे वे सारे ऋषि होते थे
1: जी।
0: आप उनकी जरूरतों की वस्तुएं या उनके भोग की वस्तुएं, उपभोग की वस्तुएं बेहद सीमित होती थी, यानी जो सबसे कम कंज्यूम करता था वो हमारी परंपरा में सबसे महान माना जाता था
1: जी।
0: पर एक उपभोक्तावादी संस्कृति का विकास हुआ पूंजीवाद के विकास के बाद, और उसके बाद आवश्यकता से अधिक जो अधिकाधिक उपभोग करने लगा उसी को बड़ा मानने का चलन हमारे यहाँ मौजूद हो गया। तो दरअसल ये दो तरह की सभ्यता दृष्टि है, दो तरह की संस्कृति दृष्टि है, और गांधी की दृष्टि वो पुरानी भारतीय ऋषि परंपरा से जुड़ती है, जहाँ कहती है कि आपको जिस चीज की जरूरत नहीं है, जितने से आप एक अपना अच्छा जीवन जी सकते हैं, जिसको अब मिनिमलिस्ट कहा जा रहा है, तो आप उसको अगर जी सकते हैं तो उतनी ही वस्तुओं का उपभोग आप करें, नहीं तो आपका अपना ही जीवन संकट में पड़ेगा, और अंततः आपका अपना जीवन जो संकट में पड़ेगा वो आपकी भावी पीढ़ियों के लिए और दुनिया के लिए, मनुष्यता के लिए एक संकट के तौर पर चिन्हित किया जाएगा
1: जी। इसीलिए शायद हम कार्बन फुटप्रिंट की बात करते हैं, इसीलिए हम पर कैपिटा इनकम की जो बात कर रहे हैं उसका अनुपात हमें सही रखना हो, तो कहीं ना कहीं इन सब के मूल में गांधी दर्शन आ ही जाता है। मैं अब आपसे बात करना चाहूंगी सोशल मीडिया के बारे में। राजीव जी, हम कैसे सोशल मीडिया के युग में गांधी जी के विचारों को और फैला सकते हैं या समझ सकते हैं, या ये मान सकते हैं कि ये विचार समसामयिक हैं?
0: दरअसल हमें देखना ये होगा कि सोशल मीडिया ने हर व्यक्ति को एक मायने में अभिव्यक्ति दे दी है
1: जी।
0: और अब उसकी अभिव्यक्ति का दायरा उसके अपने कमरे और अपने आस पड़ोस के लोगों की बजाय ग्लोबल हो सकता है। तो गांधी जो हमेशा सिखाते थे कि आप किसी के विचार से भले ही असहमत हो
1: जी,
0: पर उसके प्रति सहिष्णु हो, आप अपनी असहमति को भी सलीका में दर्ज कराएं
1: जी।
0: आप जब तक किसी सत्य को न समझते हो, न जानते हो, तब तक उसको अभिव्यक्त न करें, यानी पहले अपने अंतर मन में तमाम स्रोतों से उसकी जांच पड़ताल कर लें
1: जी।
0: ऐसा नहीं करने की वजह से हो ये रहा है कि लोगों को जो आधा अधूरा या गढ़ा हुआ सच मिल रहा है, तथ्य मिल रहा है, उसको लोग अभिव्यक्त कर रहे हैं और उस पर अपना विचार रख रहे हैं, उसके आधार पर अपनी पक्षधरता तय कर रहे हैं, और उस वजह से एक बड़ी

0: पंखे में बंदी और मुश्किलें पैदा हो रही है और समाज में नफरत का प्रसार हो रहा है
1: और विचारों का उथलापन भी
0: बिल्कुल
1: हर जगह
0: बिल्कुल है। तो गांधी सिखा रहे हैं, दरअसल उनकी बुनियाद में है अहिंसा और सत्य
1: जी।
0: तो आप चाहे जितने अहिंसक हों, आप चाहे जितने किसी से असहमत हों, पर अपनी अहिंसक भाषा में उसको दर्ज कराएं और उस व्यक्ति के प्रति आप घृणा न करें। आपके दर्ज कराने का मतलब उसकी अंतर चेतना को परिवर्तित करने की हो कि आप अपनी बातों से उसको प्रभावित कर पाए। एक बिहार में पैदा हुए शायर थे कलीम अजीज
1: जी,
0: उनकी एक पंक्ति है, बात चाहे बेसलीका हो कलीम, बात कहने का सलीका चाहिए
1: जी।
0: तो ये जो कहने का सलीका हो, यानी आपकी बात, आपके तर्क भरे ही कठोर हो पर आपकी भाषा और उसको अभिव्यक्ति करने का ढंग मधुर हो
1: जी,
0: वो कोमल हो, यही गांधी जी करते भी थे। गांधी जी पूरा जीवन जिस साम्राज्य के खिलाफ लड़ रहे थे, आप कभी भी नहीं देखेंगे कि उनकी भाषा में कोई बेअदबी हो। वो आपको दिखेगा कि वो उनको भी एक मित्र के तौर पर संबोधित कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं, उनके मन में ये भावना है कि ये आज हमारे प्रति अनुदार है लेकिन इसके भीतर भी किसी ईश्वर का अंश है, तो मेरी बात से आज न कल उस पर असर होगा और वो भी अपने को पहचानेगा और फिर इसी क्रम में एक बेहतर दुनिया बनेगी
1: जी।
0: तो ये जो सोशल मीडिया ने बड़े पैमाने पर फैलाया है, कहीं कहीं अच्छा और कहीं कहीं बुरा, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का असर इसका दिख रहा है, तो दरअसल गांधी जी का विचार सचेत करता है हम सबको जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं सबको, कि आप किसी भावावेग में कोई बात उस पर न तो कोई अक्षर उस पर दर्ज करें और न तो कोई वाणी अपनी अभिव्यक्त करें
1: जी। यानी जो हमारे यहाँ श्रवण, चिंतन और मनन की परंपरा है उसके बाद अपना विचार रखें, उसे भी आजमाएं। और आपने कहा कि हम जो हैं वो सत्य का साथ भी ना छोड़ें, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी राजीव जी कि गांधी जी का जो सत्य का सिद्धांत है, क्या वो आज के समय में, आज की जो दुनियादारी है जिसे हम कहते हैं कि बहुत प्रैक्टिकल होना है हमें, उसमें वो कितने प्रतिशत तक शामिल हो सकता है? और जो हमारे युवा हैं, हमारे जेन जी हैं, जिन पर कहीं ना कहीं ये प्रेशर तो है ही कि आपको सोशल मीडिया में भी अपना एक अंश रखना है, एक बहुत बड़े से आकाश में आपको अपना हिस्सा भी सुरक्षित रखना है, जिसे हम कहते हैं बीइंग वोकल, कि आपके लिए कोई और बात नहीं करेगा, आपको खुद को स्थापित करना है। इस प्रेशर के साथ ये सत्य का सिद्धांत लेकर हम कितना चल सकते हैं, कैसे सामंजस्य होगा?
0: दरअसल चाहे जितनी दुनियादारी और प्रैक्टिकल किस्म की बातें हों, पर जो शाश्वत बातें हैं, मसलन क्या करुणा का स्थान कम हो जाएगा
1: जी?
0: जैसे करुणा का स्थान नहीं कम होगा, जैसे प्रेम का स्थान नहीं कम होगा, वैसे ही चाहे हम मानते हों कि ये दुनिया बहुत लफाजी, बेईमानी और जोड़ तोड़ की है, बावजूद इसके सत्य की अपनी महिमा बरकरार ही रहेगी
1: जी।
0: आप चाहें तो आप समझ सकते हैं कि दरअसल रास्ता वही है। हम दुनिया भर के लोग अगर गलत चीज को तवज्जो दे रहे हों तो ये तो नहीं मान लेंगे कि गलत ही सबसे बड़ा मूल्य है
1: जी।
0: दुनिया भर के लोग बेईमानी के सहारे आगे बढ़ रहे हों तो हम ये तो नहीं मान लेंगे कि बेईमानी ही सबसे बड़ा वैल्यू है
1: जी।
0: चूंकि ये जिसको हम प्रैक्टिकल कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि दुनियादारी सीखनी है, तो ये दुनियादारी अच्छाई के रास्ते से भी जाती है। और अगर आप तात्कालिक न देखें, दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में सोचें
1: जी,
0: तो अंततः सफल वही होता है जिसके रास्ते में सच्चाई हो, जिसके मार्ग में सच्चाई हो। दूसरी बात जो वोकल होने की है, गांधी जी यही तो कर रहे थे। भारत के उन तमाम निर्बल लोगों को और वाणीहीन लोगों को उन्होंने निर्भयता का पाठ पढ़ाया और उनके कंठ को वाणी दी, तभी तो वो अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ सामने आकर सीना तान कर खड़े हो जा रहे थे
1: जी।
0: जिस गांव समाज के लोग सिपाहियों की लाल पगड़ी को देखकर भाग जाते थे, वे उनके अधिकारियों के सामने अपनी आजादी की बात करने लगे थे
1: जी।
0: तो गांधी जी का दर्शन किसी को वोकल होने से नहीं रोकता, बल्कि उस वोकल होने में उसके अपने दायित्व को जोड़ने की बात करता है कि वो अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों, अपनी जिम्मेवारी को लेकर भी वोकल हो और उसके प्रति भी सचेत हो।
1: जी, बहुत अच्छी बात आपने कही और हमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से भी समझाया कि किस तरह से हम गांधी दर्शन से ही बहुत सारे समाधान पा सकते हैं। यहाँ मैं आपकी पसंद का एक और गाना श्रोताओं को सुनवाना चाहती हूँ।
0: जी, देश प्रेमी फिल्म का गीत है।
1: जी,
0: मोहम्मद रफी साहब जिन्हें गाया है, नफरत की लाठी तोड़ो लालच का खंजर फेंको।
1: जी,
2: लाल

0: तो इस प्यारे से गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं बापू के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यानी स्वच्छता की। कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञ हैं गांधीवादी चिंतक और विचारक डॉक्टर राजीव रंजन गिरे। राजीव जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हम बहुत से कामों के लिए आज तकनीक पर निर्भर हैं, बुनियादी ढांचे पर निर्भर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिए होता है, ऐसे में निर्माण भी है, ऐसे में पर्यावरण के साथ कहीं ना कहीं हम एक तरह का समझौता भी करते हैं, वनों की कटाई है या फिर जल जो है या हमारे इस तरह के संसाधन हैं उनका दुरुपयोग भी होता है। गांधी दर्शन हमें इस बारे में क्या सिखाता है, तकनीक और गांधीवादी विचार जो है उनके बीच में कैसे सामंजस्य होगा?
1: दरअसल गांधी जी के बारे में जो कई धारणाएं उनका कुपाठ करती हैं या उनको अवमूल्यित करती हैं, उनको नहीं समझती है, उसमें एक विचार यह भी है जो आपके सवाल के जरिए आ रहा है और ये लगभग दुनिया के ज्यादातर लोगों के मानस में है
0: जी।
1: गांधी जी तकनीक के विरोधी नहीं थे, दरअसल वे तकनीक और तकनीक में फर्क करने की बात करते थे। मैं आपको दो उदाहरणों से बताता हूं। जिस सेगल ने सिलाई मशीन की खोज की थी, गांधी जी उसके बड़े प्रशंसक थे और वो कहते थे कि सिलाई मशीन के आविष्कार के पीछे कारण था उस व्यक्ति की पत्नी जो सुई से दिन भर सिलाई करती थी और उससे जो उसकी आंख और उसके हाथों में पीड़ा होती थी, उस पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए सिलाई मशीन एक तकनीक के तौर पर, और उस समय के लिहाज से वो बहुत मॉडर्न तकनीक रही होगी
0: जी,
1: उसका उसने आविष्कार किया। तो दरअसल गांधी जी कहते थे कि जिस तकनीक के आविष्कार के पीछे कोई प्रेम है या मनुष्यता के प्रति प्रेम है, जिससे आपके काम में भी सुविधा हो, आपका उत्पादन भी बढ़े और उससे किसी पर अत्याचार न हो रहा हो, किसी के हक को आप छीन नहीं रहे हो, वैसे तकनीक का वो समर्थन करते थे। एक दूसरा उदाहरण दूं, गांधी जी के साथ हमेशा चरखा रहता था, चरखा अपने आप में तकनीक है। 1925-26 का साल है जब गांधी जी ने 1,00,000 रुपए का पुरस्कार घोषित किया था चरखा की तकनीक के विकास पर काम करने के लिए।
0: उस समय एक लाख
1: आज के हिसाब से आप सोचिए, और अंबर चरखा कहा जाता है, दिल्ली में राजघाट के पास राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय है, वहां वो चरखा रखा हुआ है, 11 पैडल का चरखा है वो। ये गांधी जी के कहने पर खोजा गया। आप सोचिए, आज से कोई 102 साल 101 साल पहले 100 साल पहले
0: जी,
1: जिस चरखा में 11 पैडल की चरखा की, अंबर चरखा की खोज की, उन्होंने बात की और उसको आगे बढ़वाया, वो अपने आप में तकनीक है।
0: और पेटी चरखा भी तभी तैयार हुआ,
1: पेटी चरखा ले जा सकते हो सब कुछ, जो लैपटॉप की तरह है। तो आप देखिए, ये सारे तकनीक हैं। बस उनका कहना ये था कि ये सारे तकनीक अधिकाधिक मनुष्यों को काम देने और उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हो, तकनीक इसलिए न हो कि कोई मुनाफाखोर उसका अधिकाधिक हिस्सा ले पा रहा हो और उस देश की, उस राष्ट्र की या दुनिया की आबादी के बड़े हिस्से के हाथों को काम से वंचित कर रहा हो। यानी वो तकनीक और मनुष्य के श्रम के संयोजन से एक विकास का मॉडल गढ़ रहे थे,
0: और कल्याण की भावना,
1: और कल्याण उसमें जो जाहिर है अंतर्निहित है उसमें कल्याण, अंतर्निहित है उसमें प्रेम, अंतर्निहित है सारे हाथों को मिलने वाला काम भी, लेकिन इससे कठिनाई भी नहीं होनी है। जो श्रम कठिन है, जैसे जो सिलाई मशीन में या एक चरखा चलाने में जो कठिनाई है और कम उत्पादन है, तो उत्पादकता के बढ़ाने के साथ मनुष्य के हाथों को मिलने वाला काम हम अगर देखेंगे तो दुनिया का कोई भी राष्ट्र, कोई भी समाज तभी तो विकसित होगा जब उसके मानव संसाधन को, सारे हाथों को काम मिले। तो ये मॉडल दरअसल गांधी जी का मॉडल है, और इसमें फिर हमको ये नहीं लगेगा कि हम

0: को आधुनिक तकनीक और गांधी के बीच कोई समन्वय बनानी है। दरअसल गांधी के हिसाब से सारे लोगों की प्रगति के बारे में अगर हमारे मन में चिंता है तो अपने आप हम तकनीक को पुनर्परिभाषित कर लेंगे और उसको संयोजित कर लेंगे।
1: जी, मैं यहाँ आपसे ये जानना चाहूंगी, मौजूदा सरकार जो है वो समाज के विभिन्न तबकों के कल्याण के लिए कार्यरत है, ऐसे में सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा या सम्मान या उनके अधिकारों को लेकर क्या हमें गांधीवादी दर्शन से भी कुछ दिशा मिलती है, नीति निर्माताओं को कुछ उससे सीख मिल सकती है?
0: जी बिल्कुल। दरअसल आप देखिए, अगर गांधी जी के आश्रमों की बनावट पर गौर करेंगे
1: जी,
0: तो वहाँ आप पाएंगे कि वहाँ हर व्यक्ति को, चाहे वो उस समय का वहाँ का नेता हो या श्रेष्ठ व्यक्ति हो या सामाजिक पदानुक्रम में किसी भी तबके से आता हो, वो सबको संडास की सफाई से लेकर कचरे की सफाई करनी होती थी। दरअसल एक समुदायगत सफाई कर्मचारी की धारणा को गांधी जी ने झकझोर दिया था, हिला दिया था और बड़े स्तर तक तोड़ दिया था
1: जी।
0: फिर भी एक बड़ी कमी रही हमारे यहाँ, और सफाई के काम के लोगों के प्रति लंबे समय तक राज और समाज दोनों का रवैया उपेक्षापूर्ण था। अब धीरे धीरे उसमें परिवर्तन हो रहा है और उस दिशा में आगे बढ़ता जा रहा है जो गांधी जी कभी ख्वाब के तौर पर देखते थे। उसकी सीमाएं बेशक अभी भी होंगी क्योंकि सवाल बहुत बड़ा है और व्यापक है, पर ये जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं या जो उसमें तकनीक के आविष्कार की चीजें हैं, उसको वहां फिर से लागू करने की बातें हैं, उससे बेशक उनके जीवन में भी अंतर तो आया है। उस अंतर को भी स्वीकारना होगा, पर अभी भी उन चुनौतियों या उन सवालों या अभी भी उससे वंचित लोगों के प्रति भी सचेत रहना होगा, राज को भी और समाज को भी, व्यवस्था को भी।
1: जी, और अनेक अवसरों पर हमने देखा भी है कि श्रमजीवी प्रधानमंत्री जी ने नाम दिया, फिर जिन्होंने श्रमदान किया है स्वेच्छा से ही सही या जिनका वो कार्य है, उनके ऊपर पुष्प वर्षा हो या फिर उनके साथ बैठकर तस्वीरें खिंचवाना हो, तो शायद अपने व्यवहार से भी प्रेरित किया है समाज को कि वो सबको साथ लेकर चले और हर कार्य का एक सम्मान जो है वो अपने व्यवहार में दिखाए। जी राजीव जी, आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी, हम कहते हैं कि चाहे हम पर्यटन की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें या हम अर्थव्यवस्था की बात करें, अपनी शिक्षा की बात करें, सबके मूल में किसी न किसी प्रकार से स्वच्छता है ही, वो इनका केंद्र बिंदु है। कैसे ये सारी चीजें स्वच्छता से जुड़ी हैं?
0: दरअसल हम एक चीज मानते हैं कि जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, और सृष्टि की सारी चीजें आपस में ऑर्गेनिकली अवयविक रूप से संबद्ध हैं।
1: जी,
0: आप कहीं भी एक चीज, आप इसको ऐसे आप व्यक्ति के शरीर के हिसाब से सोचें तो आपके किसी भी शरीर के अंग में कोई विच्छेद होता है, कोई दिक्कत आती है तो पूरे शरीर को उसका कष्ट होता है, हम उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। वैसे ही सफाई का सवाल हमारे यहाँ लंबे समय तक व्यक्तिगत सवाल माना जाता था। हम अपनी, हमारी जितनी परंपरा थी पूजा पाठ की, व्रत अनुष्ठान की, उसमें ज्यादातर में अपने शरीर की सफाई और अपने घर की सफाई पर बल था। गांधी जी ने चिन्हित किया था कि लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, अपनी सफाई करते हैं और सार्वजनिक स्थलों पर उन गंदगियों को पाट देते हैं। तो दरअसल उन सार्वजनिक स्थलों को वे अपना नहीं समझते, इसीलिए ऐसा करते हैं
1: जी।
0: जबकि ये सारी चीजें आपस में गहरे तौर पर संबद्ध हैं, जुड़ी हुई हैं। तो इसको उन्होंने समझाया गांधी जी ने, और उसको उन्होंने एक, उनके ही एक बिंब का सहारा लें तो उन्होंने एक सामुद्रिक वलय का सिद्धांत दिया था, जिसमें आप इसको ऐसे समझें कि कोई तालाब का शांत पानी है और आप उसमें कोई कंकड़ फेंकती हैं तो उसमें एक छोटा सा वृत्त बनता है, फिर एक बड़ा वृत्त बनता है, फिर एक बड़ा वृत्त बनता है, फिर एक बड़ा वृत्त, जब तक उसमें करंट है, उसमें ताकत है, वो वृत्त बनता जाता है और सारे वृत्त एक दूसरे के अधीन रहते हैं लेकिन स्वायत्त रहते हैं। तो दरअसल पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि इसी तरह संबद्ध है, व्यक्ति, परिवार, समाज, गांव, गांधी जी जिसको ग्राम स्वराज कहते थे, तालुका, जिला, राज्य, देश और फिर दुनिया, फिर ब्रह्मांड, और ये सारे सवाल आपस में संबद्ध हैं। और अब तो तकनीक ने हम सबको ग्लोबल विलेज कह दिया है, या पुराने समय में हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता रहा है। हम देख रहे हैं कि दुनिया के किसी हिस्से में कोई संकट आ रहा है तो बिल्कुल हजारों मील दूर के हिस्से में भी उस

0: तो गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। राजीव जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी अब कि गांधी जी का एक सादगी का सिद्धांत भी था कि हम जितने सादा रहें उतना अच्छा है। और एक हमारा जेनजी है जो अपने आप को एक ग्लोबल सिटीजन मानता है और दुनिया के किसी भी हिस्से में कोई नया फैशन आता है तो वो हमारी संस्कृति का हिस्सा भी बनने लगता है या हमारी रोजमर्रा की चीजों में उसकी झलक दिखती है। तो कैसे गांधी जी के ये सिद्धांत हम अपना सकते हैं, कैसे हमारे युवा पीढ़ी को ये प्रभावित कर सकते हैं?
1: दरअसल जिस तत्कालिक चकाचौंध में हमारा जेन जी या युवा पीढ़ी या हम सब लोग इसमें आते हैं, उसके असर में आते हैं, देखना ये है कि उससे हमारा जीवन सहज और सरल हो रहा है या हमारा जीवन और जटिल होता जा रहा है।
0: जी,
1: दरअसल सादगी के सिद्धांत के जरिए गांधी जी स्वावलंबन के दर्शन की प्रस्तावना कर रहे थे कि आप स्वावलंबी हो। तो क्या हम इसके साथ साथ पलट कर ये पूछ सकते हैं कि जो लोग सादगी के सिद्धांत के विपरीत आचरण कर रहे हैं और उनको लगता है कि जो भी ट्रेंड में है वो सारी चीजें हमारे वार्डरोब में होना चाहिए, वे स्वावलंबी भी हैं? और इन सारे ट्रेंड की वजह से क्या उनका जीवन सहज और सरल हो रहा है या उनका जीवन और मुश्किलों से भरा रह रहा है? क्या उनका भविष्य सुरक्षित बन रहा है या उनका भविष्य असुरक्षित होता जा रहा है? वे जो खर्च कर रहे हैं उस खर्च के कारण उनकी मुश्किलें बढ़ रही है या उनकी मुश्किलें कम हो रही हैं? अगर इन कसौटियों पर देखें तो वो गांधी जी हो या कोई भी पुरखे का विचार हो, वे सबको समझाई देती है कि जिसमें आपको संयम के साथ भोग की बात कही गई है।
0: जी,
1: हमारे यहाँ उपनिषद का एक मंत्र है तेन तक्तेन भुंजिक्था, कि आप उपभोग करें लेकिन उसमें एक संयम भी हो। आप अपने

0: लिमिटेशंस को भी जानते रहें। पहले कहा नहीं जाता था कि आप पांव उतना ही पसारें चादर जितनी लंबी हो।
1: जी
0: तो दरअसल अगर चादर लंबी नहीं है और पांव पसारते जा रहे हैं तो फिर कर्ज में दबते जा रहे हैं, फिर मुश्किल और अंततः अपना ही जीवन संकट में आ रहा है।
1: जी
0: तो सादगी के सिद्धांत और सादगी के सौंदर्य की स्थापना करके गांधी जी सबके जीवन को सरल और श्रेष्ठ बनाने की बात करते थे। अब ये चॉइस हमारे आपके या युवा पीढ़ी के हाथ में है कि वो उसमें से क्या चुनता है।
1: जी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में जब जिक्र किया तो उन्होंने ऐसे अनेक उदाहरण दिए जहां हमारे युवा कहीं गांव का पोखर साफ कर रहे हैं, तो कहीं समुद्र से कचरा निकाल रहे हैं, कभी साथ मिलकर जो है वो कचरे को कैसे अलग करना है उसके निपटान की बात कर रहे हैं और इस दिशा में प्रयासरत हैं। आप बताएं कि कैसे ये जो छोटी छोटी गतिविधियां हैं ये युवा ऊर्जा को एक सही दिशा दिखाती हैं और कैसे ये हमें अपने समाज से बेहतर तरीके से जोड़ती हैं।
0: बिल्कुल, ये बहुत सकारात्मक और खूबसूरत उदाहरण है। आप समझिए कि जिस दौर में ज्यादातर लोग व्यक्तिवादी और अपने बारे में ही सोचने वाले आत्म केंद्रित होते जा रहे हैं,
1: जी
0: उसी दौर में एक युवाओं का बड़ा तबका यह भी कर रहा है कि वो प्रकृति और पर्यावरण और सार्वजनिक स्थानों या सार्वजनिक संस्थानों या संसाधनों के प्रति वो चिंतित है, सचेत है और उस पर कदम भी बढ़ा रहा है,
1: जी
0: उसको एक्शन में भी लाने की कोशिश कर रहा है। और ये उदाहरण तमाम जगहों से, अलग अलग राज्यों का जिक्र किया है माननीय प्रधानमंत्री ने, तो उन सब जगहों से आ भी रहा है।
1: जी
0: और यही बताता है कि दरअसल मनुष्यता की संभावना शेष है। यही बताता है कि समाज में ऐसी सज्जन शक्ति, ऐसे लोग हमेशा रहेंगे। अब क्या हम जो थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, दुनियादारी की कसौटी में ऐसे लोग आएंगे, इनको माना जाना चाहिए कि नहीं? दरअसल यही लोग हैं जो दुनिया की चिंता कर रहा हो, अपनी चिंता के साथ साथ
1: जी
0: वही दुनियादार है। हमें दुनियादार की परिभाषा बदलनी होगी और कहना होगा, और प्रैक्टिकल की भी परिभाषा बदलनी होगी। प्रैक्टिकल वही है, अगर हमारे पड़ोस का तालाब साफ नहीं है, हमारे यहाँ पानी का लेवल नीचे जा रहा है, तो हम कैसे प्रैक्टिकल हो सकते हैं? प्रैक्टिकलिटी तो यही
1: जी
0: है, व्यवहारिक बुद्धि तो इसी में है कि हम अपनी पृथ्वी के पानी के स्तर को ठीक रखें, अपने आसपास के तालाब को साफ करें। और चूंकि हम व्यक्तिगत तौर पर नहीं कर सकते, तो अपने ही तरह के लोगों को खोजें या अपने विचार से लोगों को जोड़ें और कारवां बनता चला जाए।
1: जी
0: हम अपने पड़ोस के नदी, पड़ोस के समुद्र को अगर नहीं साफ कर सकते, तो उसका दुष्प्रभाव अंततः हम ही पर पड़ेगा।
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल
0: व्यवहारिक होना, दुनियादार होना यही है कि इन सब चीजों से अपने को जोड़ लें। और ये इतना खूबसूरत नजीर है जो बताता है कि उसी समय में जब लोग अपने से दूर देखना नहीं चाहते, सबसे अपने को काट कर देखने का एक दर्शन का अनुपालन कर रहे हैं, उसी समय में ऐसे नौजवान भी हैं, ऐसे
1: जी
0: लोग भी हैं, वो चाहे आंध्र प्रदेश के हों या मध्य प्रदेश के हों या मुंबई के हों,
1: जी
0: जिनका जिक्र माननीय प्रधानमंत्री ने किया है, वे सब नदी की, तालाब की, बावड़ियों की या समुद्र की सफाई करके अपने को उससे जोड़ रहे हैं, संबद्ध कर
1: जी
0: रहे हैं।
1: और हम वो संस्कृति रहे हैं जहाँ प्राकृतिक उपादानों की पूजा होती रही है। हम आज भी हमारे तीज त्योहारों पर नदी के जल को पूजा जाता है, तो समुद्र मंथन जो है वो हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। तो हमारा ये एक तरह से कर्तव्य भी बनता है कि स्वच्छता से इन्हें जोड़े और इनका देख रेख जो है वो हम जिम्मेदारी से करें। एक और सवाल मैं यहाँ आपसे जानना चाहूंगी राजीव जी, जब हम महात्मा गांधी का जिक्र करते हैं तो स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐसा चेहरा हमारे सामने आता है जिसने बहुत सारे अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को दिशा भी दिखाई और एक महत्वपूर्ण प्रतीक स्वतंत्रता संग्राम का महात्मा गांधी रहे। आज जब हम उनका जिक्र करते हैं तब कई बार ऐसा होता है कि विरोध स्वरूप कई अन्य स्वतंत्रता सेनानियों का भी नाम लिया जाता है और ये कहा जाता है कि उस दौर में जितना सम्मान उन्हें मिलना चाहिए था, जितनी पहचान मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पाई है। तो कहीं ना कहीं एक तुलनात्मक अध्ययन शुरू हो जाता है बहस शुरू हो जाती है बहुत सारे नामों को लेकर। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर महात्मा गांधी के प्रति सम्मान प्रकट किया जा रहा है तो क्या ये अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान प्रकट नहीं करना है या उनके अवमान

0: ना करना है?
1: हाँ,
0: आप क्या
1: मुझे
0: सोच
1: ऐसा
0: रहे हैं?
1: लगता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति किया जाने वाला सम्मान किसी के प्रति असम्मान या उनकी अवहेलना या उनका अपमान नहीं है। दरअसल
0: जी
1: वो भारत की आजादी की लड़ाई के कमांडर इन चीफ थे।
0: हम्म,
1: कमांडर इन चीफ को सबसे अधिक महत्व मिलता ही है। उसके अलावा आप जिन लोगों की चर्चा कर रही हैं उनका असर उस समय भारत की आबादी के अल्पांश में था,
0: जी
1: चाहे आप जिनका जिक्र करेंगी।
0: हम्म,
1: अगर आप फिर तुलना करके देखेंगी तो जिस व्यक्ति का असर उस समय भारत के सबसे ज्यादा लोगों पर था वो महात्मा गांधी थे,
0: जी
1: तो जाहिर सी बात है तवज्जो उनको ज्यादा मिलेगी। पर सिर्फ इस वजह से तवज्जो नहीं मिल रही। दरअसल गांधी जी की राष्ट्र की जो कल्पना थी
0: जी
1: वो उस कल्पना में भारत का विविध समाज और अलग अलग स्तरों में विभक्त या अलग अलग तरह का दिखने वाला समाज का सारा अंग शामिल था। दरअसल गांधी जी किसी एक समाज के प्रतिनिधि नहीं थे, किसी एक समाज के हित की चिंता नहीं कर रहे थे, चाहे वो समाज जाति के आधार पर हो, वर्ण के आधार पर हो, लिंग के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर हो। जाति, लिंग, धर्म, भाषा के आधार पर जो लोग आजादी की लड़ाई में हमारे जो पूर्वज लगे हुए थे, दरअसल वे किसी तबके के प्रतिनिधि के तौर पर थे। गांधी जी इन सबके नेता के तौर पर थे।
0: जी
1: तो कमांडर इन चीफ की या जिसकी राष्ट्र कल्पना में सारे लोग शामिल हो सकते हैं, सबकी पीड़ा को अधिकाधिक दर्ज किया जा सकता हो, जिसका पाठ इतना व्यापक हो जिसमें सबकी आवाज को समाहित किया जा सकता हो, और जो इतना सहिष्णु हो जो अपने से असहमत के साथ भी खुले दिल से बात करने को तैयार हो और अपने कमी आने पर अपने को सुधारने को भी तैयार हो, जो इतना संवाद धर्मी हो, इसलिए
0: जी
1: इनको सबसे ज्यादा महत्व मिलता है। पर इसका एक कतई मतलब नहीं है कि हम अपने बाकी सारे राष्ट्र नायकों को हम पीछे छोड़ रहे हों,
0: जी
1: इनके सम्मान में उनका अपमान नहीं है।
0: जी
1: जहां तक बात है भिन्न भिन्न दृष्टियों की, तो ये देखना होगा कौन सी दृष्टि सबसे ज्यादा समावेशी है, कौन भारत की विचार और ज्ञान के महान परंपरा का वाहक है जिसमें सबके लिए जगह है, कौन अधिक करुणामयी है, कौन सर्वाधिक उदार है। और
0: जी
1: इस कसौटी पर आप देखेंगी तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ही दिखेंगे। अब
0: जी
1: एक दूसरी बात मैं यहीं दर्ज कर दूं कि इसके साथ साथ हमारे वो पूर्वज जो क्रांतिकारी धारा के थे, जो हिंसा में यकीन करके आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, दरअसल उनके प्रति भी गांधी जी के यहाँ कोई दुर्भाव नहीं दिखेगा। पर
0: जी
1: उनको सिर्फ ये लगता था कि हिंसा के आधार पर ना तो आप आजादी पा सकते हैं और ना आप एक नए किस्म की सभ्यता की रचना कर सकते हैं। ताकत के आधार पर ली गई आजादी को निभाने के लिए भी उससे अधिक ताकत की जरूरत पड़ेगी।
0: जी
1: आप ये भी गौर करिए कि गांधी जी से पहले भी हमारे यहाँ हमारे पूर्वजों ने 1857 का युद्ध लड़ा था। 1857 की जो हमारी पहली आजादी की लड़ाई थी,
0: जी
1: या उसके पहले जो हमारे आदिवासी पूर्वजों ने जो आजादी की लड़ाई अपने अपने इलाकों में लड़ी थी, उन सबको कुचलने में अंग्रेजों को बहुत बहुत आसानी हुई। किसी भी दौर में किसी भी सत्ता के लिए अहिंसक संघर्ष, सत्याग्रह के संघर्ष को कुचलना बेहद कठिन है, क्योंकि वहां लड़ने वाला निर्भीक हो जाता है। आप गौर करें, हिंसा के जरिए कोई कार्रवाई करने वाला सत्ता से हमेशा छुपने की बात करता है, पर अहिंसा के जरिए अपनी मांगों पर अडिग निर्भय बनकर उसके सामने खड़ा रहता है, वो अपनी बात कहता रहता है, और ताकतवर से ताकतवर सत्ता को झुकना ही पड़ता है, सोचना
0: जी
1: ही पड़ता है।
0: जी एक और प्रश्न मैं यहाँ आपसे ये करना चाहूंगी कि हमारे कार्यक्रम के माध्यम से इस समय हर उम्र के श्रोता आपको सुन रहे हैं, ऐसे में अगर हमारे युवा साथियों के मन में ये विचार आए कि वो गांधी स्मृति से जुड़ना चाहते हैं या गांधी दर्शन को समझना चाहते हैं, दर्शन समिति से जुड़ना है, तो कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं और क्या कोई भी व्यवसायी हो या फिर वो छात्र हो वो जुड़ सकते हैं ऐसे?
1: बिल्कुल, गांधी दर्शन और गांधी स्मृति तो दो संस्थान हैं जो दोनों मिलकर फिर एक हुए हैं, वो भारत सरकार के अधीन काम करते हैं, उसकी स्वायत्त संस्थाएं हैं। ये राजघाट के पास हैं, वहाँ राजघाट बापू की जहाँ समाधि है वहीं पर एक दफ्तर है, और दूसरा वहीं पर राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय है जहां गांधी जी से जुड़ी हुई सारी वस्तुओं को रखा गया है और जिसको गांधी स्मृति हम कहते हैं, जहां गांधी जी की हत्या की गई थी वो स्थल है
0: जी।
1: तो उन स्थलों पर अभी भी प्रतिदिन हजारों लोग जाते हैं और वहां किसी किस्म की बंदिश नहीं होती, कुछ एक अवसरों को छोड़कर। जिस दिन वहां भारत के माननीय प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या दुनिया के अलग अलग राष्ट्राध्यक्ष आते हैं तो सुरक्षा कारणों से उस दिन कुछ कुछ अनुशासन रखा जाता है। पर गांधी का विचार तो सबके लिए है, गांधी की फिलॉसफी तो सबके लिए है, उसमें सबके लिए जगह है
0: जी।
1: दरअसल जो न्याय की कामना रखता है और एक न्यायपूर्ण समाज की रचना की बात करता है, उन सबके लिए उनका रास्ता, उनका दर्शन खुला हुआ है और वे सबके लिए हैं, वे सबके हैं
0: जी। बहुत अच्छी पंक्ति आपकी ये, वे सबके हैं। कहा जाता है गांधी समसामयिक है, गांधी प्रासंगिक है और गांधी सबके हैं। गांधी चिंतन या गांधी विचारधारा को हम किसी एक कालखंड से नहीं जोड़ सकते, किसी एक घटना से नहीं जोड़ सकते। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आज इस कार्यक्रम में हमने बात की बापू के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि की, जो है स्वच्छता, बापू का मूल मंत्र जो कि हमेशा प्रासंगिक रहा है, हर समय हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहा, समाज के प्रति हमें अधिक जिम्मेदार बनाता रहा। और अगर ये कहा जाए कि हमें एक सच्चा और अच्छा इंसान बनाता रहा तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ रहे गांधीवादी चिंतक और विचारक डॉक्टर राजीव रंजन गिरी। आप लेखक हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं, साथ ही गांधी स्मृति और दर्शन समिति राजघाट से भी आप जुड़े रहे। गांधी दर्शन की पत्रिका अंतिम जन के आप संपादक रहे हैं। गांधीवाद रहे न रहे, पुरुषार्थ, त्याग और स्वराज सहित कई पुस्तकों के आप संपादक और लेखक रहे हैं। आज कार्यक्रम में बेहद रोचक तरीके से, बेहद ही सादे शब्दों में आपने हमें गांधी दर्शन के बहुत सारे बिंदु जो हैं वो समझाए, जो आज भी हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो राजीव जी, आपने हमें समय दिया, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत धन्यवाद आपका।
0: तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस कार्यक्रम से आप सभी से अनुमति लूंगी। युग बढ़ा तुम्हारी हंसी देख, युग हटा तुम्हारी भ्रुकुटी देख, तुम अचल मेखला बन भू की, खींचते काल पर अमिट रेख। तो एक काल पर खींची गई अमिट रेखा हमारे गांधी जी, बापू जी, जिनके विचार हमें हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आज हमने फिर से इन कुछ विचारों को जिया है। कार्यक्रम संयोजक प्रमोद कुमार वत्स के साथ, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता शाहनवाज खान के साथ मैं नीलम मलकानिया अब पोस्ट बॉक्स नंबर 111 से आप सभी से लेती हूं अनुमति। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।

0: है चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए तो जिंदगी में रंग भर दे।
1: मेरी जैसी मेरी अपनी पताका,
0: पताका चाय गजब का स्वाद।
2: हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
3: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें
3: रेनबो डेस्टिनेशंस
2: हर शुक्रवार दोपहर दो

0: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: क्या है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

अब आप सुनिए आकाशवाणी पर इस घंटे के मुख्य समाचार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अलग अलग मंत्रालयों से जुड़ी कई सांसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति के अध्यक्ष और राजीव प्रताप रूड़ी को जल संसाधन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जबकि कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दी। ये केंद्र असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्रकृति के विशेष अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। इस मामले में पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी को भी तलब किया गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमरीका के हिंद प्रशांत कमान के प्रमुख एडमिरल सैमुअल जे पपारो से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच सुरक्षा साझेदारी और समुद्र सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दूसरी सेखो इंडिया एयरफोर्स मैराथन को हरी झंडी दिखाई। 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले साल 7 से 9 जनवरी तक पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मिलकर करेगा। दिल्ली पुलिस ने 3 महिला पत्रकारों की ओर से पुलिस कर्मियों पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच अपराध नियंत्रण शाखा को सौंप दी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा और सुब्रमण्य शिवा को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, तमिलनाडु, पौंडिचेरी और कारिकल में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। और अब आखिर में जापान के नगोया में आज एशियाई खेलों का भव्य समापन समारोह। भारतीय निशानेबाज नीरू ढांडा होंगी ध्वजवाहक। भारत ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 85 पदक जीते हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: हाय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं आपकी वाणी आकाशवाणी। मैं हूं सायमा आपके साथ और लेकर आई हूं आज एक बार फिर आपके लिए प्रोग्राम आपका अपना मेरा वाला सॉन्ग, जहां आपके जो फरमाइश है ना, जो आपके प्यारे प्यारे साउंड ट्रैक्स हैं जो आप सुनना चाहते हैं, कोशिश होगी आपको वो सुनवाए जाएं। और जितना वक्त मेरे पास रहेगा आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस को ऑन एयर करने की पूरी कोशिश करूँगी। फिलहाल बिना देरी करे गानों का सफर आकाशवाणी रेनबो पर बना रहता है, दिल से दिल तक ये प्यारा सा साउंड ट्रैक आपके लिए।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग, मैं हूँ सैम आपके साथ और आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस हमारे पास लगातार आ रहे हैं। और जो दोस्त अभी हमारे साथ जुड़े हैं और हमें मैसेज करना चाहते हैं तो 9868107070 पर अपने प्यारे प्यारे मैसेज जल्दी से हमें भेज दीजिए। कोशिश पूरी रहेगी कि आप जो फरमाइश हमसे कर रहे हैं उस फरमाइश को आप तक ज़रूर पहुंचाया जाए, आपको वो गाने सुनवाए जाएं। फिलहाल इसी तरह बातें होती रहेंगी, खूबसूरत गानों का सफ़र भी चलता रहेगा और अब अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। ये अगले

हम आशीष, हमें भेजा है उत्तम नगर दिल्ली से, और भेजने वाले हैं बोधराज खोरवाल, कमला रानी और भानु प्रकाश। और ये फिल्म दबंग से एक प्यारा सा साउंड ट्रैक सुनना चाहते हैं, बिना देरी करे आपकी पसंद का ये गाना, दिल से दिल तक।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग, और सीरियसली आपके वाले जो सॉन्ग्स हैं ना, कभी कभी तो माइंड ब्लोइंग, क्या चॉइस लेकर आते हैं आप। बहुत ही प्यारा सा दमन का भी गाना हमने सुना, और अगले मैसेज की तरफ बिना देरी करे रुख करते हैं। ये कौन हमें मैसेज भेज रहे हैं, कहते हैं दोस्त मेरी कोई सॉन्ग चॉइस नहीं होती, मैं तो बस शो इन्जॉय करता हूँ। और ये हमें मैसेज कौन भेज रहा है, ये हमें कहते हैं गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक सौरभ अनेजा। ओके, सौरभ अनेजा हमें गाज़ियाबाद से मैसेज भेज रहे हैं। फ़िलहाल आपका शुक्रिया, आपने हमें मैसेज भेजा। और अगला मैसेज ये हमें कहते हैं गुड आफ्टरनून मनमोहन सिंह, सोनम, काव्य और दक्ष, यूपी रामपुर ज़िले के मांडवा हसनपुर गांव से हमें मैसेज भेज रहे हैं, और ये भी अपनी चॉइस हमें भेज रहे हैं। तो बिना देरी करे ये जो गाना सुनना चाहते हैं उनके लिए डेडिकेटेड। This is a night, baby.

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग और अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। ये मैसेज हमें कौन भेज रहे हैं? ये मैसेज हमें भेज रहे हैं सतेंद्र सिंह ग्राम बिलोली ज़िला कासगंज से, और ये कहते हैं मैम साहिबा मुझे फिल्म आशिकी का गाना सुनवा दीजिए, कोई भी गाना सुनवा दीजिए, तो बिना देरी करे आप लीजिए, इंजॉय कीजिए आशिकी का ये प्यारा सा साउंड ट्रैक।

बेहद खूबसूरत गाना अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में भी आपने सुना फिल्म आशिकी से। और सीरियसली ये जो मूवी रही है ना, इस मूवी की बात की जाए तो अपने आप में काबिल तारीफ। जब देखो तब नया सा फील होता है, राहुल रॉय ने क्या काम किया है ना। और जब भी इस मूवी को देखो तो एक अलग ही एहसास होना शुरू हो जाता है। फिलहाल इसी तरह बातें होती रहेंगी। और अगर हम अगले मैसेज की तरफ रुख करें तो ये मैसेज हमें भेजा है किसने, मेरठ से दर्शन और कविता गौर ने। और ये अपनी पसंद का गाना सुनना चाहते हैं, बिना देरी करे आपके लिए आपकी पसंद का ये साउंड ट्रैक।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग और अगला मैसेज देखते हैं हमें किसने भेजा है। ये कहते हैं हेलो सायमा मैम, हेलो कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी अच्छी

होंगी, और जितने हमारे दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, हमें मैसेज भेज रहे हैं, वो सभी अच्छे होंगे। और ये आगे कहती हैं कि प्लीज़ प्ले एनी सॉन्ग फ्रॉम दी फिल्म बाजीगर। मैसेज हमें भेजा है ये अफशा खानम ने, फ्रॉम धामपुर डिस्ट्रिक्ट बिजनौर उत्तर प्रदेश। बिना देरी करे, क्योंकि क्या है ना, वक्त की कमी भी है, साउंड ट्रैक्स लंबे होते हैं और ज़्यादा इंतज़ार करवाना भी मुझे अच्छा नहीं लगता। कोशिश यही रहती है कि बिना इंतज़ार कराए ना आपके प्यारे प्यारे जो मैसेज आप हमें भेज रहे हैं ऑन एयर किए जाएँ, और आपकी जो फरमाइश है वो आप तक ज़रूर पहुंचाई जाए, आपको वो प्यारे से साउंड ट्रैक सुनवाए जाए। फिलहाल अगर किसी वजह से, क्या अगर वक्त की कमी की वजह से मैं आपके मैसेजेस अपने इस प्रोग्राम में शामिल ना कर पाऊँ, तो प्लीज़ दिल पे मत लीजिएगा, माजरत मुआफ़ी, आई एम लिटरली वेरी सॉरी। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि बहुत सारा जो साउंड ट्रैक्स होते हैं, बहुत साउंड ट्रैक्स ऐसे होते हैं जो बहुत लेंदी हो जाते हैं। आपकी फरमाइशें हैं, कोशिश पूरी यही रहती है कि आपकी फरमाइश आप तक ज़रूर पहुंचाई जाए। फिलहाल आपको सुनवा रही हूँ ये आपकी पसंद का गाना जो आप सुनना चाहती हैं, अफशा खानम फ्रॉम धामपुर डिस्ट्रिक्ट बिजनौर उत्तर प्रदेश से।

0: है चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए तो जिंदगी में रंग भर दे।
1: मेरी जैसी मेरी अपनी पताका,
0: पताका चाय, गजब का स्वाद।
2: हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
3: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें
3: रेनबो डेस्टिनेशंस
2: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

बेहद खूबसूरत गाना भी आपने सुना फिल्म प्यार के साइड इफेक्ट से, और ये जो फरमाइश हमसे की थी दीपेंद्र एंगटी कार्बी और आंग्लोग असम से, और ये गाना सुनना चाहते थे और इन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की थी प्लीज़ गाना मत काटिएगा। देखिए दोस्त, गाना तो हम कभी नहीं काटने की कोशिश करते, पूरी उम्मीद रहती है, पूरी कोशिश यही रहती है कि आपके जो पसंदीदा गाने हैं ना आपको पूरे सुनवाए जाए, लेकिन समहाउ कभी टाइम की वजह से कुछ ऐसा हो जाए वो अलग बात है। फिलहाल इसी तरह बातें होती रहेंगी, वक्त की कमी भी है, लेकिन बिना देरी करे एक और साउंड ट्रैक आपके लिए, और इस साउंड ट्रैक की फरमाइश हमसे की है शमायला ने, जो कि साउथ दिल्ली से हैं और वो सुनना चाहती हैं इस गाने को, जो फिल्म है वो है कहीं प्यार ना हो जाए, इसका टाइटल ट्रैक। फिलहाल इसी तरह बातें होती रहेंगी, खूबसूरत गानों का सफ़र भी चलता रहेगा और इसी तरह बातें होती रहेंगी। फिलहाल ये गाना आपके लिए दिल से दिल तक।

बेहद खूबसूरत गाने। सीरियसली आज जो आपने इतनी प्यारी प्यारी फरमाइशें भेजी हैं ना, उनका कहना ही क्या, लेकिन वक्त की कमी भी है, मुझे जाना भी है इस वादे के साथ। अगली बार फिर आऊँगी एक नए प्रोग्राम को नए अंदाज में लेकर के, क्योंकि जाने का दिल तो नहीं है बट क्या करूँ, जाना पड़ेगा। और ये

एफएम रेनबो पर अब वक्त है मुख्य समाचारों का। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, विकसित भारत की यात्रा भारत के संस्थानों, लघु और मध्यम उद्यमों तथा नवाचार की ताकत पर आधारित होगी। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजी नगर विधानसभा उपचुनावों के लिए प्रचार आज समाप्त। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को रूपांतरित करने के उद्देश्य से शुरू की गई पीएम सेतु योजना ने एक वर्ष पूरा किया। यमन ने सना और सादा में हूती नियंत्रित क्षेत्रों पर हमले की पुष्टि की। हूती ने रियाद में अरामको तेल संयंत्र पर मिसाइल और ड्रोन हमले की जिम्मेदारी ली। जापान एशियाई खेलों का समापन आज। भारत ने 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदकों के साथ पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस मामले में पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी को भी तलब किया गया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने अमेरिका के हिंद प्रशांत कमान के प्रमुख एडमिरल सैमुअल जे पापारो से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच सुरक्षा साझेदारी और समुद्री सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारतीय वायुसेना ने आज फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह शेखों की स्मृति में देशभर के विभिन्न शहरों में शेखों भारतीय वायुसेना मैराथन का दूसरा संस्करण आयोजित किया। 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले साल 7 से 9 जनवरी तक पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का आयोजन

विदेश मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मिलकर करेगा। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज राजस्थान के जैसलमेर में डेजर्ट नेशनल पार्क के सैम क्षेत्र में दो नर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षियों को छोड़ा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी श्यामाजी कृष्ण वर्मा और सुब्रमण्यम शिवा को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने स्वतंत्रता सेनानी त्यागी तिरुपुर कुमारन को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। और अंत में केरलम, माही, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के कुछ स्थानों में कल तक तेज बारिश का अनुमान। तो ये थे एफएम रेनबो पर अभी तक के मुख्य समाचार।

जादू जादू जादू आकाशवाणी रेनबो की मैजिकल फ्रीक्वेंसी पर जादू जादू जादू और ये जादू है छोटे उस्तादों का प्रोग्राम। छोटे उस्ताद आपके साथ, साथ में मैं प्रियंका मामगेन। और वक्त की तरफ नज़र डाली जाए तो 2:09 और पूरे 57 सेकंड हो रहे हैं। संडे का दिन है और कई सारी बातें हैं जो संडे को ख़ास बनाती हैं। जी हाँ, उम्र कोई भी हो, वर्ग कोई भी हो, संडे का इंतज़ार हम सभी को रहता है। और इस महीने के संडे तो बहुत ही ख़ास है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो एक के बाद एक फेस्टिवल्स आएंगे उनकी तैयारी भी तो करनी है जनाब। और वैसे भी देखा जाए तो इन फेस्टिवल्स का इंतज़ार हम पूरे साल करते रहते हैं और हर कोई इसका इंतज़ार करता है, इन फेस्टिवल्स का इंतज़ार करता है। लेकिन वहीं जब हम ध्यान से देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो इंतज़ार इन फेस्टिवल्स का रहता है वो बच्चों में रहता है, बच्चों में देखने को मिलता है। बच्चे सबसे ज़्यादा इंजॉय करते हैं इन फेस्टिवल सीजन्स को, इन फेस्टिवल्स को। जी हाँ, त्यौहार फेस्टिवल्स बच्चों के जीवन में खुशी, उल्लास, हर्ष बहुत कुछ लेकर आते हैं। और साथ ही साथ ये फेस्टिवल्स बच्चों के लिए बहुत कुछ सीखने, समझने, जानने के अवसर भी लेकर आते हैं। कभी सोचा है आपने इस ओर भी? जी हाँ जनाब, ये फेस्टिवल्स बहुत सारी चीज़ें लेकर आते हैं जिन्हें समझने का मौका मिलता है बच्चों को। और कहीं ना कहीं इससे उनकी पर्सनालिटी डेवलप होती है, उनका व्यक्तित्व विकास होता है। और आज यही कुछ जानने की कोशिश करेंगे हम छोटे उस्ताद प्रोग्राम में।

0: चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए तो जिंदगी में रंग भर दे।
1: मेरी जैसी मेरी अपनी पताका,
0: पताका चाय गजब का स्वाद।
2: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
3: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
2: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
4: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
5: ठीक है,
4: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा ना इनके नाम है, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
3: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
2: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
6: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
2: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
3: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
2: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
3: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
2: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
3: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
2: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
3: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूर दर्द।

0: अगली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

फेस्टिवल्स त्योहारों की खुशियां हमारे जीवन में एंट्री करने की तैयारी कर चुके हैं जनाब। हर ओर हर्षो उल्लास के आने की दस्तक सुनाई दे रही है। जी हाँ, और जब हम फेस्टिवल्स की बात करते हैं, त्योहारों की बात करते हैं, तो हर जगह इसकी सेलिब्रेशंस देखने को मिलती हैं। और बच्चों में तो खास उत्साह देखने को मिलता है जब फेस्टिवल्स आते हैं, त्योहार आते हैं। और ये त्योहार बच्चों की पर्सनैलिटी को निखारने की बहुत ही खूबसूरत एक आदत

कर जाते हैं जी हाँ, हम सभी के बीच में, और कहीं ना कहीं बच्चों की पर्सनालिटी को निखारने के लिए ये बहुत ही खूबसूरत काम भी करते हैं हमारे त्यौहार। बच्चों को खुशियाँ मनाने की सीख देते हैं जहाँ ये त्यौहार, तो वहीं ये त्यौहार ये भी बताते हैं बच्चों को कि खुशियाँ बांटनी चाहिए, बांटने से खुशियाँ बढ़ती हैं, और खुशियों को बांटने की सीख कहीं ना कहीं ये त्यौहार हमें देते हैं, हमारे बच्चों को देते हैं। गिफ्ट शेयर करना, अपने भाई बहन दोस्तों रिश्तेदार के साथ मिठाई बांटना, जरूरतमंद लोगों को उनकी जरूरतें की चीजें देना, जी हाँ, ये सब चीजें बच्चों में कहीं ना कहीं दया और उदारता की भावना का विकास करती हैं। और कहते हैं ना, त्योहारों की खुशियां दुगनी हो जाती हैं जब हमारी खुशियों के साथ साथ हम दूसरों को भी खुशी देते हैं, और त्योहारों से यही भावना बच्चों में भी आती है। जी हाँ, त्योहारों से बच्चों में प्यार, करुणा, उदारता, सहयोग, सामाजिक जिम्मेदारी, जी हाँ, इन सभी गुणों का गुण आते हैं, इन गुणों का विकास होता है। अगर नहीं है तो इन गुणों का धीरे धीरे देख देख के विकास होता है, जो जीवन भर बच्चों के साथ रहता है, जो बच्चों को एक बेहतर इंसान बनाता है, एक बेहतर नागरिक बनाता है।

जी हाँ जनाब, पार्टी तो बनती है और पार्टी की बारिश होने वाली है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनने ही वाला है। भारत की बात की जाए, हमारे देश की बात की जाए, तो भारत विविधताओं का देश है। और हमारे देश को, जी हाँ, जहाँ भौगोलिक विविधता अलग करती है, तो वहीं हमारे देश में बहुत सारे त्यौहार हैं जो हमारी इस विविधता के बीच में हमें एकता के सूत्र में बांधते हैं। कई सारी धार्मिक परंपराएँ, जी हाँ, इन त्यौहारों से बंधी हुई हैं। और अगर त्योहारों को देखा जाए तो ये धार्मिक परंपराओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, परिवार और सामाजिक एकता को भी मजबूत करते हैं हमारे ये त्यौहार। त्यौहार जीवन में खुशियां, उल्लास, अपनापन लेके आते हैं। और बच्चों की बात हो तो त्यौहार बच्चों को किताबों से बाहर की दुनिया दिखाते हैं, जिंदगी की उन सच्चाइयों को, उन खूबसूरत बातों को वो सिखाते हैं जो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में आगे चल के बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं और ज़िंदगी में बहुत काम आती हैं। बच्चों को जब त्योहारों की तैयारियों में, अलग अलग कामों में शामिल किया जाता है, तो उनमें आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी, लीडरशिप और सामाजिक हार व्यवहार के गुण विकसित होते हैं। जी हाँ, त्यौहार बच्चों की क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता को निखारने का शानदार मौका देते हैं। त्यौहारों की तैयारियों में बच्चों को शामिल करने से वो अपनी कल्पना को नए तरीके से व्यक्त करना सीखते हैं। और जब बच्चे अलग अलग रंगों से रंगोली, चित्रकारी बनाते हैं, तो उनकी कल्पना शक्ति बढ़ती है। कागज़, मिट्टी, प्राकृतिक चीज़ों से सजावटी सामान बनाना, घर को सजाने से लेकर त्यौहारों के गीत सीखने और उन्हें प्रस्तुत करने से लेकर हर एक चीज में, हर एक एक्टिविटी में कहीं ना कहीं उनकी क्रिएटिविटी एक और स्टेप को आगे करते हुए बढ़ रही होती है। जी हाँ, और त्योहारों के समय में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उनमें वो भाग लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है और एक उनको अपने आप को एक्सप्रेस करने का जरिया मिल जाता है। उन्हें पता चल जाता है कि उन्हें अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करना है। तो ये जो त्यौहार है, ये फेस्टिवल हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहते हैं बच्चों की लाइफ में भी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फेस्टिवल्स, ये त्यौहार बच्चों की पर्सनालिटी को बहुत ही खूबसूरती से निखारने का काम भी करते हैं।

0: अब होगा शिक्षा, मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
1: मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदर्शन।
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
3: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
5: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
6: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

आकाशवाणी रेनबो की मैजिकल फ्रीक्वेंसी आपके साथ मैं प्रियंका मामगेन, हमारे साथ प्रोग्राम छोटे उस्ताद, और आज हम बात कर रहे हैं कि ये जो फेस्टिवल्स आने वाले हैं उन फेस्टिवल्स में कैसे आप अपने बच्चों की पर्सनालिटी को निखार सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं इन त्योहारों को मनाते हुए। देखा जाए तो जब फेस्टिवल्स आते हैं तो बड़े तो तैयारी करते ही हैं, प्लानिंग करते ही हैं, लेकिन बच्चे भी प्लानिंग करते नज़र आते हैं। फेस्टिवल में क्या क्या करेंगे, कैसे मनाएंगे फेस्टिवल्स और क्या क्या चीज़ें खरीदेंगे, इन सब की प्लानिंग बच्चों के माइंड में भी चलनी शुरू हो जाती है जब फेस्टिवल्स आते हैं। और जब त्यौहार आते हैं, फेस्टिवल आते हैं, तो ख़रीदारी भी जम कर होती है। ऐसे में हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि हमें अपने फाइनेंसेस को, अपने रुपये पैसे को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, खर्च करना है और कितनी शॉपिंग करनी है। कई बार क्या होता है कि हम जो फ्री मिल रहा होता है उसके चक्कर में बहुत ज़्यादा शॉपिंग करने लग जाते हैं, और यही आदत हमारे बच्चों में भी आ जाती है। वो देखते हैं कि बड़े इस तरीके से शॉपिंग कर रहे हैं तो शायद ये सही तरीका है, और वो भी ज़रूर से ज़्यादा शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन त्योहारों की ख़रीदारी करते हुए बच्चों की मदद करनी है आपको, जी हाँ, उनको कैसे शॉपिंग करनी है, क्या क्या चीज़ें शॉपिंग करते हुए ध्यान रखनी है ये ज़रूर बताएं, और उनको ही कहें कि वो घर की शॉपिंग जो त्यौहार है उससे रिलेटेड जो शॉपिंग है वो करें, और वो पूरा इस खर्च का हिसाब भी रखेंगे किस फेस्टिवल में कितना पैसा खर्च हुआ। जी हाँ, एक बजट भी आप उन्हें दे सकते हैं कि इस फेस्टिवल के लिए जो सामान लाना है, जिस जिस सामान की ज़रूरत होगी उसके लिए ये पैसा आपके पास है, और आपको इस पैसे से ही इस फेस्टिवल के लिए जो सामान आएगा वो सब लेके आना है। जी हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा सामान नहीं ख़रीदना है, ये ज़रूर अपने बच्चों को कहें। और होगा क्या, जी हाँ, इन सब से उनको जो फाइनेंसेस मैनेज करने का जो एक हुनर होता है बच्चों के अंदर, जो हमें लगता है कि वो नहीं है लेकिन वो उनके अंदर होता है, वो निखर कर आएगा, और कहीं ना कहीं उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी एहसास होगा कि किस फेस्टिवल में कितने पैसे खर्च होते हैं, और पैसों की कीमत का अंदाज़ा भी उन्हें होगा कि कितना इम्पॉर्टेंट है सही तरीके से पैसे कमाना भी और सही तरीके से पैसे खर्च करना भी।

बच्चों की बात चल रही है और बच्चों को परिवार के साथ जोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है फेस्टिवल्स, हमारे त्यौहार। हमारे त्यौहार बच्चों को जब घर परिवार दोस्तों रिश्तेदारों से मिलवाते हैं, उनसे मिलने का मौका मिलता है बच्चों को, तो कहीं ना कहीं ये मौका होता है एक दूसरे के करीब आने का। बच्चे अपने परिवार वालों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से मिलते हैं और कहीं ना कहीं एक बॉन्डिंग, नई बॉन्डिंग बनती है उनके बीच में। त्यौहारों की तैयारियों के टाइम पे जब तैयारियां चल रही होती हैं त्यौहारों की, तो माता पिता, दादा दादी और बच्चे के जो दोस्त होते हैं वो, या फिर जो रिश्तेदार होते हैं उनके साथ भी काम करते हुए बच्चे कुछ ना कुछ सीखते ज़रूर हैं। और जब त्यौहारों के टाइम पे बड़े लोग उन्हें त्यौहारों से रिलेटेड कहानियां सुनाते हैं या उनकी जो पारिवारिक परंपराएं होती हैं उनके बारे में उन्हें बताते हैं, सुनाते हैं, करते हुए उन्हें देखते हैं, दिखाते हैं, तो इससे बच्चे परिवार और संस्कृति और अपने परिवार के जो मूल्य होते हैं उनके परिवार के, उनको समझते हैं, जानते हैं और फिर उन्हें व्यवहार पर लेकर आते हैं। जी हाँ, साथ मिलकर खुशियां मनाने से बच्चों में अपनापन और सुरक्षा की भावना बढ़ती है। परिवार, नाते रिश्तेदारों के साथ त्यौहार मनाने से बच्चों को अपनी बात साझा करने, शेयर करने का मौका मिलता है, समझाने का मौका मिलता है और वहीं साथ ही साथ दूसरे परिवार के लोग जो होते हैं या फिर रिश्तेदार होते हैं उन्हें समझने का मौका भी देते हैं ये।

त्यौहार त्यौहार बहुत कुछ हमारी ज़िंदगी में दे कर जाते हैं, और जब बच्चों की बात होती है तो खुशियां तो दे कर जाते ही हैं, उनकी एक अच्छी सी स्माइल तो उनके फेस में आ ही जाती है जैसे ही फेस्टिवल्स की बात होती है। साथ ही साथ ये त्यौहार बच्चों की पर्सनालिटी को भी बहुत हद तक, बहुत ज़्यादा हद तक निखारते हुए आगे बढ़ते हैं।

छोटे उस्ताद प्रोग्राम और आपके साथ मैं प्रियंका मामगन और अब मैं आपसे विदा लेती हूं क्योंकि अगले प्रोग्राम के लिए आ चुकी हैं अगली एंकर। और इसी के साथ ही मैं ये कहना चाहूंगी कि इस फेस्टिवल में अपने बच्चों को पूरी तरीके से अपने साथ इन्वॉल्व करें, अलग अलग गतिविधियों में, अलग अलग कार्यक्रमों में जो भी आप कर रहे हैं उसमें अपने बच्चों को साथ लेकर उनको उस फेस्टिवल का हिस्सा बनाएं, क्योंकि ये त्यौहार सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं है या फिर लाइफ में चेंज नहीं लेके आते हैं बच्चों की, बल्कि ये त्यौहार बच्चों की पर्सनालिटी को ही चेंज

कर देते हैं और उनकी जो पर्सनैलिटी विकास में बहुत ही सहायक होते हैं। इसी के साथ मैं प्रियंका मामगन लेती हूँ विदा। बाय, टेक केयर, मिलेंगे एक घंटे के बाद। बाय।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
2: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है। नमस्कार, आज के इस रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं हूं शालिनी मित्तल और आज का कार्यक्रम किस विषय पर है जानना चाहते हैं ना आप? तो बिल्कुल, ये विषय और भी खास इसलिए क्योंकि आज एक खास दिवस है। आज है वर्ल्ड एनिमल डे। और वर्ल्ड एनिमल डे क्या होता है, क्यों मनाया जाता है और एनिमल्स क्यों हमारे लिए जरूरी है, सारी बातें कोशिश करेंगे अपने सभी श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए। इतना बताना चाहूंगी कि वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे या विश्व पशु कल्याण दिवस हर साल 4 अक्टूबर को मनाया जाता है ताकि जानवरों के कल्याण के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। इस दिन लोगों को जानवरों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इस दिन को विश्व पशु दिवस या विश्व पशु संरक्षण दिवस के रूप में जाना जाता है और इस दिन को पशु प्रेमी दिवस के रूप में भी कहा जाता है क्योंकि ये पशु अधिकारों को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों और संगठनों का समर्थन करके जानवरों के प्यार, देखभाल, स्नेह और सुरक्षा को प्रोत्साहित करता है। तो आज वर्ल्ड एनिमल डे पर हम जो काम इस कार्यक्रम के माध्यम से करना चाहते हैं वो ये करना चाहते हैं कि अपने श्रोताओं को जागरूक करें और बताएं कि जानवर भी उतना ही जीने का हक रखते हैं जितना हम लोग रखते हैं। द वर्ल्ड इज देयर होम टू, ये जो संसार है ये उनका भी घर है तो उनको भी जीने का उतना ही हक है। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं, रेडियो डॉक्टर बनकर हमारे साथ रहेंगे इस कार्यक्रम में। आपका तारुफ करा दूं, आज हमारे साथ है वेटरनरी डॉक्टर डॉक्टर आर टी शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में। और इस खास विषय पर हम चाहते हैं कि हमारे श्रोता भी पार्टिसिपेट करें और अगर वो कुछ बताना चाहते हैं जानवरों के साथ उनकी कोई ऐसी मेमोरी है या उन्होंने पाल रखा है या इससे रिलेटेड उनके जो विचार हैं, जो भी समस्या भी हो सकती है किसी की कुछ उससे रिलेटेड, वो सारी आज सॉल्व हो सकती है क्योंकि डॉक्टर साहब जानवरों को बहुत करीब से जानते

0: देखिए, आजकल की लाइफ में हम लोग इतना बिजी हो गए हैं, हम एक ऑफिस से अपने बेडरूम, बेडरूम से ऑफिस, इसमें हम सब भूल गए कि ये एनिमल भी एक इकोलॉजिकल सिस्टम के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एक ह्यूमन बीइंग या प्लांट्स हैं। तो इनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है एज ए कंपेनियन, बिकॉज बहुत हमारे एनिमल लवर्स हैं जो इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर एक एनिमल उनके घर में एज ए पेट रखा है, जैसे कोई डॉग या कैट या कोई स्क्विरल या कोई बर्ड और रैबिट जो कम्युनिकेट करते हैं, तो वो जो स्ट्रेस आपका ब्रेक करते हैं जब आप ऑफिस से आते हैं, बाहर से आते हैं, या वो लव जो विच यू लॉस्ट इन योर बिजी लाइफ, वो जो पार्ट लाइक प्ले करते हैं, मुझे लगता है वो आपको इतना डिस्ट्रेस करते हैं कि आप एकदम रिचार्ज हो जाते हो, जैसे आप अपने रात को फोन चार्ज करते हो। तो ऐसे मीन आप यू आर अगेन रेडी फॉर द वर्क, एंड आप उतना पोटेंशियल ज्यादा दे पाते हो अगर इफ यू आर एनिमल लवर, इफ यू स्पेंड योर ऑफ टाइम विद योर पेट्स एंड कम्युनिकेट योर स्ट्रेस एंड योर हैप्पीनेस विद योर एनिमल्स। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इकोलॉजिकल सिस्टम के लिए तो है ही है, लेकिन ह्यूमन की हेल्थ और उसकी इंटरनल हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। कम से कम लोगों को एक मैसेज दिया जाए कि दे आर, डोंट फॉरगेट देम, दे आर द इक्वली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स बिकॉज दिस बिलोंग्स टू देम ऑल्सो।
1: जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई डॉक्टर साहब, और हमारे श्रोता आप समझ ही गए होंगे कि आज इस कार्यक्रम में यानी रेडियो डॉक्टर में हम आपसे क्यों बात करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी और बहुत सही बात आपने बोली कि ह्यूमन हेल्थ इससे बहुत डायरेक्टली रिलेटेड है, क्योंकि एनिमल्स जब हमारे अराउंड रहते हैं, एक तो इकोलॉजी तो है ही, पर दूसरा डी स्ट्रेस, आपने कहा कि डी स्ट्रेस करने के लिए बहुत अच्छा एक माध्यम है, और कोशिश करनी चाहिए कि फोन और जो हम रील्स के माध्यम से अपने को कोशिश करते हैं वो डी स्ट्रेस नहीं होता, इनफैक्ट हमें और स्ट्रेसफुल बनाता है। तो स्ट्रेस हमें जो है बहुत सारी बीमारियों को आमंत्रण देता है, तो अगर हम डी स्ट्रेस रहेंगे तो ये एक अच्छा जरिया है, हम उनकी देखभाल भी करें और वो इन टर्न हमें प्यार तो देते ही हैं, साथ ही हमारी सारी चिंताओं को भी हर लेते हैं। तो एक प्यारा सा गीत हम सबसे पहले कार्यक्रम में सुनेंगे डॉक्टर साहब, और अपने श्रोताओं से ये अनुरोध करेंगे कि आप विषय समझ गए होंगे, आज हम बात कर रहे हैं एनिमल वेलफेयर पर, और अगर आपको भी कुछ कहना है, आपकी कोई ऐसी बात है जो आप चाहते हैं कि हम सबके साथ शेयर करें और वो एनिमल से रिलेटेड है, और कोई ऐसी समस्या है जिसका आपको सामना करना पड़ रहा है अपने पेट रिलेटेड, या कोई और भी ऐसी चीज है जो आप जानना चाहते हैं डॉक्टर आरटी शर्मा से, तो जरूर यहां जुड़िए और एक प्यारा सा गीत सुनते हैं और वापस आइए, हमारे साथ रहिए इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है रेडियो डॉक्टर।

0: वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं, हम एनिमल वेलफेयर के बारे में, हमारे लिए सोचना बहुत जरूरी है, ये चाहते हैं ये बात हर श्रोता तक पहुंचे। और जैसे डॉक्टर साहब ने पहले भी कहा, हमारी तरह जानवर भी प्यार, खुशी, डर, दर्द महसूस करते हैं, लेकिन वे बोले गए शब्दों को समझ नहीं पाते ठीक से। तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम उनकी बात समझें, उनको समझें, उनकी समस्या को समझें और ये सुनिश्चित करें कि उनकी भलाई और उनका जीवन जो है वो भी सुरक्षित रहे, एक सम्मान की जिंदगी उनको भी हम दे सकें। तो ये बहुत जरूरी बात है। हमारी श्रोता डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हैं, बताना चाहेंगे कि डॉक्टर आरटी शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में हैं और इस कार्यक्रम में रहेंगे। आप वेटरनरी डॉक्टर हैं और बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, इनको बहुत इस विषय में जानकारी है, तो जरूर आपकी जो भी समस्या है उसका जवाब डॉक्टर साहब दे पाएंगे। तो हम सुन लेते हैं इनकी समस्या। हेलो
1: हेलो
0: जी जी, आप हैं रेडियो डॉक्टर में जी? नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में।
1: हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्कार।
2: नमस्कार जी,
1: मैं मिसेस बेदी बोल रही हूँ पंचकुला से।
2: हाँ जी बोलिए।
1: हाँ जी डॉक्टर साहब, पेट के लिए केयर भी बहुत जरूरी है, जैसे हम माँ अपने बच्चों की करती है, अगर पेट हमने रखा है तो हमें उसकी केयर अपने बच्चे की तरह ही करनी चाहिए।
2: बिल्कुल, बहुत अच्छा सोच है।
0: बिल्कुल बहुत सही बात।
1: और दूसरी बात यह है कि देखिए, शहरों में तो हम डॉग रख लेते हैं, कर लेते हैं, आप गाँव में चाहिए, जब लड़की जैसे विदा होती है तो गाय के गले मिल के रोती है।
2: बिल्कुल,
1: कि मैं छोड़ के जा रही हूँ। पर शहरों में जो हमारे ये कूड़ा करकट जब गाय खा के मरती है तो बहुत दुख लगता है। पॉलिथिन खा रही है बेचारी, कुछ खा रही है। एक मेरे को लगता है कि कोई और एसोसिएशन ऐसी भी होनी चाहिए जो ये कूड़े की ओर से ध्यान करे, ध्यान की पशु ना मरे।
0: बिल्कुल बहुत सही
1: बात, पशु मर रहे हैं।
2: वी कैन अंडरस्टैंड योर कंसर्न, बट ये है कि इंसान अब इतना सेल्फिश हो गया है कि उसको आसपास कुछ गंद दिखता नहीं है, एक्सेप्ट मेकिंग हिज ओन लाइफ कंफर्टेबल। तो इसलिए वो हमें थोड़ा सा अपने आप को सेंसिटाइज करना पड़ेगा, बिकॉज सराउंडिंग्स जो हैं वो हमें ही मेंटेन करनी है। गंद भी हम ही डालते हैं, कचरा भी हम ही डालते हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि वो
1: कुत्ते जो हैं बेचारे लावारिस जिनको कहते हैं हम, कई बार वो यहाँ मरे होते हैं हमारे आसपास, उनके जब होता है अंदर से कीड़े निकलते हैं, पॉलिथिन निकलते हैं ढेरों ढेर। हम लोग शांत तो वो जानवर हैं बेचारे, जो हमें देखते हैं, भालते हैं, सब कुछ करते हैं, हम लोग इंसानियत ही छोड़
0: बिल्कुल सही बात कही है मिसेस बेदी आपने। और ये एक छोटा सा प्रयास है रेडियो डॉक्टर का, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों को ये संदेश पहुंचाएं कि हमारे स्वास्थ्य की आवश्यकता है, पर हमारे साथ जो पशु रहते हैं उनका स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए।
1: देखिए शालिनी जी, हम कहते हैं ना दूध में कंटेमिनेशन आ गई है, क्यों आई है? क्योंकि हम लोग पॉलिथिन फेंकते हैं धड़ल्ले से, वो खाती है और दूध में जहर बन रहा है।
0: बिल्कुल सही बात। जरूरत क्यों पड़ती है स्वच्छता पखवाड़ा मनाने की? इसीलिए क्योंकि हम, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, वी आर नॉट सेंसिटाइज्ड, हमें इस चीज के का एहसास होना चाहिए। ये एहसास नहीं, ये एक वे ऑफ लाइफ होना चाहिए, क्यों डॉक्टर साहब?
1: वे ऑफ लाइफ होना चाहिए कि अगर हम, देखिए डॉक्टर साहब, अगर हम कोई चीज खाते हैं पॉइजन हो जाता है, तो उसी तरह वो जो एनिमल है बोल नहीं सकता, तो क्या उसको हम पॉइजन देते
2: हैं? हम लोग सोचते हैं कि जब बच्चे को हम परवरिश करते हैं, जब आप स्कूल में होते हैं, तो उनके लिए एक स्पेशल एक कोर्स भी होना चाहिए, हाउ टू बी ए गुड सिटीजन। आप हिस्ट्री और मैथ पढ़ा देने से उसका उतना कैलिबर नहीं बनता जितना एक सोशल लैंगल में एक बच्चे की ग्रोथ होती है। तो ही शुड अंडरस्टैंड, शुड बी सेंसिटाइज टू द सराउंडिंग एरियाज। लाइक आप
1: हमारी बात तो कोई समझेगा नहीं, एक बार आप मैसेज स्प्रेड करेंगे तो शायद
0: आज पूरे कार्यक्रम
2: आज हम लोग यही कर रहे हैं, हो सकता है
0: करने वाले हैं।
2: कोई नए कॉलेज में या स्कूल में जो ये सिलेबस बनाते हैं तो शायद एक सब्जेक्ट ऐसा रख लें, हाउ टू बी ए गुड सिटीजन। तो हम लोग अगर बच्चों को ये सिखाना शुरू करें तो मुझे लगता है आने वाली नेक्स्ट जनरेशन विल बी मोर सेंसिटाइज देन द प्रेजेंट वन।
0: बिल्कुल।

0: यही बात है, पर डॉक्टर साहब एक ये बात भी सही है कि हम जैसा करते हैं हमारे बच्चे वो सीखते हैं,
1: बिल्कुल
0: तो ये तो आने वाली जनरेशन्स में जो है, ये आपने बोला कि पढ़ के वो सीखे, पर हम जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं एडल्ट्स, वो अपने आप को बदल सकते हैं, थोड़ा सा प्रयास की
1: बिल्कुल बदलते।
0: आवश्यकता है।
1: मैं तो ये बोल रहा हूँ, मेरी दादी को मैंने देखा है कि बहुत जब खाना बनाती थी सबसे पहले एक चपाती निकाल के रखती थी। वो बोल रही है ये गाय को देनी है, एक चपाती वो चिड़िया के लिए बाहर
0: बिल्कुल
1: रखती थी।
0: बिल्कुल
1: तो वो एक बहुत अच्छा सोच था, वो कितना कंसर्न था फॉर द बर्ड एंड फॉर द एनिमल। अगर एक इंसान, एक फैमिली ऐसा करे तो कितना अच्छा हम कर सकते हैं। बट वो आजकल की फास्ट लाइफ में और मोबाइल की लाइफ में ये सब चीजें भूलते जा रहे हैं। आज तो
0: जी,
1: खुद खाना भी आप लाइक ऑनलाइन ही मंगवाते हो, तो घर में बनाते ही नहीं।
0: ये
1: तो
0: जी
1: दैट काइंड ऑफ ए कल्चर वी हैव टू चेंज एंड सेंसिटाइज आवर चिल्ड्रंस।
0: वेरी राइटली सेड। और डॉक्टर साहब कुछ मैसेजेस भी हमारे पास आ गए हैं, हमें सागर जी ने लिखकर भेजा है, विजयपुरा कर्नाटका से, 25 साल के हैं। उन्होंने लिखा है कि मेरे दो क्वेश्चन हैं कि अगर हमें कोई जानवर दिखता है स्ट्रीट पर जो कि इंजर्ड है, तो हमें क्या करना चाहिए और इस सिचुएशन को हम कैसे उसको बचा कैसे सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन एक इनका और है कि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो स्ट्रीट पे एनिमल्स होते हैं या पेट एनिमल्स भी होते हैं, उनको कुछ बीमारियां हो जाती हैं, उनसे वो स्प्रेड होती हैं, तो इसमें क्या हम कर सकते हैं। एंड ही इज थैंकिंग अस फॉर दिस अमेजिंग प्रोग्राम।
1: थैंक यू सर फॉर योर कंसर्न। बट बात यह है कि आपके एरिया में, जिस एरिया में भी आप हो, वहाँ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिसेज हैं, जो आप ऑनलाइन उनके नंबर्स देख सकते हो। हर टाउन में, हर सिटी में एनिमल वेलफेयर बोर्ड के लाइक स्मॉल ये एसोसिएशंस होती हैं, जो गवर्नमेंट रन रहती हैं, जो एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी होती हैं। उनके नंबर आप ऑनलाइन ढूंढ लीजिए, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ढूंढ लीजिए। ऐसे बहुत से डॉक्टर्स हैं, बहुत से हॉस्पिटल हैं जो हमारे होमलेस एनिमल्स के लिए उनकी अलग से हेल्पलाइंस हैं। तो वो अगर आप लकी हैं उस एरिया में, अगर ऐसा मिल जाता तो आप सबसे पहले उनको कॉन्टेक्ट कर लीजिए। और अगर कोई एक्सीडेंटल एनिमल है, सबसे पहले उसको सड़क से एक साइड में करने की कोशिश करें। अगर गाय है तो किसी की हेल्प ले लें, अगर डॉग है तो आप इमिडिएटली उसको ऐसे रॉ हैंड से नहीं पकड़े, बिकॉज ही इज ऑलरेडी इन द पेन। आप अगर वो एक्सीडेंटल एनिमल या डॉग को अपनी तरफ से हेल्प कर रहे हैं, लेकिन वो ही कैन बाइट यू इन दैट कंडीशन, तो आप एक टॉवल या कोई चद्दर उसके ऊपर फेंक के उसको साइड में रख सकते हैं कि दूसरी गाड़ी उसको फर्दर इंजर नहीं करे। और वो सबसे पहला स्टेप है, कोई ब्लीडिंग हो रहा है तो आप उसको स्टॉप करने की कोशिश करें। आसपास के नियरेस्ट कोई वेटनेरियन है या एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, उनको फोन करें। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन के पास आजकल एम्बुलेंसेज हैं, वो ऑनलाइन आप अवेलेबल रहती हैं, तो आप उनको कॉल करें। तो जो कंसर्न लाइक कंपैशनेट एनिमल ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, वो आपको रिस्पॉन्ड जरूर करेंगे। सेकेंडली, बहुत सी ऐसी डिजीजेज हैं, जेनेटिकल डिजीजेज, जो कि कम्युनिकेबल हैं फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन, जैसे लेप्टोस्पायरा है और रेबीज है, स्किन डिजीजेज हैं। तो ऐसे में अगर आपको कुछ ऐसा लगता है, जैसे रेबीज, टू बी फ्रैंक, बहुत से लोग डॉग से इसलिए डरते हैं, उनको लगता है डॉग मीन रेबीज। ऐसा नहीं है, डॉग्स दे आर नॉट बॉर्न विद द रेबीज। रेबीज एक अलग डिजीज है, जब वो वायरल इन्फेक्शन है, जब किसी को होती है तो उसको उसके सलाइवा में वो वायरस शेड होने लगता है, वो भी 10th या 15th डे, तो तब वो किसी को बाइट करे तब रेबीज होती है। ऐसे अगर नॉर्मल डॉग के लिए अगर उसका लिक जा कर ले या बाइट कर ले तो रेबीज नहीं होती। तो बहुत से लोग डॉग से इसलिए डरते हैं या हेट करते हैं। सबसे पहले तो ये एक कंसेप्ट अपने मन से निकाल दीजिए कि हर डॉग रेबीड होता है। और सेकेंडली, अगर रेबीड होगा तो वो अपनी कॉलोनी में नहीं रहेगा, वो चलता फिरता रहता है, इनकोऑर्डिनेशन होता है, जॉ उसका हैंग करने लगता है, स्लाइवेशन होती है। तो ऐसा डॉग अगर आपको नजर आए तो आप आसपास की ऑर्गेनाइजेशन, जो एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, उनको फोन कर सकते हैं, किसी डॉक्टर की हेल्प ले सकते हैं, पर उसको मारे नहीं या भगाए नहीं, क्योंकि अगर वो उस टेरिटरी से निकल गया तो वो दूसरे डॉग्स को काटेगा, फिर ऐसे डिजीज कैन बी स्प्रेड इन दैट एरिया। एक वो आप कर सकते हैं। सेकेंडली, लेप्टोस्पायरा है, एक वायरल इन्फेक्शन है जो यूरिन से थ्रू होती है, तो ऐसा आप अपने RWA जो है उनको बता सकते हैं कि वो अपने जो मेंबर्स हैं, जो अपने रेजिडेंट्स हैं, उनको एक सर्कुलर भेजे लेप्टोस्पायरा कैसे स्प्रेड होती है। तो वो ये सब अवेयरनेस कैंपेन से ही होगा। और स्किन डिजीजेज हैं, जैसे डेमोडिक है या स्केबीज है, जो ह्यूमन को हो जाती है अपने पेट से, बट वो आपका डॉक्टर ही बताएगा। अगर आपको लगता है आपके डॉग के या कैट है जो उसके बाल गिर रहे हैं या स्क्रैच कर रहा है, तो इमीडिएटली डॉक्टर को दिखा दें, तो वो एक बार डायग्नोस कर देंगे वेदर इट्स स्केबीज या डेमोडिक है या सिंपल एलर्जी है। अगर स्केबीज है तो देन यू हैव टू बी केयरफुल बिकॉज दिस इज कंटेजियस, बट अगर डॉग को आप ट्रीट कर देंगे तो एंड दिस इज क्योरेबल डिजीज, अगर आप अवेयर हैं इस बात के और अर्ली स्टेज में इसको डायग्नोज कर लेते हैं तो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। तो ये तीन चार चीजें ऐसी हैं जो आप अगर आप नॉलेजेबल हैं तो आप अपने फ्रेंड्स में अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ऐसी चीजें स्प्रेड कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ एनी जॉक्स, तो आई थिंक दैट बी वेरी गुड स्टेप यू कैन टेक।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब आपके माध्यम से मिली हमारे श्रोताओं को, और जैसा आपने कहा इस जानकारी को आप जितना स्प्रेड करना चाहें करिए, और ये कार्यक्रम जो है हमारा जन जन तक पहुंच रहा है, सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी इसको सुना जाता है और बहुत पॉपुलर है हमारा प्रोग्राम। तो यही गुजारिश रहेगी कि इस बात को जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं ध्यान से सुने और अपने जानने वालों तक पहुंचाएं। हमारे एक श्रोता और वेट कर रहे हैं फोन लाइन पर। हेलो,
2: रामवीर गांधी का दिल्ली से बोल रहे हैं।
0: जी रामवीर गांधी जी बताएं।
2: डॉक्टर नमस्कार।
1: नमस्कार सर।
2: डॉक्टर जैसे कि हम लोग स्ट्रीट डॉग को देखते हैं, स्ट्रीट डॉग होते हैं तो उनके टिक्स काफी हम देखते हैं, हम उनके हेल्प करने की कोशिश करते हैं पर लगता है काट ना ले, और वैसे तो हमने दवाई तो ले रखी है फिर भी हम उसको स्प्रे मारते हैं फिर भी वो टिक्स उसके रह जाती है। कोई हमें ये समझ नहीं आता डॉग काटे ना और हम उसकी हेल्दी कर दें। दूसरा सवाल मेरा ये है कि मेरे पास दो डॉग हैं, एक के बाल हैं एक के बिना ज्यादा बाल नहीं है, तो बाल वाला डॉग जो है हमारा कम खाता है, टॉय ब्रीड है, और दूसरा डॉग आराम से खा लेता है, क्या गर्मी के कारण वो ऐसा बिहेव करता है? और तीसरा एक सवाल मेरा बहुत ही पुराना है कि पहले भी मैंने कम से कम 20 साल पहले ये बात पूछी थी, एक डॉग था मेरे पास डॉगर में, तो वो क्या था एक फिल्म का सॉन्ग जैसे ही चालू होता था उसके म्यूजिक की दो लाइनें आती थी, तो वो कहीं भी होगा फोर्थ फ्लोर से लेके ग्राउंड फ्लोर पे या ग्राउंड फ्लोर से फोर्थ फ्लोर पे, तो तुरंत वहां पहुंचता था, सुनता था 5 सेकंड वो लाइनें, उसके बाद वो अपना बिहेव दिखाता था, वो करने लगता था। तो उसकी ये हमें समझ नहीं आई ये वो क्या उसको प्रॉब्लम थी या कोई अच्छी बात थी, फिर हमने अपने फ्रेंड को बताया, फ्रेंड ने भी कहा टेस्ट करते हैं, उसको टेस्ट किया, फिर हमें लगा कि इसके अंदर कोई ऐसी परेशानी है, ये समझता है ये परेशान होता है, तो हमने वो गाना बजाना ही बिल्कुल बंद कर दिया, बिल्कुल सपोई को बोल दिया ऐसा मत करें। ये तीन बातें
0: करते हैं। चलिए डॉक्टर साहब बता रहे हैं आपको सारी बातें।
1: देखिए एक जो टिक्स का आपने बोला, वो टिक्स आज हमारे ट्रॉपिकल कंडीशन ऐसी कंट्री में जब रेनी वेदर होता है ये डॉग एक द होस्ट इन देयर लाइफ साइकिल, तो वो इनके ऊपर ब्रीड करते हैं फिर गिर जाते हैं फिर वो दूसरे डॉग पे चले जाते हैं, ऐसे स्प्रेड होते रहते हैं उस एरिया में। तो आप बिकॉज दिस इज फॉर ए होमलेस डॉग, तो मैं आपको एक मेडिसिन बताता हूँ, नियोमैक के नाम से एक टेबलेट आती है 10 mg की, वो हफ्ते में एक बार दे दिया करें इनको।
0: तो ये right? क्योंकि ये स्ट्रे डॉग की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, तो इनको किस तरह से देंगे, इनको डर भी लगता है ना कि
1: वो खाना अगर आप देते हैं जो कोई एग बॉईल करके उसकी मैश करके अच्छा, उसमें डाल दें या किसी पनीर में डाल के दे सकते हैं, किसी बिस्किट में डाल के दे सकते हैं, 3 या 4 हफ्ते दें तो वो टिक्स नहीं आते।
2: कितने टाइम तक नहीं आएंगे अगर 3-4 बार देती है?
1: तो कम से कम एक सीजन नहीं आते सर, 5-6 महीने तक नहीं आते। विंटर में टिक्स नहीं होते, ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं, आपके एरिया में जहां भी ये रह रहे हैं वो दीवारों में पेड़ों में वो चले जाते हैं, वो हाइबरनेशन में रहते हैं। एक बार ब्लड सक करने के बाद दे कैन सर्वाइव फॉर 3-4 ईयर्स। तो दोबारा जब होस्ट उनको मिलता है, रेनी वेदर होता है, उनका ब्रीडिंग टाइम आता है, फिर वो हमारे पेट्स पे आ जाते हैं, ब्रीड करते हैं, तो ये ऐसे साइकिल चलता रहता है। तो इसलिए अगर आप जैसे जून में या जुलाई से शुरू कर दें, रेनी वेदर से पहले ही दे दें, तो वो मेडिसिन इनकी स्किन की ब्लड वेसल्स है उसमें रहती है, जैसे ही टिक उसको ब्लड सक करते हैं दे डाई, उनका नर्वस सिस्टम फेल हो जाता है, वो गिर जाते हैं मर जाते हैं। तो ये आप एक रेगुलर अगर आप करते रहें तो वो हम लोग रेडिकेट कर सकते हैं। सेकेंडली आपके पास एक हेयरी डॉग है, एक नॉन हेयरी है, जो लेस हेयरी है, तो हेयर के थ्रू उनको कोई ठंड या गर्मी नहीं लगती है कि ये कंसेप्ट है, बिकॉज दे डोंट हैव एनी स्वेट ग्लैंड्स, इनको पसीना नहीं आता, तो ये जो इंसुलेशन का काम करती हैं, गर्मी में उनको ठंडा रखती हैं, ठंडी में इनको गर्म रखती हैं, तो अगर डॉग खाना नहीं खा रहा दे मे बी सम अदर मेडिकल रीजन, तो आप डॉक्टर को दिखा लें, हो सकता है वो ब्लड टेस्ट करें, कुछ लिवर प्रॉब्लम हो सकती है, कोई किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज आजकल हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि हमारे डॉग्स को भी कार्डियक प्रॉब्लम होती है, किडनी प्रॉब्लम होती है, लिवर प्रॉब्लम होती है, तो एक ये चेक कर लें, और हेयर के कारण उनका लॉस ऑफ एपेटाइट नहीं होता। तीसरी आपकी बात, आपने बोला एक सॉन्ग, पर्टिकुलर सॉन्ग को डॉग उसके साथ गाना गाता है, तो दैट मीन योर डॉग इज वेरी हैप्पी। आपने कभी देखा होगा अगर रेलवे ट्रैक के पास आप रहते हैं जहाँ कोई डॉग है, कभी उनके इंजन की वो हॉर्न बजाता है तो साथ साथ वो खुद ऐसे हाउल करने लगते हैं, बिकॉज दे लाइक दैट साउंड। इसलिए

0: वो ऐसा करते हैं
1: इन्होंने
0: तो
1: तो बंद कर दिया उसको भी
0: हाँ,
1: गाना
0: बट
1: सुनाना।
0: लेकिन आप फॉर योर डॉग वॉज इंजॉइंग दैट डॉग, इसीलिए तो वो पास में आ रहा था, वो आके गाना गाना चाहता है उसके साथ। आप हस्की देखें वो तो गाना गाते हैं प्रॉपर, आपने यूट्यूब में बहुत से ऐसे देखे होंगे जो म्यूजिक बजाते हैं वो साथ में गाते हैं, तो दे ऑल्सो इंजॉय म्यूजिक, म्यूजिक म्यूजिक हैज नो लैंग्वेज, तो वो इसलिए उसको बंद नहीं करना था आपने, उसको और उसको इंजॉय करने
1: नहीं
0: देना
1: तो
0: था।
1: आप दोबारा शुरू कर दें वो गीत, क्योंकि आपको तो पता है कौन सा गीत वो एंजॉय करता है, तो प्लीज उसको, क्योंकि वो बोल नहीं पा रहा है पर वो कन्वे
0: दे
1: कर रहा
0: लाइक
1: है।
0: दैट पिच एक्चुअली, उनको वो
1: हाँ
0: फ्लो अच्छा लगता है, तो
1: जी
0: देन दे स्टार्ट
1: जी
0: डूइंग दैट।
1: जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हमें मैसेज के जरिए मनोहर लाल गांधी जी ने लिखा है चाणक्य चौक गाजियाबाद से, कि हम सुबह उठते ही कम एक काम जरूर करते हैं और वो है चिड़िया और पक्षियों को दाना डालना। चिड़िया खाती हैं वही हम खिलाते हैं, हमारे यहाँ तरह तरह की चिड़िया आती भी हैं। डॉक्टर साहब से हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या क्या खाने की चीज है जो चिड़िया को पसंद है, ताकि हम उसको एक वैरायटी दे सके। नमस्कार भी कह रहे हैं डॉक्टर साहब आपको और
0: नमस्कार
1: हमें
0: सर,
1: भी, तो बहुत बहुत
0: आप बहुत
1: धन्यवाद।
0: अच्छा कर रहे हैं, और हम लोग तो बोलते हैं कि एक पानी का बर्तन आप छत पे रखिए, एक पानी का बर्तन आप अपने दरवाजे के बाहर रखिए ग्राउंड फ्लोर पे, एंड डॉग्स के लिए और बर्ड्स के लिए, बिकॉज यही कमी होती जा रही है। जितने मेट्रोज हैं वहाँ नाली से पानी पीते हैं, गंदा पानी पीते हैं, वाटर बॉर्न इन्फेक्शन हो रही हैं, तो अगर हर फैमिली एक पानी का बर्तन घर के ऊपर छत पे रखे तो बहुत से बर्ड्स दे कैन सर्वाइव, क्योंकि उनको पानी नहीं, स्पेशली इन द समर, उसमें आप थोड़ा सा इलेक्ट्रोल डाल सकते हैं, ए पिंच ऑफ इलेक्ट्रोल इन द वाटर, और आप सीड रख सकते हैं, कंगनी है, बाजरा है, चपाती रख सकते हैं, मीठा ज़्यादा नहीं रखें, और ये बर्ड्स बहुत अच्छी दे इंजॉय ऑल दिस थिंग, और पानी में इलेक्ट्रोल डाल देने से जो पीक समर होता है उसमें उनको लाइक हाइड्रेशन रहती है, क्योंकि बहुत बार आपने देखा होगा कोई वायर पे एनिमल बैठा है या पेड़ पे बैठा है, वो सडनली दे शॉक से नीचे गिर जाते हैं, बहुत से ऐसे हमारे पास लोग लेके आते हैं, कोई पिजन है, कोई पैरट है, तो उनको डिहाइड्रेशन हो रहा है और शॉक हो रहा है बिकॉज द हीट, तो अगर हम लोग ये सारा करें, इतना अर्बनाइजेशन हो गया है कि बर्ड हमारे कहाँ जाएंगे, एलिमिनेशन भी होता जा रहा है। आप वो ब्राउन कलर की स्पैरो होती हैं वो देखिए हमारे अभी सिटी में मिलती ही नहीं है,
1: दिखती
0: जो
1: नहीं है
0: गांव
1: बिल्कुल।
0: में जाते हैं तो उनकी नेस्ट होता है, वो कितना चिरपी होती हैं, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, तो वो भी इकोलॉजिकली बैलेंस करती हैं, तो इसलिए मुझे लगता है अगर आप ये कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को भी थोड़ा इनकरेज करिए, और आपकी कॉलोनी ऐसा करने लग गई तो मुझे लगता है सारा सिटी भी ऐसा करने लगेगा, तो बहुत से बर्ड्स जो खत्म होते जा रहे हैं जिनकी स्पीसीज, वो भी दोबारा रिवाइव होती जाएंगी।
1: जी, एक श्रोता अपने समस्या के साथ हैं, कुछ कहना चाहते हैं। हेलो
2: जी नमस्कार,
1: जी नमस्कार, जी
2: मैं जयकिशन अग्रवाल साइकिल मार्केट चांदनी चौक से बात कर रहा हूँ।
1: जी जी
0: यस सर,
2: आपको नमस्कार करता हूँ।
1: जी
2: मेरा प्रश्न ये है कि जो कुत्ता है, डॉग है, उसे बहुत अच्छी तरीके से जो बचपन से उसको ले आते हैं, खरीद के ले आते हैं, इंग्लिश ले आते हैं, और अपने जो बच्चे गली में देती हैं उसको भी उठा उसको भी ले आते हैं, अच्छे सुंदर बच्चे होते हैं जो, तो डॉगी जो है वो नॉन वेज 90% होता है, नॉन वेज होता है। अब बच्चा क्या है, उसको खिलाएगा, अपनी गोदी में रखेगा, उसमें उंगली डालेगा उसके मुंह में, उसको अपने हाथ से खिलाएगा, छोटा बच्चा 3-4 साल का, और खुद वो उंगली अपने मुंह में भी डाल लेता है, तो क्या उससे उस बच्चे को नुकसान हो सकता, नहीं हो सकता, नंबर एक। नंबर दूसरा, जो बच्चा है कुत्ता जो डॉगी है उसको नहलाने के लिए कितने दिन में नहलाना चाहिए, और किस चीज से नहलाना चाहिए जिससे उसके अंदर जर्म ना हो।
0: देखिए सर, मुझे लगता है आपने अभी नया नया, जो आपके बच्चों ने नया पप अडॉप्ट किया है, और आपको ये बता दूं कि डॉग ऐसा नहीं है कि नॉन वेजिटेरियन ही होते हैं, आप जैसा उसको खिलाएंगे दे आर हैप्पी विद दैट, आप वेजिटेरियन खाना दे सकते हैं, नॉन वेज में सिर्फ मीट या चिकन या फिश मिलता है, लेकिन वेजिटेरियन डॉग के पास बहुत सी चॉइस है, वो पनीर भी खाता है, वेजिटेबल भी खाता है, राइस, चपाती, और बहुत सी चीजें उसके लिए हैं, तो वो आप उसको वेजिटेरियन भी बना सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। उसके मुंह में हाथ डाल देने से, अगर अपने मुंह में डाल लेंगे तो ऐसा, वो डिफरेंट स्पीसीज है, अगर आपका डॉग वैक्सीनेटेड है और कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है तो कुछ नहीं होता, ये आप मिथ है, और ऐसे डॉग से इंसान को कम्युनिकेबल डिजीजेज जो लिमिटेड हैं, अगर उसको प्रिवेंट करेंगे तो आपके घर में जो पेट रह रहा है, जो आपके बच्चे उसके साथ ग्रो करेंगे, उनका जो बिहेवियर है आने वाले टाइम में 15 साल बाद, यू विल फाइंड दे विल बी मोर कंपैशनेट, जो आजकल की सोसाइटी बड़ी आइसोलेटेड और सेल्फिश होती जा रही है, उनके लिए तो पप रखना, डॉग रखना बच्चों के साथ बहुत ही जरूरी है। जो आप अगर सोशली आप एक्सेप्टेबल हैं तो मुझे लगता है आपके फ्रेंड्स भी बहुत

0: ज्यादा होंगे, आप खुश भी ज्यादा रहेंगे। आइसोलेटेड रहेंगे तो आप स्ट्रेस में रहेंगे, ज्यादा दवाइयां खाएंगे, लाइफ टाइम भी बहुत शॉर्ट रहेगा। तो इसलिए जो पप रख रहे हैं, जब बच्चे लेके आ रहे हैं, उनको आप एनकरेज करिए, उनके फ्रेंड्स को भी बोलिए आप डॉग जरूर लेके आए। बाकी अग्रेशन डॉग का है, वो इंसान से ज्यादा तो अग्रेशन नहीं है उनका। कुछ डॉग जो मीडिया में बहुत ज्यादा हाइप बना दिया कि उनको काटा, बच्चों को लेके आया, पर डॉग बिना मतलब कभी नहीं काटता। आप स्ट्रे डॉग देख लीजिए, कुछ कुछ डॉग्स ऐसे हैं जो अल्फा डॉग्स हैं, जिनको हालांकि गवर्नमेंट ने स्टरलाइज किया है, बट वो हमारी वो इलिटरेसी है जो पढ़े लिखे लोग भी नहीं समझ पा रहे। जो डॉग है वो टेरिटोरियल होते हैं, तो उसको अगर हम लोग अग्रेसिव डॉग है उसको उस टेरिटरी से नहीं हटा सकते, लेकिन उसका फीडिंग जो एरिया है वो थोड़ा दूर कर दीजिए, अपने घर के पास नहीं करें, अपनी स्टेप्स पे आसपास नहीं करें। बिकॉज आप ही एनिमल लवर हैं, ऐसा है जरूर, लेकिन बहुत से लोग एनिमल लवर नहीं है जब, बट दे डोंट लाइक एनिमल्स, तो वो स्टेप्स से सीढ़ियों से चढ़ने में भी डरते हैं। अगर डॉग आपका बाहर बैठा, आप खाना देते जाए,
1: यहाँ पे भी बोलना चाहूंगी डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि उनकी एक डेजिग्नेटेड प्लेस होनी चाहिए।
0: एनिमल वेलफेयर बोर्ड का एक एरिया है कि वो आप एनिमल जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, उनको उन्होंने नोटिस दिया है कि एक एरिया पर्टिकुलर एरिया होना चाहिए, और बहुत सी आरडब्ल्यूए ने किया भी है एंड पीपल आर वेरी हैप्पी। वो सैनिटाइज होता है वहां पे, बहुत सी मेडिकल कंपनीज आती हैं जो उनको सैंपल्स भी देती हैं, वो बहुत ही ऑर्गेनाइज वो सेक्टर हो जाता है, और फिर वो डॉग अपनी जहां फीडिंग होती वहां पे वो उतनी वो लाइक उसको गाइड नहीं, उसका गार्ड नहीं करता। अगर आप स्टेप्स में अपने घर के दरवाजे के बाहर ही दे देंगे तो वो डॉग वहीं बैठा रहेगा, ही विल वेट फॉर द फूड एंड दूसरों को आना नहीं देगा।
1: तो और एक बात और, जैसे आपने बोला कि उसको अननेसेसरी अगर आप परेशान करते हो डॉग को, या प्रोवोक करते हो, तब वो काटता है।
0: बच्चे बहुत से उसको स्टिक मारते हैं, पत्थर मारते हैं, तो वो बच्चों को भी थोड़ा हमें समझाना पड़ेगा कि दे आर दिस अर्थ बिलोंग्स टू देम आल्सो, तो इनको भी रहने दे। उनको रादर पत्थर मारने से अच्छा उनको एक बिस्किट का पैकेट दे दीजिए, बोला हर डॉग को खिलाएं, तो देखिए आपके बच्चे के पीछे 10 डॉग चलेंगे और उसका भी गार्ड करेंगे। तो वो सिर्फ हमें इंसान को समझना पड़ेगा एनिमल को, पर एनिमल बहुत समझता है इंसान को।
1: बिल्कुल सही बात डॉक्टर साहब। एक नहाने वाली बात भी थी जो मुझे लगता है बहुत सारे और श्रोता भी जानना चाहते होंगे कि इनको कैसे नहलाया जाए पेट्स।
0: इनको एक स्पेसिफिक पीएच बैलेंस शैम्पूज आते हैं जो आपके एक वेटनेरियन से मिल सकते हैं, इधर उधर से मत लें बिकॉज इतना क्वालिटी कंट्रोल नहीं है। तो इसलिए पेट शॉप से इधर से लेके आप करेंगे तो बहुत से शैम्पू एलर्जीज भी करते हैं, जो स्किन डिजीजेस भी हो सकती, तो इसलिए अपने डॉक्टर से लें और पीएच बैलेंस शैम्पू लें। अगर उसको ड्राइनेस है तो वो डिफरेंट शैम्पू देंगे, टिक्स हैं तो डिफरेंट शैम्पू देंगे। ऐसे उसको 15-20 दिन में एक बार नहलाएं, और जितना कम पॉसिबल हो उतना नहलाएं। बहुत से लोग बार बार नहलाते हैं, हर हफ्ते नहलाते हैं, वंस ए मंथ आई थिंक इट्स सफिशिएंट। अगर ग्रूमिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, उसको ब्रश करें, लाइक जस्ट स्पेंड 5 मिनट इन द मॉर्निंग, ब्रश करेंगे तो आपका डॉग का रेपुटेशन भी आपके साथ ज्यादा अच्छा होगा, वो डोसाइल भी होगा। आपको ब्रश करते अगर टिक जा कोई डिजीज, स्किन डिजीज पता लगती है तो बहुत अर्ली स्टेज में आपको पता लग जाएगा। वो ब्रश करने से उनके स्किन का जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें सर्कुलेशन बढ़ती है, स्किन ऑयल बढ़ता है, तो हेयर फॉलिकल रिवाइव हो जाते हैं, तो और ज्यादा उसका शाइन आने लगता है।
1: तो दिस इज लाइक फॉर ऑल पेट्स या पर्टिकुलरली डॉग्स के लिए आप बात कर रहे हैं?
0: जनरली पेट डॉग्स एंड कैट्स और इवन एंड रैबिट्स आल्सो आई हैव सीन, या मोल्टिंग तो होता है, सब डॉग के बाल गिरते हैं, इट्स नॉट जैसे इंसान में गिरते हैं वैसा नहीं होता। ये शेड करते हैं जब वेदर चेंज होता है, उस टाइम पे दे नीड एक्स्ट्रा स्किन ऑयल्स और रेगुलर ब्रशिंग, लेस बेदिंग, तो उससे और
1: जैसे
0: बेटर।
1: कैट्स में डॉक्टर साहब वो सेल्फ ग्रूमिंग करती रहती है अपनी, तो इसी तरह से क्या फिर हमें लगता है कि नहलाने की जरूरत ही नहीं है, तो ये कहां तक सही?
0: जनरली कैट्स को ज्यादा बात देने की जरूरत नहीं होती, अनलेस वो ऐसी जगह पे रह रही हैं जहां ओपन गार्डन में है, जहां एक्सपोजर होता है टू डर्ट एंड अदर इंसेक्ट्स एंड ऑल। अदरवाइज कैट्स दे आर वेरी क्लीन, वंस इन 3-4 मंथ्स इज ओके, वो ग्रूमिंग अपने आप करती रहती है। बस एक ही ध्यान रखें कैट ओनर्स कि जो वो अपने आप को क्लीन करती हैं तो वो बाल बहुत से वो स्वॉलो भी कर लेती हैं, तो स्वॉलो करने के बाद कुछ 3-4 महीने के बाद उनके स्टोमक में एक हेयर बॉल जैसा हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए मेडिसन्स आती हैं जो लुब्रिकेट करती हैं इंटेस्टाइन को, तो वो हफ्ते में एक बार उनको खिलाते रहा करें, जो कि गट में उसके इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो। और नहीं तो बाहर जो वाइल्ड हैं वो घास वास खाती हैं तो वॉमिट कर देती हैं, तो अपने आप रीगजिटेट करके अपना हेयर बॉल निकाल देती हैं। पर हमारी डोमेस्टिकेटेड कैट्स वो बाहर नहीं जाती, घास का एक्सेस नहीं होता, तो इसलिए ये मेडिसिन देते रहें, लग्जेटिव देते रहें, तो ऑयल बेस्ड होते हैं ये, वंस ए वीक एवरी संडे जस्ट गिव इट, तो देन दे लिव वेरी हेल्दी।
1: ओके ओके, तो बहुत सारे हमारे पास मैसेज आ गए हैं डॉक्टर साहब इस बीच में, और फोन कॉल्स भी हैं, पर जैसा हमने श्रोताओं को बताया, आज बहुत सारे श्रोता जानना चाह रहे हैं बहुत कुछ, हमें ब्रेक लेने का भी टाइम नहीं मिला, हमें सॉन्ग सुनाने का टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन एक सॉन्ग यहाँ ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि आपको भी थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। तो आप लोग और सोच लीजिए आप लोगों को क्या हमें बताना है, क्या हमसे पूछना है। डॉक्टर साहब हमारे साथ रहेंगे 4 बजे तक, डॉक्टर आरटी शर्मा वेटनरी डॉक्टर, और बात कर रहे हैं एनिमल केयर के बारे में। तो बस जुड़े रहिए, सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर। ये प्यारा सा गीत सुनते हैं, फिर लौट कर आते हैं।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
1: जी हाँ, आप हैं रेडियो डॉक्टर में अपनी दोस्त शालिनी मित्तल के साथ, और बहुत सारे हमारे श्रोता डॉक्टर साहब जानना चाहते हैं आपसे, बहुत सारी उनकी समस्याएं भी हैं, कुछ अपनी एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे हैं। और बता दें कि हमारे साथ डॉक्टर आरटी शर्मा हैं रेडियो डॉक्टर के रूप में, और आप एक जाने माने वेटनरी डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब, ये मैसेज आया है, हाई आई एम परिधि फ्रॉम दिल्ली, आई हैव अ कैट नेम्ड किट्टू हु केम टू अस ड्यूरिंग कोविड एंड हैव चेंज्ड आवर लाइव्स एवर सिंस। इनका क्वेश्चन ये है कि आपने कहा था कि पेट्स हमें डिस्ट्रेस करते हैं, आर पेट्स डिस्ट्रेसेस, बट हाउ कैन वी डिस्ट्रेस आर पेट्स, स्पेशली कैट्स? लेटली आई हैव नोटिस माई कैट इज बिकमिंग वेरी डल, हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ देयर मेंटल वेलबींग? बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिकल के साथ मेंटल भी।
2: वेरी गुड क्वेश्चन, बट थिंग इज जब वो हमें डिस्ट्रेस करते हैं तो वी कैन फाइंड आउट इफ आर कैट इज परिंग एंड वो आपके पास आ रही है, रब करके निकल रही है, शी इज हैप्पी, आप बहुत देर बाद ऑफिस से आए हो, आपके पास आई है, दैट मीन शी इज ऑलरेडी हैप्पी। और वो डिस्ट्रेस इज लाइक गिव एंड टेक काइंड ऑफ थिंग। और सेकेंडली अगर डल है, शी इज नॉट कमिंग व्हेन यू केम टू योर फ्रॉम योर ऑफिस, दैट मीन्स

0: समथिंग इज रॉन्ग विद हर, बहुत से और इश्यूज हो सकते हैं जैसे इंसान में होते हैं. उसके साथ टाइम स्पेंड करें, जस्ट पैट हर, गिव हर हर फेवरेट थिंग्स, और उसको एक बार उसका बॉडी टेम्परेचर चेक कर लें. जब वो फील करने से आपको पता लग जाएगा, आप खाना रखते थे तो भाग के आती थी, अभी नहीं आ रही, दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग विद द डाइजेस्टिव सिस्टम. सो लाइक आपके बेड पे वो खुद चढ़ जाती थी, आप नहीं चढ़ पा रही, दैट मीन्स शी माइट बी हैविंग सम मस्कुलर प्रॉब्लम. तो ये एंगल अगर आप सम, बिकॉज यू आर द बेस्ट पर्सन हु कैन जज योर एनिमल्स बिहेवियर, आप डेली देखते हो, थोड़ा सा भी नॉर्मल लगता है तो एक अपने डॉक्टर से जरूर बात कर लें. जो अंडरलाइंग कोई ऐसा रीजन हो सकता है कि आपको, जैसे हमें भी बहुत सी ऐसे इश्यूज होते हैं जो इवन साइकोलॉजिस्ट कैन अंडरस्टैंड, तो ऐसे आपका डॉक्टर कैन मेक आउट व्हाट इज प्रॉब्लम विद योर कैट. बट अदरवाइज इफ यू आर गेटिंग डिस्ट्रेस्ड, दे आर आल्सो गेटिंग डिस्ट्रेस्ड.
1: ओके, दैट्स गुड टू नो. डॉक्टर साहब, ये मैसेज हमें भेजा है लिखने वाले हैं राकेश कुमार खरखौदा सोनीपत हरियाणा से, और लिख रहे हैं कि नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरे पास एक फीमेल गोल्डन रिट्रीवर डॉग है, वो अभी 3 महीने का है, लेकिन उसकी डैंड्रफ की समस्या बहुत है, तो क्या किया जाए?
0: देखिए, सबसे पहले तो उसको एक डॉक्टर को जरूर दिखाएं. डैंड्रफ हो सकता है, जब स्केबीज हो सकती है, जब और कोई स्किन डिजीज भी हो सकती है, पर जनरली ग्रोइंग पपीज में 4 मंथ्स के बाद दे गेट देयर परमानेंट कोट, तो 3 महीने के से शुरू हो जाता है, उनका बाल गिरने शुरू होते हैं, फिर नए बाल आने शुरू होते हैं. तो ऐसे में आप कोई भी अपने डॉक्टर से बात करके, ओमेगा ऑयल्स आते हैं उसके, आप खाने में थोड़ा कुछ ऑयल मिक्स कोई चीज़ें दे सकते हैं. अगर आपके पास कोई कमर्शियल फूड अवेलेबल है तो वो दे सकते हैं जिसमें थोड़ा फैट ज़्यादा होता है, तो फैट डेफिशिएंसी होने से इनकी स्किन ऑयल कम हो जाते हैं, तो डैंड्रफ हो जाती है, ड्राइनेस हो जाती है. आप इसको रेगुलर ब्रश करते रहें, एक बार डॉक्टर को जरूर दिखा दीजिए, जस्ट टू रूल आउट इसे सिंपल डेंड्रफ और एनी स्केबीज और एनी अंडरलाइंग सम अदर स्किन डिजीजेस. तो वो करने के बाद आप सप्लीमेंट्स आपके डॉक्टर देंगे, 3-4 महीने देना, बिल्कुल ठीक हो जाएगा. उसका एक डीवर्मिंग चेक कर लीजिए, स्टेटस वैक्सीनेशन अप टू डेट होना चाहिए, और रेगुलर ब्रशिंग करेंगे तो ये 100% ठीक हो जाता है.
1: जी जी. तो नमस्कार, मेरा नाम गोविंद बंसोड़े है, महाराष्ट्र लातूर से हम ये संदेश भेज रहे हैं. रेडियो डॉक्टर की प्रस्तुति को हम 100 में से 100 अंक देते हैं. ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए क्या सुविधा है कृपया बताइए, हम दृष्टि बाधित हैं. तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद जी कि आप हमारा कार्यक्रम सुनते हैं, और अगर इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो हम इसका प्रॉमिस तो नहीं करते हैं, पर बहुत सारे हमारे कार्यक्रम जो है आपको आकाशवाणी के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका कि एड्रेस है आकाशवाणी AIR. आप उस पर जाएं, और अगर रेडियो डॉक्टर क्लिप आप उसमें क्लिक करेंगे लिखकर, या डॉक्टर का नाम लिखेंगे या सब्जेक्ट लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा. इसके अलावा आप जानते ही हैं कि शनिवार और रविवार को हम कार्यक्रमों को पुनः प्रसारित करते हैं, तो आप जरूर ट्यून किया करें, हो सकता है आपका पसंदीदा कार्यक्रम उस दिन रिपीट हो रहा हो. तो इसी तरह से जुड़े रहिए आकाशवाणी के FM रेनबो के चैनल के साथ, और साथ ही साथ 3 से 4 सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर. डॉक्टर साहब, ये नेहा ने लिखा है जयपुर से कि मेरी सिस्टर के पास एक पर्शियन कैट है और 1 साल की, उसके लिए क्या आप केयर बताते हैं? कैट का भी थोड़ा सा तो आपने बताया था.
0: पर्शियन कैट मेन दे आर वेरी हेयरी, तो दे नीड रेगुलर ग्रूमिंग. बहुत सी कैट्स तो खुद करती रहती है, लेकिन जितनी डोमेस्टिकेटेड हो जाती है उनको खाना खाया सो गए और वो भूल जाती है ग्रूमिंग करना. तो बेस्ट यही है कि आप रेगुलर स्पेंड 5-10 मिनट्स उनके कानों के पीछे, उनकी आर्मपिट्स में, यहाँ पे टैंगल्ड हो जाते हैं, बाल चिपक जाते हैं, तो वो आप या तो क्लिप कर दें या किसी ग्रूमर की हेल्प लेके आप वो उसको क्लीन करवा दें. रेगुलर ब्रश करते रहें, और जब भी खाना दें तो उसका बर्तन बाद में अच्छी तरह क्लीन कर दें, बिकॉज कई बार बहुत से बर्तन में फंगल इन्फेक्शन हो जाती हैं जो कि लीड टू एनी डेंटल प्रॉब्लम और उनके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है. तो जस्ट मेक श्योर कि आप ये चीज़ें ध्यान रखें. पानी हमेशा फ्रेश रहना चाहिए, बिकॉज स्टेग्नेंट वाटर जो है दैट कैन लीड, देयर आर मेनी वाटर बॉर्न इन्फेक्शंस. GRDR तो बहुत ही कॉमन है हमारे कंट्री में, और ये पर्शियन कैट्स को बहुत जल्दी ये प्रॉब्लम हो जाती है. तो अगर आप उनका फ्रेश वाटर हर 5-6 घंटे में फ्रेश वाटर दें, और उसका खाने का बर्तन एकदम क्लीन रखें, खाना उसके बर्तन में पड़ा नहीं रहना चाहिए 1 घंटे से ज़्यादा, बिकॉज ये आजकल जो कमर्शियल फूड देते हैं वो हाइड्रेटेड नहीं होते, तो उनमें एकदम मॉइस्चरलेस होते हैं, तो जैसे ही वो रेनी वेदर में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो ये सोगी हो जाते हैं, उसमें बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर जाते हैं, फिर वो हमारी कैट खाती हैं तो वो बीमार हो जाती हैं। तो या तो उसको फ्रेश खाना दें, जब दें तो

0: नहीं है तो आपको वैसे लग रहा है तो आप गिव इट टू द होमलेस डॉग, डोंट थ्रो इट अदरवाइज, बट बेस्ट यही है कि कम वेस्ट करें, कम दें. अंडर फेड एनिमल्स दे आर बेटर देन ओवर फेड एनिमल्स. तो वो इंसान भी हमेशा ज्यादा खाने से बीमार होता है, कम खाने से कोई बीमार नहीं होता. तो ये एक कंसेप्ट लेके चलें. और एनिमल थोड़ा सा ग्रीडी होता है, दे डोंट नो व्हेन टू स्टॉप, वो जितना भी रख देंगे वो खा जाएगा. तो अगर आप खाना देने के बाद दे शुड आस्क फॉर मोर फूड, दैट इज अ टाइम व्हेन यू स्टॉप it. तो खाना नहीं दें उस टाइप पे, बस मेक श्योर कि आप न्यूट्रिएंट और पूरा उसका बैलेंस फूड दे रहे और कम खाना दें तो आपके एनिमल्स बहुत हेल्दी रहते हैं.
1: जी, एक श्रोता वेट कर रहे हैं फोन लाइन पर. हेलो.
2: हेलो
1: जी.
0: हेलो सर.
2: शालिनी मित्तल जी को नमस्कार.
1: जी जी नमस्कार जी, बताएं.
2: डॉक्टर साहब को सादर प्रणाम.
0: नमस्कार सर, प्रणाम.
2: डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि हमारी फैमिली जो है वो एनिमल लवर और बर्ड्स लवर है. तो हमारे पास एक डॉगी था, 14 इयर्स तक रहा हमारे पास.
0: वेरी गुड.
2: लेकिन उसके बाद वो डॉक्टर साहब ने बता दिया अब आप कोई डॉग मत रखेंगे क्योंकि इनको इन्फेक्शन हो जाएगा. तो क्या ये बात ठीक है? नंबर टू, अगर हम आज की डेट में किसी पड़ोसी या नॉन टू से कोई डॉग या कैट या एनिमल अडॉप्ट करते हैं तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमको लेने चाहिए ताकि फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो, कृपया बताने का कष्ट करें.
1: बहुत
0: सर, ऐसा है कि डॉग अगर 14 ईयर का रहा है, दैट ऑल क्रेडिट जो जाता है वो आप ही को जाता है. आपने इतनी अच्छी तरह रखा है कि ही लिव्ड हिज फुल लाइफ. जैसे इंसान 100 ईयर प्लस होके जाते हैं तो वो अपनी लाइफ पूरी जी के जाते हैं. जाना तो सबको है, लेकिन आपका डॉग बहुत अच्छी एज में गया तो आपको उसका लुक आफ्टर करने के लिए क्रेडिट जाता है. और कोई डॉग दोबारा नहीं रखें ऐसा मुझे नहीं लगता. कोई एनिमल लवर नहीं होगा जब उसको नॉलेज नहीं होगी कि एनिमल से कोई इन्फेक्शन होती है. कोई इन्फेक्शन नहीं होती अगर वो हेल्दी हैं, कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, आपने अच्छी तरह रखा है. तो बिकॉज बोथ आर द डिफरेंट स्पीसीज, इंसान अलग है कैटेगरी में आता है, एनिमल अलग में आता है. एनिमल से एनिमल को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ह्यूमन को ह्यूमन से डिजीजेज ज़्यादा होती हैं. लेकिन बहुत लिमिटेड सी डिजीज हैं जो कम्युनिकेबल हैं. अगर आप उसका ध्यान रखें तो डॉग दे आर इक्वली गुड एंड दे आर मोर हेल्दी देन द ह्यूमन बींग्स. बाकी आप बोल रहे हैं नया डॉग आप अडॉप्ट करना चाहते हैं तो जहाँ से भी आप ले रहे हैं उसे एक उसका ब्रीड का सर्टिफिकेट ले लीजिए. अगर आप ब्रीड के लिए इतना नहीं जा रहे तो हमारे इंडियन डॉग्स ही इतने हैं कि आप कोई भी आपके आसपास कोई एनजीओज हैं या कोई भी ऐसा घर के बाहर डॉग दिए, बच्चे दिए हैं किसी ने, तो उसमें से अगर आप अडॉप्ट कर लेंगे तो आई थिंक दे'ल ब्लेस यू लाइक एनीथिंग. उसको अच्छी तरह रखेंगे, स्टरलाइज करवा देंगे एक साल के बाद तो उसको वो भी 14-15 साल रहेगा. राधा, ये डॉग ज्यादा देर रहते हैं, 20-20 साल तक जिंदा रहते हैं. तो और इसका एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से आप लाइसेंस जरूर रजिस्टर करवा लीजिए. तो आई थिंक यही एक चीजें होती हैं. बाकी डॉग्स को कोई ज्यादा बहुत बड़ी स्क्वेयर फीट जगह नहीं चाहिए होती, उसको सिर्फ दिल में ही जगह चाहिए. अगर उतना ही जगह आपके पास है तो आप डॉग रख सकते हैं.
1: जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है कि जगह जो है दिल में होनी चाहिए. और डॉक्टर साहब देखिए मैसेज और भी आ रहे हैं हमारे पास. ऐशानी लिख रही है दिल्ली से कि क्या एडल्ट कैट को हम होम कुक्ड फूड दे सकते हैं? ये फूड उनकी डाइट में हम कैसे इंट्रोड्यूस करें? जैसे आपने फूड की बात की थी डॉक्टर साहब, और ये भी कहा था कि उन्हें टाइमली देना चाहिए और हटा देना चाहिए. कई बार ये होता है कि कुछ ही खाना वो खाती हैं, वो भी बाजार का. तो क्या हम एडल्ट में इसके हैबिट्स चेंज कर सकते हैं, होम कुक इंट्रोड्यूस कर सकते हैं?
0: फूड तो दे सकते हैं, बट जस्ट मेक श्योर कि जो उसकी न्यूट्रिशन लेवल है वो जो रिक्वायर्ड है उतना मिलना चाहिए उसको. लाइक दे आर नॉन वेजिटेरियन, दे नीड मसल प्रोटीन, फैट होना चाहिए उसमें, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए. ये सब बैलेंस अगर आप करते हो तो आई थिंक दे सकते हैं. बट अदरवाइज कैट्स नो, दे डोंट नीड एनी होम कुक्ड फूड. वो जो कमर्शियल फूड आते हैं वो ज़्यादा बैलेंस होते हैं एंड दे कैन ईट द सेम थिंग थ्रू आउट द लाइफ. तो मुझे लगता है आप घर पे अगर वो कमर्शियल फूड पे हेल्दी है और कोई उसको प्रॉब्लम नहीं है तो डोंट स्विच टू द होम कुक्ड फूड. बिकॉज होम कुक्ड फूड में बहुत से लोग मिल्क देते हैं, पनीर देते हैं, चपाती देते हैं. कैट्स आर नॉट दे आर हंटर. तो वो बाहर जाते हैं तो कहीं चूहा मार लिया, कोई बर्ड मार लिया, तो दे लिव ऑन दैट. सो दे नीड वेरी हाई प्रोटीन डाइट. वो जनरली नॉनवेज से मिलता है. अदरवाइज जैसे उसको कंपनसेट करें, कोई सोयाबीन देना चाहता है या चना देना चाहता है तो वो कैट्स उतना डाइजेस्ट नहीं कर पाते. तो बेस्ट है वो कमर्शियल फूड प्लस इनका इंटेक तो कम ही होता है, तो मुझे लगता है अदरवाइज

0: आप यू कैन गिव बट कंसल्ट योर डॉक्टर्स, जो आपके कैट का बॉडी वेट कितना है, कितनी एक्सरसाइज है, अकॉर्डिंगली दे विल फॉर्मुलेट द होम कुक्ड फूड.
1: ओके, हम एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं और वापस आते हैं, और जो भी मैसेजेस हमारे पास हैं उनको हम फिर पढ़ लेंगे. तो लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक.

0: आप हैं रेडियो डॉक्टर में और बिल्कुल खुशियां बटोरने के लिए ही होती हैं, और खुशियां बटोरिए और अपने साथियों के साथ, और वो साथी जरूरी नहीं है कि पुरुष महिला ही हों, वो साथी हमारे प्यारे प्यारे पेट्स, हमारे जानवर भी हो सकते हैं, वो चाहे स्ट्रे भी हों, वो भी हमारे दोस्त हो सकते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने बीच में कहा, कुछ आप उनको प्यार से दुलार देंगे तो वो भी आपके पीछे पीछे हो लेंगे, है ना डॉक्टर साहब? तो देखिए, ये मैसेज हमारे पास आया है, हमारे एक श्रोता है राजकुमार गुप्ता जी, नोएडा में रहते हैं, और लिख रहे हैं कि मैं कभी बाहर जाता हूं तो मैं अपने जो पेट्स हैं उनको छोड़ के ही नहीं जाना चाहता हूँ, उनके बिना मैं रह नहीं पाता हूँ। तो ये बताइए कि मैं उनको ट्रैवलिंग के लिए क्या करूं कि मैं साथ में ले जाऊं, और क्या मैं प्रिकॉशंस उस समय रखूं?
1: बिल्कुल लेके जा सकते हैं सर, बिकॉज दे आर इक्वली हैप्पी विद यू, दे ऑल्सो लव ट्रैवलिंग एंड ऑल। तो अपने डॉक्टर से बात कर लें, वो उसके हिसाब से एक मेडिसिन आती हैं जो ट्रैवलिंग के लिए, थोड़ा सा सेडेशन होती है, एंटी वॉमिटिंग होती है, क्योंकि किसी किसी एनिमल्स में मोशन सिकनेस होती है, तो स्लाइवेशन होती है, वॉमिट करते हैं, जैसे इंसान भी कई बार बस में या गाड़ी में करते हैं, तो उसके लिए पहले से मेडिसिन दे देंगे तो दे विल बी मोर कंफर्टेबल। आप बिल्कुल साथ में लेके जा सकते हैं, आपका भी सफर बहुत अच्छा रहेगा, दे विल इंजॉय योर कंपनी। आजकल बहुत से होटल्स हैं जो पेट फ्रेंडली हैं, रिजॉर्ट्स हैं जहाँ लेके जा सकते हो, बहुत होटल्स हैं, दे डू पेट एक्सरसाइज एंड ऑल, वो गेम्स भी रखते हैं, तो जस्ट टू मेक इट मोर इंटरेक्टिव। तो मैनी एनिमल लवर्स दे आर टेकिंग देयर पेट्स विद देम एंड दे आर वेरी हैप्पी। और बाकी आई थिंक
0: थोड़ा एक बार जाने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से
1: जरूर बात कर लें।
0: तो बस अब कार्यक्रम समेट रहे हैं, हमारे कुछ श्रोताओं ने हमारे साथ बहुत सारी अच्छी अच्छी अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। सलमा बेगम, मोहम्मद इम्तियाज जवाहर, कैम कीर्ति नगर न्यू दिल्ली से इन्होंने अपनी बात लिखी है कि किस तरह से हमें ध्यान देना चाहिए काउस का, कि वो जो है हम जो प्लास्टिक्स फेंकते हैं वो ना खाएं, यही बात लिखी है अनमोल।

0: जी ने महाराष्ट्र से कि वी शुड इनकलकेट हैबिट ऑफ मिनिमम यूज ऑफ प्लास्टिक एंड डू नॉट थ्रो फूड इन गार्बेज इंस्टेड गिव इट वी शुड गिव इट जस्ट लाइक दैट हमें उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। तो बहुत समय कम है डॉक्टर साहब, आप बस एक लाइन में मुझे बता दें कि आज जो एनिमल डे है उस पर क्या कहेंगे हमारे सभी श्रोताओं को।
1: आई थिंक दिस इज अदर पार्ट ऑफ द क्वाइन इंसान और एनिमल्स, तो इसलिए लिव एंड लेट लिव। और मैं तो ये बोलता हूँ ईच वन कीप वन, लाइक अगर आप घर के अंदर नहीं रख सकते तो एक घर के बाहर जरूर एक एनिमल रख लीजिए जिसको आप खाना खिलाते हैं, उसका हेल्थ का लुक आफ्टर करते रहें। तो एक बर्तन पानी का छत के ऊपर जरूर रखें, एक घर के बाहर जरूर रखें।
0: बहुत अच्छी बात, और इसी बात के साथ हम इस कार्यक्रम को अब समाप्त करते हैं। और हमें ध्यान रखना है द वर्ल्ड इज देयर होम टू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आरटी शर्मा, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आप वेटरनरी डॉक्टर हैं और आज समय निकालकर यहाँ आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद स्वीकार करें। शालिनी मित्तल का भी नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।
3: हिमालय की गोद से लेकर
4: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
3: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
4: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
3: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
4: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
3: तो सुनना ना भूलें
4: रेनबो डेस्टिनेशंस
3: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
5: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। FM रेनबो पर रात 9 बजे।
6: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
7: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: ही बदली स्टाइल गया है बबल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
3: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
2: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
4: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
5: ठीक है,
4: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा है इनके नाम है, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
3: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
2: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
6: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
2: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
3: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
2: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
3: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
2: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
3: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
2: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
3: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

एफएम रेनबो पर अब वक्त है मुख्य समाचारों का। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि विकसित भारत की यात्रा भारत के संस्थानों, लघु और मध्यम उद्यमों तथा नवाचार की ताकत पर आधारित होगी। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजी नगर विधानसभा उपचुनावों के लिए प्रचार आज समाप्त हो रहा है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को रूपांतरित करने के उद्देश्य से शुरू की गई पीएम सेतु योजना ने एक वर्ष पूरा कर लिया है। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। इस मामले में पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी को भी तलब किया गया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने अमेरिका के हिंद प्रशांत कमान के प्रमुख एडमिरल सैमुअल जे पापारोके से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच सुरक्षा साझेदारी और समुद्री सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज राजस्थान की जैसलमेर में डेजर्ट नेशनल पार्क के सैम क्षेत्र में दो नर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स पक्षियों को छोड़ा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी श्यामाजी कृष्ण वर्मा और सुब्रमण्यम शिवा को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। भारतीय वायुसेना ने आज फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह शेखों की स्मृति में देशभर के विभिन्न शहरों में शेखों भारतीय वायुसेना मैराथन का दूसरा संस्करण आयोजित किया। जापान में एशियाई खेलों का समापन हो गया है। पदक तालिका में भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदों के साथ चौथे स्थान पर रहा। और अंत में मौसम विभाग ने केरलम, माही, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के कुछ स्थानों में कल तक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। तो ये थे एफएम रेनबो पर अभी तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
2: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
1: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
3: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ FIR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
4: ठीक है,
3: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो FIR कटा ना इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
2: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि

0: करना क्या है?
1: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
2: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा, कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
0: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
0: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
0: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
0: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम विथ मी योर आरजे चेतन। माता पिता और बच्चों का रिश्ता जब पारिवारिक जीवन की बात आती है तो हर कोई ये जानने का प्रयास करता है कि माता पिता और बच्चों के बीच का संबंध कैसे आदर्श बन सकता है। पॉजिटिव सकारात्मक पेरेंटिंग तकनीक बच्चों को अच्छे नैतिक मूल्य और नीति नियम के साथ उनका विकास हो सकता है, इस तरह से काम करती है और हर माता पिता का भी यही सपना रहता है। हालांकि ये उपलब्धि इतनी आसान नहीं है और यह जानना महत्वपूर्ण है कि माता पिता के उनके बच्चों के बीच का संबंध दो तरफा सड़क की तरह है। दूसरे शब्दों में यह वास्तव में एक माता पिता और उनके बच्चों के बीच एक साझेदारी है। जैसे विविध रंगों वाले फूलों से एक बगीचा सुंदर दिखाई देता है, इसी तरह अगर माता पिता सिखाते हैं कि कैसे एक मालिक की तरह अपने बच्चे के व्यक्तित्व को पहचाने और उसे पोषण देने में सक्षम बने तो उनका गार्डन सुगंधित हो जाएगा। ये सभी पॉजिटिव पेरेंटिंग की ओर निर्देश करते हैं। जब माता पिता प्रभावी पेरेंटिंग का कौशल विकसित करते हैं तो वे पीढ़ी अंतराल यानी जेनरेशन गैप को मिटाने के सक्षम होते हैं। जब पेरेंट्स इस बात को समझने लगते हैं किन चीजों में मर्यादा रखी जाए, कहां प्रोत्साहित किया जाए और कहां अंकुश रखा जाए, तो उनके बच्चे बिगड़ेंगे नहीं। इस तरह वे अच्छे माता पिता बन सकते हैं। जब लोग ये नहीं जानते कि एक अच्छे पेरेंट्स कैसे बने तो दोनों के बीच दूरियां विकसित होती है। सच्ची समझ के साथ युवा वर्ग भी अपने माता पिता के साथ अपने रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं। आज के युवाओं को संपूर्ण समझ प्रदान करने के उद्देश्य के साथ बाल्य और किशोर अवस्था के दोनों वर्गों अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रगति कर सकते हैं। इस हेतु से शुद्ध प्रेम और समता के साथ उनका कैसे विकास किया जाए, ये मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। नैतिक मूल्यों, अच्छे शिष्टाचार और पॉजिटिव पेरेंटिंग संबंधित उन्होंने उत्कृष्ट समाधान दिए हैं जो युवावस्था के दौरान भी काम आते हैं। सभी पेरेंट्स के लिए आज के समय अनुसार गाइडेंस, अपने बच्चों की संभाल कैसे करें, माता पिता और बच्चों का संबंध कैसा होना चाहिए, आज इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि बच्चे और माता पिता के बीच रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं तो सुनते रहिए लम्हे प्रोग्राम आरजे चेतन के साथ। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। हेल्थी रिलेशनशिप से बनेंगे बच्चों का हेल्थ। आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि हर पेरेंट्स अपने बच्चों को बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। बच्चा अच्छे से पढ़ लिख जाए इसीलिए सबसे अच्छा स्कूल में भेजने की कोशिश करते हैं। वह ये उम्मीद करते हैं कि बच्चा स्कूल से ज्ञान के साथ साथ अच्छा व्यवहार

सीखेंगे। तो हाल ही में हुई एक रिसर्च की मानो तो बच्चों का अच्छे तरह से पालन पोषण उसे अच्छे स्कूल में भेजने से ज्यादा जरूरी है। आमतौर पर सभी स्कूल एक जैसे होते हैं और अपने हर छात्र पर बराबर ध्यान देते हैं, लेकिन जिन बच्चों के माता पिता उनका होमवर्क करने में मदद करते हैं, पढ़ाई की अहमियत समझते हैं और बच्चों के सभी स्कूल इवेंट्स अटेंड करते हैं, उनके बच्चे दूसरों बच्चों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। बच्चे और उनके पेरेंट्स के बीच का रिश्ता सबसे अच्छा और जरूरी बंधन है। यह रिश्ता बच्चों की पर्सनैलिटी, उसका व्यवहार और पसंद की नींव डालती है। यही से उसका शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का विकास होता है। जीवन में दूसरे लोगों से भी अपना रिश्ता अच्छा बनता है। मुश्किल परिस्थितियों में अपनी भावनाओं पर काबू रखना, बच्चे के मानसिक, भावनात्मक और भाषा का विकास होना, बच्चे का आशावादी और आत्मविश्वास से पूर्ण होना, बेहतर सोशल और एकेडमिक परफॉर्मेंस रहना। आप चाहे कितना भी बिजी हो, लेकिन अपने बच्चे के लिए समय जरूर निकालें। जैसे जैसे आपके बच्चे की उम्र बढ़े तो आप अपने पेरेंटिंग स्टाइल को भी बदल दें। बच्चे की उम्र कुछ भी हो, उससे हमेशा प्यार से बात करें और गर्मजोशी दिखाए। उनको बातों बातों में प्यार से ये समझाए कि आप उनसे क्या उम्मीद रखते हैं और उन्हें आगे का रास्ता दिखाए। बच्चा जो कुछ भी कहे उसे ध्यान से सुने और उसके प्रति हर परिस्थिति में हमदर्दी दिखाए। कोई भी समस्या हो उसे हल करने में उसकी मदद करें। जब आप अपने बच्चों के साथ कोई भी समस्या को हल करेंगे तो वह आपको देखकर सीखेंगे कि किसी भी मुश्किल हालात में कैसे व्यवहार करना चाहिए। अपने बच्चों की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर आप उसके करीब आ सकते हैं और उसके जीवन का सबसे अच्छा दोस्त बन सकते हैं। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com।

पेरेंट्स और बच्चों के बीच का रिश्ता सबसे जरूरी है और अच्छा बंधन होता है। ये रिश्ता बच्चों के व्यवहार का पसंद और बच्चों की पर्सनैलिटी पर असर डालता है। यही से बच्चों का भावनात्मक स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक विकास होता है। माँ बाप और बच्चों के बीच में अगर रिश्ते अच्छे हो तो इसके बहुत फायदे हो सकते हैं। अपने जीवन में दूसरे लोगों के साथ भी एक अच्छा रिश्ता बनाना, बच्चों का भावनात्मक, मानसिक और भाषा का विकास होना, बच्चों का आत्मविश्वास से परिपूर्ण होना और आशावादी होना, मुश्किल वक्त में और परिस्थिति में अपनी भावनाओं पर काबू रख पाना, बेहतर एकेडमिक और सोशल स्किल्स होना। तो दोस्तों, यह थी बेस्ट पेरेंटिंग के कुछ असर अपने बच्चों पर। होप दिस इंफॉर्मेशन वॉज वेरी यूजफुल टू ऑल दोस पेरेंट्स। विद दिस वी कंक्लूड टुडेज प्रोग्राम ऑफ लम्हे। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी आरजे चेतन से। तब तक आप मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाई एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।

0: आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
1: स्वागत स्वागत स्वागत संडे की इस खूबसूरत सुकून भरी शाम की ओर बढ़ती दोपहर में आप सभी का स्वागत आकाशवाणी रेनबो की मैजिकल फ्रीक्वेंसी के साथ। मैं आपके साथ प्रियंका मामगिन। संडे का दिन है, ऐसे में आराम ही सबसे बड़ा नाम बन जाता है। जी हाँ जनाब, ये बात फिजिकल

आराम की हो रही है, शारीरिक आराम की हो रही है, वहीं दिमाग की बात की जाए तो दिमाग को आराम करते हुए भी आराम नहीं करता है। दिमाग को कभी भी आराम नहीं होता है और लगता है कि दिमाग हर वक्त चल रहा है। और अब दिमाग चलाने की बारी आ गई है, क्योंकि दिमाग की बत्ती जलेगी तो आप बनेंगे रेनबो जीनियस। जी हाँ, हमारे पास है 5 सवाल और इन सवालों के सही जवाब देकर आप बनेंगे रेनबो जीनियस। और आज की बात की जाए तो ये अक्टूबर का महीना है, पहला हफ्ता है, और इस पहले हफ्ते में 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक हम सभी भारतीय सेलिब्रेट करते हैं नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक। जी हाँ, राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। और सोने पे सुहागा बात यह है कि आज है 4 अक्टूबर और आज है क्या है, आज वर्ल्ड एनिमल डे, विश्व पशु दिवस भी हम सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आप सभी को नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक की और पशु विश्व पशु दिवस की, वर्ल्ड एनिमल डे की हार्दिक शुभकामनाएं। जल्दी से तैयार हो जाइए, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके पास आएंगे। हो सकता है अगर आप जंगली जानवरों से प्यार करते हैं, आपको पशु पक्षी बहुत अच्छे लगते हैं, तो आज आप रेनबो जीनियस बन ही जाएं। कौन सी नंबर है जिन पर आपको कॉल करना होगा? हमारे पास 2 नंबर है, 0112342108 और 0112342108। इन पर कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, दे सकते हैं 5 सवालों के जवाब और बन सकते हैं रेनबो जीनियस।

0: चिल होने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि धड़ाधड़ कॉल आ रहे हैं और हमसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं बहुत से हमारे लिसनर्स, क्योंकि वो बनना चाहते हैं रेनबो जीनियस। तो हम अपने पहले लिसनर्स से मिलकर उनसे पूछते हैं वो पांच सवाल जिनका सही जवाब देकर वो बनेंगे रेनबो जीनियस। हेलो।
1: हेलो जी, नमस्कार मैडम।
0: जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मैं उमेश बात कर रहा हूँ, भिवानी हरियाणा से।
0: जी उमेश जी, आप क्या करते हैं?
1: जी मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, हरियाणा पुलिस में एज कांस्टेबल जॉब कर रहा हूँ।
0: ओ, ओ क्या बात है, फिर तो टफ टफ क्वेश्चन पूछे या आसान से क्वेश्चन पूछे?
1: जी आप टफ, आप शायद आसान पूछे और मेरे को ना आए।
0: अच्छा ओके दैट्स ग्रेट।
1: मतलब जनरल नॉलेज में आप शायद किसी के लिए कोई क्वेश्चन आसान तो किसी के लिए हार्ड भी हो सकता है।
0: बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, डिपेंड करता है किस फील्ड में आप ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, उसकी पढ़ाई ज्यादा करते हैं, ऐसा होता है ना?
1: जी
0: जी। तो उमेश जी, हम नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक मना रहे हैं, ये जो वीक है ये कब से कब तक मनाया जाता है?
1: ये 2 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक।
0: गलत सवाल जवाब।
1: 2 से 7 अक्टूबर तक।
0: 8 अक्टूबर तक, 2 से 8 अक्टूबर तक हम बनाते हैं अपना नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक। ओके नेक्स्ट टाइम दूसरे कॉलर से जुड़ते हैं हम। हेलो हेलो
2: हेलो।
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं आप?
2: जी मेरा नाम आकाश है।
0: हाय आकाश।
2: हेलो
0: जी आकाश, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
2: जी मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ।
0: और क्या करते हैं आप?
2: जी मैं पढ़ता हूँ, वैसे तो मैं टीचर हूँ, कॉम्पिटिशन एग्जाम की भी तैयारी करते हैं साथ में।
0: ओके, तो अक्टूबर का महीना है और आज है 4 तारीख। तो आज क्या है?
2: आज आपने बताया था वर्ल्ड एनिमल डे है।
0: बिल्कुल सही जवाब, पहला जवाब आपका बिल्कुल सही रहा। इसी के साथ आपने न्यूज़ जो मैंने पढ़े थे वो आपने ध्यान से सुने थे? ओके, तो आप बताइए कि हमारे जो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं उनका क्या नाम है?
2: एनवायरमेंट जो हमारे मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है ना?
0: ये मैंने न्यूज में बताया था, पढ़ा था, तो उनमें उनका नाम भी आया था।
2: हाँ जी हाँ जी, एनवायरमेंट मिनिस्टर का नाम बताना है ना, भूपेंद्र यादव।
0: बिल्कुल सही जवाब, कौन कर रहा है आपकी मदद पीछे से?
2: नहीं मैम कहीं नहीं, भी कॉल करने में टाइम लग रहा है।
0: नहीं, कोई तो है, कोई तो है।
2: भूपेंद्र सिंह या भूपेंद्र यादव, इसमें कंफ्यूजन है।
0: यादव हैं, वो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भारत सरकार में, हमारे वो मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी उनका नाम है। और वो राजस्थान के कौन सी जगह के नेशनल पार्क में आज गए थे? राजस्थान कौन सी जगह में वो नेशनल पार्क है जहाँ वो गए थे?
2: वहाँ पे उसका नाम बताना मैम।
0: हाँ जी,
2: वो केट बस्टर्ड इंडियन देखने गए थे चंबल घाटी में।
0: चंबल कहाँ पर है?
2: चंबल तो मैम राजस्थान में ही है।
0: राजस्थान में
2: है? राजस्थान और वो जो उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है वो पड़ता है एमपी।
0: ओके जनाब, आप गलत गलत सही क्वेश्चन का गलत जवाब दे रहे हैं। वो राजस्थान के जैसलमेर में गए थे, डेजर्ट नेशनल पार्क में वो गए थे, जहाँ पे उन्होंने 2 नर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षियों को वहाँ पे छोड़ा और उन्हें आज़ाद करके वहाँ पे उस जो नेशनल पार्क है उसका हिस्सा बनाया।
2: थैंक
0: यू सो वेरी मच हमसे जुड़ने के लिए। जी हाँ जनाब, अगर आप भी देना चाहते हैं 5 क्वेश्चंस के आंसर और उन क्वेश्चंस के आंसर देकर आप बनना चाहते हैं रेनबो जीनियस, तो प्लीज़ हमें कॉल करें उन्हीं नंबर्स पर जिन पर आप हमें कॉल कर रहे हैं। कौन से हैं वो नंबर? अगर उन नंबर की तरफ ध्यान दिया जाए तो वो नंबर है 0112342108 और 0112342108 4। ये दो नंबर हैं जिन पर डायल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, 5 सवालों के जवाब दे सकते हैं और बन सकते हैं रेनबो जीनियस।

0: जी हाँ जनाब, सीटी मारने का टाइम आ गया है, क्योंकि अगर आप 5 क्वेश्चंस के सही जवाब देते हैं तो बनेंगे आप रेनबो जीनियस। हमारे साथ एक पर्सन जुड़ चुके हैं, लिसनर जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप और कहाँ से?
1: हाँ, मैं केशव चक्रवर्ती, अगरतला त्रिपुरा से।
0: केशव जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: अगरतला त्रिपुरा से। नमस्ते मैडम।
0: अगरतला से ना, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। नमस्कार, कैसे हैं आप? आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है केशव जी?
1: हेलो
0: जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है?
1: आवाज मैडम,
0: मैं आपको क्वेश्चन पूछती हूँ। अच्छा, आप उस जगह चले जाइए जहाँ पे बिल्कुल सही आवाज पकड़े आपका फोन। मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ। जंगल का राजा किस जानवर को कहा जाता है?
1: रॉयल बंगाल टाइगर,
0: शेर को। ओके, पहला आंसर आपने बिल्कुल सही दे दिया है। सुंदरबन तो किसी और चीज के लिए है। ओके, इसी के साथ आप हमें ये बताइए कि जो हमारे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, उनका नाम क्या है?
1: भूपेंद्र सिंह यादव।
0: जी बिल्कुल सही जवाब। और आज 4 अक्टूबर है, आज हम कौन सा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं?
1: From 2 अक्टूबर to 8 अक्टूबर।
0: आज ये तो ये वीक है, नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक है जो हमारे देश का है। एक हम और डे सेलिब्रेट कर रहे हैं आज 4 अक्टूबर को, वो एक ही दिन मनाया जाता है। आज कौन सा दिन है?
1: ये तो सेलिब्रेटिंग करा है राजस्थान जैसलमेर टुडे सेलिब्रेटिंग।
0: आपका टाइम अप हो रहा है, प्लीज जल्दी से आंसर कीजिए। आज 4 अक्टूबर है, आज कौन सा डे हम सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं, पूरे विश्व में सेलिब्रेट किया जा रहा है?
1: 4 अक्टूबर। नहीं मैडम, याद नहीं आ रहा है, थैंक यू।
0: ओके, आज है 4 अक्टूबर और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड एनिमल डे, विश्व पशु दिवस। ओके, नेक्स्ट टाइम आप जरूर कॉल कीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू। इसके साथ एक और कॉलर है, आइए उनसे जुड़ते हैं। हेलो हेलो, लगता है कॉल ड्रॉप हो गई है। जी जनाब, अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं तो हमारे 2 नंबर हैं, 0112342 1080 और 2342 1084। ये 2 नंबर हैं जिन पर कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, 5 सवालों के जवाब दे सकते हैं, रेनबो जीनियस बन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब गाने चल रहे हों या फिर जो एडवर्टाइजमेंट चल रही हों, उस टाइम पर आप कॉल करते हैं, उस टाइम पर हम कॉल नहीं ले सकते हैं। और जैसे ही खाना खत्म होने वाला था, आप कॉल ड्रॉप कर देते हैं, उससे क्या होता है, एक लिसनर हम लूज कर देते हैं और आप भी हमसे जुड़ नहीं पाते। इसलिए कोशिश करिए कि आप जब कॉल करते हैं तो कॉल पे लगातार बने रहें। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
2: हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
3: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें
3: रेनबो डेस्टिनेशंस
2: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
4: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
5: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
6: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
5: म्यूजिक मस्ती।
7: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
2: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
5: म्यूजिक मस्ती।
8: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: और इससे पहले कि ये जो लिसनर हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो कहीं चले जाएं, हम उनसे जुड़ जाते हैं, उनसे पूछते हैं वो सवाल जिनका आंसर देकर वो बनेंगे रेनबो जीनियस। हेलो
9: हेलो,
0: हाय, कौन बोल रहे हैं आप?
9: हाँ, क्या FM से बात हो रही है?
0: जी बिल्कुल, आपकी FM से बात हो रही है, FM रेनबो पे आपका कॉल लगा है। और आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो हेलो, क्या आप रेनबो जीनियस का हिस्सा बनना चाहते हैं? लगता है जनाब मूड से तो आए थे कि रेनबो जीनियस प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे, लेकिन आरजे, एक नया आरजे लग रहा है उन्हें कि ये आरजे आज कैसे आ गई, संडे को तो ये आते ही नहीं है। तो एक कंफर्ट लेवल होता है ना जो दूसरे आरजेस के साथ जो नॉर्मली इस प्रोग्राम को करते हैं, शायद वो नहीं बन पा रहा है कहीं पर। चलिए जनाब, हम तो आपके इंतज़ार में हैं, आप चाहे कभी भी कॉल करें, हम आपका कॉल ज़रूर उठाएंगे। आप कर सकते हैं हमें कॉल 011-234-1084 पर, और कह डालिए ना आई एम द बेस्ट। एक पर्सन है जो कहना चाहते हैं आई एम द बेस्ट। हेलो हेलो हेलो, क्या आप हमसे बात करना चाहते हैं रेनबो जीनियस में?
9: यस यस।
0: तो आप अपना नाम बताइए और जगह बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो, ओ जनाब आपका तो नेटवर्क डाउन है, प्लीज़ आप या तो उस एरिया में आ जाइए जहाँ पे बिल्कुल सही नेटवर्क है और आपकी आवाज़ हम तक पहुँच सके, या फिर दूसरे लिसनर्स को मौका दीजिए ना आई एम द बेस्ट कहने का।

0: कौन जुड़े हमारे साथ, आइए इससे पहले वो चले जाए उनसे जुड़ जाते हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो।
1: हेलो
0: जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: यस मैम, मैं बिहार पटना से बोल रहा हूँ, आदित्य राज, क्लास 10 का स्टूडेंट हूँ।
0: हाय आदित्य, हाउ आर यू?
1: आई एम फाइन।
0: ओके, प्रिपरेशन कैसी चल रही है बोर्ड एग्जाम्स की?
1: मैम ठीक ही चल रही है अभी तो।
0: अरे कहो, बहुत बढ़िया चल रही है, अक्टूबर आ गया है है ना?
1: यस मैम,
0: आप अपने हिसाब से तो अपना पूरा 100% दे रहे हैं ना?
1: यस मैम, यस मैम।
0: तो फिर बिंदास होके बोलो, बहुत अच्छी चल रही है। मैं अपने हिसाब से बहुत बेस्ट करूंगा, आई एम द बेस्ट।
1: यस मैम।
0: ओके, तो जनाब रेडी हैं 5 questions के आंसर देने के लिए?
1: यस मैम।
0: ओके, तो जनाब ये बताइए कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, नेशनल एनिमल?
1: जी
0: हाँ जी,
1: लायन।
0: बाघ।
1: Yes, yes, yes,
0: okay. और राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है भारत का? राष्ट्रीय, बिल्कुल सही जवाब। 2 सवालों के आपने बिल्कुल सही जवाब दे दिए हैं। तो आप हैं बिहार से, बिहार के पास है हमारा पश्चिम बंगाल।
1: yes, ma'am.
0: और वहाँ पे तिस्ता नदी भी है।
1: yes, ma'am, yes, ma'am.
0: तो वहाँ पर कुछ मछुआरों ने देखा कि एक जानवर का बच्चा नदी में बहा जा रहा था, और उन्होंने वन विभाग की टीम के साथ उस जानवर के बच्चे को नदी से निकाला और वापस उसकी माँ से मिला दिया। तो वो जानवर का बच्चा किस जानवर का बच्चा था?
1: वेस्ट बंगाल में।
0: अरे तो बहुत रील्स बनी थी इसकी, इतना क्यूट बेबी था वो। जल्दी जल्दी जल्दी,
1: क्रोकोडाइल?
0: अरे नहीं, क्रोकोडाइल तो पानी में ही रहता है, वो बच्चा पानी में नहीं रहता था। बट आपका ये 3रा सवाल है, पश्चिम बंगाल में, ये सितंबर के महीने की ही बात है, पश्चिम बंगाल की तिस्ता नदी में एक हाथी का बच्चा जो बहुत छोटा था, कुछ ही दिनों का था, वो अपनी माँ से बिछड़ गया क्योंकि नदी का बहाव बहुत तेज था और वो नदी में बहता चला गया। और कुछ मछुआरों ने उस बच्चे को देखा और फिर वन विभाग की टीम को सूचित किया, और दोनों ने मिलकर, वन विभाग की टीम ने और जो वो मछुआरे थे, लोकल मछुआरे, उन सब ने मिलकर उस छोटे से हाथी के बच्चे को बचाया और फिर उसको उसकी माँ से भी मिलवाया। है ना क्यूट सी बात। हेलो आदित्य।
1: यस मैम, यस मैम।
0: आप सुन रहे हैं?
1: यस मैम।
0: ओके दैट्स ग्रेट आदित्य, आप जो पढ़ाई बहुत अच्छी से चले।

0: ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं। एक कॉल तो आ रही है, क्या करें, कॉल को ले लिया जाए पहले? चलिए जनाब कॉल लेते हैं पहले। हेलो।
1: हेलो,
0: हाय, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप?
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं आप और कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: अशोक कुमार, दिल्ली से।
0: आप अशोक कुमार हैं?
1: हाँ जी, फिल्म एक्टर नहीं।
0: मैं वही बोलने वाली थी। फिर तो क्वेश्चन क्या पूछा जाए आपसे, गाना ही सुन लेते हैं आपका, है ना?
1: अब मुझे तो रेलगाड़ी वाला गाना भी नहीं आता। रेलगाड़ी छुक छुक छुक, रेलगाड़ी।
0: जी बिल्कुल अशोक जी, बहुत अच्छा। अशोक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो हमारा वर्ल्ड एनिमल डे है वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है?
1: आज ही तो किया जा रहा है सेलिब्रेट, 4 अक्टूबर।
0: बिल्कुल सही जवाब, पहला जवाब आपने बिल्कुल सही दिया है। इसी के साथ हम आपको एक और बात पूछना चाहेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है?
1: तो बहुत बड़ा जानवर का सवाल पूछ लिया आपने इंसान से।
0: इंसान और जानवर दोनों दोस्त ही
1: हैं। तो मैम जो जिसकी
0: समुद्र में रहती है वो
1: सबसे बड़ा जानवर,
0: समुद्र में रहती है वो, जब मैंने रहती भी बोल दिया समुद्र में नहीं, नहीं जनाब,
1: घड़ियाल।
0: वो सबसे बड़ा जानवर कैसे हो सकता है?
1: अच्छा, वो दरिया वाला घोड़ा होगा।
0: नहीं, सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा जानवर साइज के अकॉर्डिंग है ब्लू व्हेल, वो सबसे बड़े हैं जो पूरे ब्लू व्हेल होती है ना, जो समुद्र में रहती है, जिसकी बहुत सारी पिक्चरें बनी हुई हैं और जिस के लिए बहुत सारे, मतलब बहुत सारे इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं उनके संरक्षण के लिए, और वो सबसे बड़ी व्हेल होती है विश्व की, ब्लू व्हेल कहते हैं उसे। थैंक यू सो मच।
1: ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है और आज तो आपका प्रस्तुतिकरण बेहद ही उत्तम है, अति उत्तम क्या कहूँ, लगता है आज के रेनबो जीनियस आप नहीं बना पाएंगे।
0: रियली?
1: मुझे ऐसा आभास हुआ। हाँ। आज बना नहीं पाएंगे, कोई रेनबो जीनियस 5 बजने वाले हैं और उठकर गाने आप सुना रहे हैं।
0: बिल्कुल सही
1: जगह, तो कुछ सवाल ही पूछ लें।
0: हाँ,
1: कोई लिसनर को जोड़ लें
0: जी, अगर लिसनर कॉल करेंगे तो हम जरूर जोड़ेंगे। जी हाँ जनाब, हम भी यही चाहते हैं कि आप हमसे जुड़े और हम आपसे सवाल पूछे और आप बने रेनबो जीनियस।
2: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती,

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे।

0: बच्चे प्रोग्राम फार्म टू सिटी एफएम रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार एफएम रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
1: वेलकम बैक रेनबो जीनियस। और अब हमसे जुड़ चुके हैं एक लिसनर। हेलो। कॉल ड्रॉप हो गई, क्या बात है जनाब। मैं तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अभी तो मैंने हार्ड क्वेश्चन, जो टफ क्वेश्चन थे, वो मैंने कुछ पूछना शुरू ही नहीं किया है। जनाब जल्दी से डायल कीजिए नंबर हमारा 0112342108 4012342108 0, और बन जाइए रेनबो जीनियस।
2: पागल मनवा,
1: चलें कोई तो जुड़ा है, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो।
3: नमस्कार मैडम जी।
1: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप?
3: मैं सतीश बात कर रहा हूँ, फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से।
1: सतीश जी क्या करते हैं आप?
3: मैं तो मैडम जी खेती बाड़ी करता हूँ और सिलाई करता हूँ।
1: हाँ, ओके, दैट्स ग्रेट। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए?
3: हाँ पूछा जाए मैडम जी। मैं तो कई बार जीनियर बन गया हूँ।
1: अच्छा,
3: आपका प्रोग्राम करने में बहुत बढ़िया लगता है। और पहली बार मेरे आपसे बात हो रही है, और पहली बार आप जो प्रोग्राम करती हैं बहुत अच्छा लगता है। अभी नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, 15 नवरात्रि के बाद
1: दीपावली। अच्छा चलिए, अब हम रेनबो जीनियस बनते हैं, नहीं तो फिर रह जाएंगे आप 5 क्वेश्चन पूछने, बहुत टाइम लगेगा। ओके, तो सतीश जी सबसे पहले ये बताइए कि सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है?
3: सबसे तेज दौड़ने वाला चीता।
1: बिल्कुल सही जवाब। और किस जानवर को जंगल का राजा कहा जाता है?
3: शेर।
1: बिल्कुल सही। किस जानवर की गर्दन सबसे लंबी होती है?
3: ऊंट का, कहिए जिराफ होता है ऊंट।
1: हाँ जल्दी बताइए, जिराफ या ऊंट?
3: जिराफ।
1: जिराफ, बिल्कुल सही जवाब। 3 क्वेश्चंस के आंसर आपने बिल्कुल सही दे दिए हैं। इससे पहले लिसनर ने कहा था कि शायद ही कोई बन पाए, लेकिन मुझे लग रहा है आप बन जाएंगे, है ना? ठीक है, तो सतीश जी बताइए रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है? बिल्कुल सही जवाब। 4 जवाब बिल्कुल आपने सही दे दिए हैं। अब आपको ये बताना है कि नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक भारत में हम कब मना रहे हैं? अक्टूबर में मना रहे हैं, ये अभी चल रहा है, आपको कब से कब तक है ये बताना है।
3: नेक्स्टर समझ नहीं पाए
1: जी। राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह हम मना रहे हैं अक्टूबर के महीने में। मैंने शुरुआत, प्रोग्राम जब शुरुआत की थी उस टाइम भी उसके बारे में जिक्र किया था। कब से कब तक रहता है वो वीक? सिर्फ एक आंसर दे देंगे तो आप बन जाएंगे रेनबो जीनियस।
3: मैं समझ नहीं पाई आपकी।
1: अच्छा, तो अक्टूबर के महीने में हम राष्ट्रीय वन्य जीव वीक कब से कब तक मनाते हैं? किस दिन से कितने दिन तक का रहता है? वीक है, सप्ताह है, तो एक हफ्ते का रहेगा, है ना? आपको डेट बतानी है, पहली डेट ही बता दीजिए। हेलो,
3: आवाज नहीं आ रही है
1: जी जनाब, आवाज नहीं आ रही, और शायद मेरी आवाज भी जा रही है। मेरी आवाज तो कहीं नहीं जा रही है, बस मुझे टाटा बाय बाय करना होगा, क्योंकि अब वक्त जो कह रहा है वो कह रहा है कि इतना ही वक्त था रेनबो जीनियस का, आज कोई रेनबो जीनियस बन नहीं पाया, तो कोई बात नहीं, अगले हफ्ते फिर संडे आएगा, फिर दोबारा से वो चिर परिचित आवाज़ें आपके साथ रहेंगी, और उनके साथ आप खेलेंगे रेनबो जीनियस, 5 सवालों के जवाब देंगे, उनका आंसर देंगे और बनेंगे रेनबो जीनियस। फिलहाल मैं यहीं पर लेती हूँ विदा, क्योंकि अगले प्रोग्राम में आपके साथ रहेंगी, कौन रहेंगी, हैं कोई जो सिटी राइट्स लेकर आएंगी आपके साथ, भारती है उनका नाम, और बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम्स वो करती हैं, तो उनका इंतज़ार कीजिए। फिलहाल मैं आपसे लेती हूँ विदा इस वादे के साथ कि बहुत ही जल्दी होगी आपसे फिर मुलाकात।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो। शाम के 5 बज चुके हैं, लीजिए सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि विकसित भारत की यात्रा भारत के संस्थानों, लघु और मध्यम उद्यमों तथा नवाचार की ताकत पर आधारित होगी। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनावों के लिए प्रचार आज समाप्त हो रहा है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को रूपांतरित करने के उद्देश्य से शुरू की गई पीएम सेतु योजना ने एक वर्ष पूरा कर लिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय कल से गुजरात में 2 दिन का चिंतन शिविर आयोजित करेगा। इसमें देश में राजमार्ग के विकास और परियोजनाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। इस मामले में पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी को तलब भी किया गया है। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने अमरीका के हिंद प्रशांत कमान के प्रमुख एडमिरल सैमुअल जे. पापारो से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच सुरक्षा साझेदारी और समुद्री सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज राजस्थान के जैसलमेर में डेजर्ट नेशनल पार्क के सेम क्षेत्र में 2 नर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षियों को छोड़ा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा और सुब्रमण्य शिवा को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। भारतीय वायुसेना ने आज फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सेखों की स्मृति में देश भर के विभिन्न शहरों में सेखो भारतीय वायुसेना मैराथन का दूसरा संस्करण आयोजित किया और एशिया खेल 2026 का जापान में नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है। भारत ने खेलों में 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में 4th स्थान हासिल किया है। ये थे आकाशवाणी एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: गुड इवनिंग दिल्ली। शाम हो चुकी है और दिन भर की भागदौड़ के बाद अब वक्त है थोड़ा रिलैक्स करने का, अपने सफर को म्यूजिकल बनाने का और दिन भर की खबरों के बीच कुछ दिलचस्प बातों को जानने का। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, ट्रैफिक पर नजर रखिए और अपने पसंदीदा गानों के साथ हो जाइए तैयार, क्योंकि अगले एक घंटे तक हम आपके साथ हैं और आपका सफर और आपकी शाम दोनों होने वाले हैं बहुत खास। क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसी संगीतमय शाम की जो समर्पित है महाकवि गोपाल दास नीरज जी के अमर गीतों पर, उनकी साहित्यिक विरासत को, और साथ ही जानेंगे ऐसे आयोजन के बारे में जहां कविता और संगीत मिलकर यादों का खूबसूरत कारवां सजाते हैं। इसके अलावा और भी होंगी बहुत सारी काम की बातें, कुछ दिलचस्प अपडेट और आपके मनपसंद गीत भी आप सुन सकेंगे। जी हाँ, जो आप फरमाइश तो नहीं कर सकते, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि हम जो भी सॉन्ग यहाँ पर प्ले करते हैं वो सभी आपकी मनपसंद सॉन्ग्स होते हैं। तो डेली, मैं हूँ आपकी ध्वनि तरंगों की संगिनी कोमल और आप सुन रहे हैं सिटी लाइट्स इवनिंग ड्राइव शो।

और इसे आप सुनते हैं रोजाना आकाशवाणी एफएम रेनबो पर, जिसे आप ट्यून करते हैं 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर दिल्ली एनसीआर में, और दिल्ली एनसीआर के बाहर अगर आप कहीं हमसे जुड़ते हैं तो हमें पूरी तरह से उम्मीद है कि आप हमारी न्यूज़ ऑन एयर ऐप के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं, या फिर आप जुड़ते हैं हमारे वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी। और हाँ, इसके अलावा डीटीएच भी तो है जहां आप हमसे जुड़ते हैं। तो कम ऑन दिल्ली एनसीआर, लेट्स मेक दिस इवनिंग म्यूजिकल, मीनिंगफुल एंड मेमोरेबल।

0: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर

0: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
0: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
0: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे FM रेनबो पर।

10? रियली 10 बहाने? मुझे लगता है हमारे पास बहुत सारे बहाने हैं आपका दिल लेकर के जाने के लिए, क्योंकि हम हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो, जिसे आप सुनते हैं 102.6 एफएम पर, और ये प्रोग्राम चल रहा है सिटी लाइट्स। और हमारे पास सिर्फ 10 नहीं, 20, 50, 100, ना जाने कितने बहाने हैं आपका दिल लेकर के जाने के लिए। कितने लोग एग्री करते हैं ज़रूर बताइएगा मैसेज करके। लेकिन फ़िलहाल मैं आप सभी को बता दूं, हमारी वो माताएं, बहनें, सखियां, सहेलियां जो भी दिल्ली की सड़कों पर सफ़र करते हुए DTC बस या क्लस्टर बस में ट्रेवल करती हैं, तो अगर अभी तक आप पिंक जो पेपर टिकट है उससे अगर आप यात्रा कर रहे थे, तो अब आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि अब वो जो टिकट है वो वैलिड नहीं रहा है। सरकार ने भी 2 बार, 3 बार, 4 बार, कई बार उसकी जो लास्ट डेट है वो बढ़ा दी थी, ताकि आप अपने पिंक स्मार्ट कार्ड जो है वो बनवा सकें। लेकिन अब जो है

उसकी लास्ट डेट नहीं बढ़ाई गई है। और अब फिलहाल आपको अगर डीटीसी बस में मुफ्त यात्रा करनी है तो आपको अपना स्मार्ट कार्ड बनवाना ही पड़ेगा, जो कि है पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड। और अगर आपके पास ये कार्ड नहीं है तो डोंट वरी, आप डीटीसी बस में फिर भी यात्रा कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा, और टिकट लेना पड़ेगा तो उसका किराया भी देना पड़ेगा। सो लेडीज, बिफोर यू स्टेप आउट फॉर योर नेक्स्ट बस राइड, मेक श्योर यू योर पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड इज रेडी, क्योंकि स्मार्ट ट्रेवल का पहला रूल है बी अवेयर बी प्रिपेयर, और अपनी जर्नी को बनाइए हैसल फ्री। आप सुन रहे हैं सिटी लाइट्स, जी हाँ, आपका इवनिंग ड्राइव शो, और मैं हूँ आपके साथ आपकी ध्वनि तरंगों की संगिनी कोमल। और चलिए सुनवाते हैं आपको एक और प्यारा सा गीत और लौट कर आते हैं उस गीत के बाद, क्योंकि कुछ और जानकारी अभी आप तक पहुँचानी है।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर आध्यात्मिक

0: ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: अब होगा शिक्षा, मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
4: आप सुन रहे हैं सिटी लाइट्स और ये आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के FM रेनबो 102.6 पर दिल्ली NCR में, और दिल्ली NCR से बाहर आप जुड़े हुए हैं हमारी न्यूज़ ऑन एयर ऐप के माध्यम से, DTH और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी। मैं हूँ आपकी ध्वनि तरंगों की संगिनी कोमल।

सिटी लाइट्स, यही है इस प्रोग्राम का नाम जिसे आप सुनते हैं इवनिंग ड्राइव शो के नाम से भी। और क्योंकि ये जो समय होता है ना, इसमें बहुत सारे जो हमारे लिसनर्स होते हैं या बहुत सारे लोग होते हैं, वो ड्राइव कर रहे होते हैं, ऑफिस से घर की तरफ जा रहे होते हैं, या अपनी शाम को खूबसूरत बनाने के लिए घर से निकले हुए होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इस वक्त सेंट्रल दिल्ली के आसपास हैं और कुछ अच्छा समय बिताने के बारे में सोच रहे हैं, तो चलिए आपको बताते हैं कि ऐसी शाम जहां शब्दों में एहसास हो, गीतों में मोहब्बत और हर धुन में जिंदगी का दर्शन, कुछ ऐसा ही खूबसूरत अनुभव लेकर के आया है कारवां गीतों का नीरज, जो महाकवि गोपाल दास नीरज की साहित्यिक विरासत और उनके अमर गीतों को समर्पित है। आज यानी के 4 अक्टूबर को नई दिल्ली के मावलंकर हॉल में सज रही है ये संगीतमय शाम, जहां नीरज जी के कालजयी गीतों को करीब से महसूस करने का एक खास अवसर है। और वैसे भी दोस्तों, कुछ गीत जो होते हैं ना, वो आपके कानों तक पहुंचते हैं, और कुछ गीत जो होते हैं वो सीधा दिल में उतर जाते हैं। नीरज जी के गीत उन्हीं में से होते हैं। हे दिल्ली, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें शब्दों में जादू और संगीत में सुकून मिलता है, तो ऐसी ये जो शाम है ये आपके लिए बहुत खास हो सकती है। तो अपने मनपसंद लोगों के साथ जाइए और इस गीतों के कारवां का हिस्सा बन जाइए। दिल्ली वालों, इस शाम को सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख मत बनाइए, इसे खूबसूरत याद बनाइए। आइए महाकवि नीरज के शब्दों और गीतों के साथ कुछ पल बिताएं, जहां संगीत भी होगा और दिल से दिल का जुड़ाव भी। मैं हूं आपकी ध्वनि तरंगों की संगिनी कोमल, और आप सुन रहे हैं सिटी लाइट्स एन इवनिंग ड्राइव शो।

और इसी गीत के साथ मुझे यानी कोमल को दीजिए इस कार्यक्रम सिटी लाइट से यहीं पर इजाजत, क्योंकि शाम 5:30 बजे आप सुनेंगे हमारा स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम फार्म टू सिटी। और दोस्तों फिर होगी आप सभी से मुलाकात रेनबो की तरंगों पर, यूं ही मिलते रहिएगा, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, नमस्कार।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: अरे अरे अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे पहली वाली बात कहा,
2: पर हम तो सभी डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच
1: है? एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज तक जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: उठे सबके कदम, देखो रम पम पम, सभी श्रोताओं को हमारा प्रणाम नमस्कार। वेलकम टू फार्म टू सिटी, अ प्रोग्राम ब्रॉट टू यू बाय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, और मेरा नाम है ओपी राठौर। हर कार्यक्रम का नजरिया होता है आप सबके लिए, जो घर में छिपे हुए किसान हैं, यानी कि अपनी बैल्कनी को सजा रहे हैं गमलों से, जो अपनी छतों पर सजा रहे हैं प्यारी सी बगिया, और घर के आंगन में भी एक छोटी सी क्यारी है, प्यारी है, उसी क्यारी को सुंदर बनाने की तैयारी है ये प्रोग्राम। तो आज के अंक में स्पेशली हम बात करेंगे कि कैसे उगाएं बोनसाई, क्योंकि बोनसाई की जो शान है वो गजब है। इसी पर बात करने के लिए गजब के एक्सपर्ट भी होंगे हमारे साथ, लेकिन गाने के उस पार

0: तो जनाब फिर से आ जाइए फार्म टू सिटी की इस प्यारी सी क्यारी में, क्योंकि अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं हमारे बोनसाई एक्सपर्ट मिस्टर जयपाल सिंह जी से। नमस्कार जयपाल जी एंड वेलकम। और ये हमें बताएंगे कि बोनसाई के पेड़ कैसे उगाए जाते हैं घर के अंदर गमलों में, यानी पीपल, बरगद, आम, नीम, ये सब कुछ आपके घर में उग सकता है, घर के अंदर और टेबल के ऊपर आप सजा के रख सकते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस कार्यक्रम में। और हम सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि बोनसाई है क्या।
1: बोनसाई के बारे में बताना चाहूंगा मैं कि जैसे धीरे धीरे करके किसी भी प्लांट के आप ऊपर से रोज पत्ते अगर तोड़ने लगे तो वो धीरे धीरे करके एक जगह पे मेंटेन होने लगता है और वो एक विशाल पेड़ का रूप ले लेता है धीरे धीरे करके। तो बोनसाई एक बहुत विशाल पेड़ का एक छोटा रूप है। चाइनीज भाषा, जापानीज भाषा को मिला के बोनसाई का एक शब्द बना है, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि एक विशाल पेड़ का छोटा रूप ही बोनसाई कहलाता है।
0: तो क्या जैसे मैंने भूमिका में बताया कि पीपल, आम, ये सब बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे दरख्त हमारे घर के छोटे से गमले में उग सकते हैं, और क्या एक आम इंसान इसे खुद ब खुद कर सकता है?
1: बिल्कुल, प्रकृति में जो हमारे विशालकाय पेड़ हैं अधिकतर बहुत अच्छे खूबसूरत बोनसाई भी उन्हीं के बनते हैं। और आप जब अगर करने की ठान लेते हैं, पर आज के टाइम में बहुत ही अच्छी हेल्प भी आपके पास है, तो आप किसी भी पेड़ को लगा के पहले क्या होता है उसका एक प्रॉपर नाम रखिएगा। नाम रखने से तात्पर्य मेरा ये है कि हर बोनसाई का एक अलग डिजाइन, अलग रूप होता है। जब बोनसाई आप बनाने लगते हो तो आपको कंपटीशन में जाना पड़ता है, और जब आप कंपटीशन लड़ने लगते हो तो वहां पे अलग अलग कैटेगरी की बोनसाई आप जो है डेवलप करते हैं। तो इजीली किसी भी बोनसाई का प्लांट खरीदने से पहले आपकी उसको बहुत सारी क्वालिटियां जो है उसमें देखनी पड़ती है आपको, जैसे कि उसका ब्रांच स्ट्रक्चर क्या है, उसको किस स्टाइल में इजीली आप कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टाइल से मतलब ये है कि बोनसाई की 13-14 स्टाइलें होती हैं नॉर्मल। तो आप जब बोनसाई बनाते हैं तो बहुत इजी है, अगर आप पहले उनको समझ गए तो आप किसी भी स्टाइल में अपना बोनसाई कोई भी कंप्लीट किसी भी वैरायटी का इजीली कर सकते हो।
0: तो बोनसाई लगाने के लिए क्या कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है भारत सरकार का, या ये आप जो बता रहे हैं बस उसी से ही हो जाएगा?
1: जी हाँ, पीएम कौशल विकास

0: योजना जो चली थी उसके माध्यम से हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जो हमारे एनडीएमसी स्कूल हैं, डीडीए के स्कूल हैं और अपने कॉरपोरेशन के हैं, वहां पे टाइम टू टाइम एक बोनसाई से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है। मैं वहां पे क्लास लेने के भी जाता हूं। तो आजकल बहुत ज्यादा क्रेज है समाज में और उसमें क्या करते हैं वो लोग, भाई एक टाइम पे ऐड निकालते हैं अपनी, जो भी नाम लिखाना चाहे उनकी क्लास अटेंड करते हैं और वो वहां पे एक्सपर्ट को बुलाते हैं। तो बोनसाई के बारे में जो भी बारीक से बारीक जानकारियां हैं हम उनको देते हैं और वो गृहिणी जो आम आदमी है वो आजकल वो भी बोनसाई का बहुत अच्छा शौक कर रहे हैं और बहुत अच्छे से डेवलप कर रहे हैं।
1: अब इनको लगाने में बहुत समय लगता है, तो क्या इस समय के दौरान कोई सावधानियां या कोई विशेष रखना पड़ता है रखरखाव ताकि बोनसाई समय से पहले विदा ना हो जाए?
0: सावधानियां ये है, जब आप प्रकृति से प्रेम करने लगोगे और प्रकृति से जुड़े हुए शौक जब आप करेंगे तो जो लेके आएंगे पहले उस प्लांट के बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। जब प्लांट के बारे में आप जान जाओगे तो उसकी जरूरतें भी आप जानोगे, कितना उसको पानी चाहिए, किस टाइम उसका पतझड़ है, किस टाइम उसकी मिट्टी बदलनी है हमने। तो वो हमारा जो पूरी कंट्री में अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्लाइमेट होता है, तो उसमें प्रकृति के हिसाब से आपके पेड़ की जो वहाँ की रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से उसकी कटिंग करनी चाहिए, उसी हिसाब से उसकी मिट्टी बदली जाती है, रिपोर्टिंग जिसको कहते हैं, उसी हिसाब से उसका जैसे पतझड़ का टाइम है उसी टाइम पे उसको जितना भी केयर करनी है वो टाइम टू टाइम आपको, जब आप पेड़ को समझने लगोगे ये सब चीजें आपको इजीली लग लेने लगेंगी सब चीजें।
1: तो भारत में बोनसाई के चाहने वालों की संख्या कितनी लग रही है आपको, कितना क्रेज है बोनसाई का?
0: भारत में आज की डेट में इतनी बड़ी मार्केट है इसकी और इतना बड़ा क्रेज है कि बोनसाई हर आदमी करना चाहता है, हर आदमी अपने आंगन में लगाना चाहता है। बहुत ही उच्च लेवल पे इसका आज की डेट में लोग अपने शौक फरमा रहे हैं और हर आदमी को अच्छा लगता है। और आजकल आपस में जो एक त्योहार आ रहे हैं, बर्थडे पार्टियां हैं और जो विशेष हमारे प्रोग्राम है उसमें एक बोनसाई का चलन बड़ा विशेष स्तर पे पहुंच गया है। आजकल वो नॉर्मल बुक्का देने के बदले बोनसाई गिफ्ट कर रहे हैं, लोगों को अच्छा लगता है
1: जी। तो आपका कहना है कि बोनसाई इज पॉसिबल, अपने घर में हम कर सकते हैं, थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ी सी रुचि और बहुत सारा पैशन हो तो आम का पेड़ आपके घर में आपकी टेबल पर सज सकता है, उसमें आम भी लग सकते हैं, आम तोड़ भी सकते हैं, खा भी सकते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एक्सपर्ट सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक बार और अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए हमें चाहिए एक छोटा सा ब्रेक।

0: प्यारे फार्म टू सिटी के किचन गार्डनर्स, आपको मालूम ही होगा, नहीं मालूम है तो हम बता देते हैं कि अब हमारी खेती का तरीका पूरी तरह बदलने वाला है। नई दिल्ली में शुरू हुए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2026 में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने राज्यों को एक बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि अब पुराने ढर्रे पे खेती नहीं करनी है। जलवायु परिवर्तन, अनिश्चित बारिश और पानी की कमी जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए अब डेटा आधारित योजना, वैज्ञानिक रणनीति और जमीनी निगरानी का इस्तेमाल करना होगा। मंत्री महोदय ने साफ किया कि जब केंद्र और राज्य मिलकर इस आधुनिक तकनीक से काम करेंगे, तभी देश की खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी और हमारे किसानों की आय दुगनी होगी। इस मौके पर माननीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा,
1: हम देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए दिनों रात प्रयत्नरत हैं। हमने इस रबी कॉन्फ्रेंस को केवल रबी हो या खरीफ हो, इसको केवल कर्मकांड नहीं रहने दिया, हमने उसको उद्देश्यपूर्ण बनाया। आप जानते हैं कि कृषि, अनाज, फल, सब्जियां, ये भारत जैसे विशाल देश के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। उत्पादन में जो वृद्धि हुई है वो अभूतपूर्व है। कृषि विकास दर में 50% की वृद्धि हुई है, लेकिन काम करने की जरूरत और है। अब रबी की जब हम बात करते हैं तो खरीफ, जिसमें बहुत चिंता थी मन में, अब क्लाइमेट चेंज के जो प्रभाव है, एक तरफ महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, तेलंगाना से, बड़े हिस्सों में सूखे का संकट है, क्लाइमेट चेंज के असर साफ नजर आ रहे हैं। अलनीनो के प्रभाव के कारण हम चिंतित थे, लेकिन मैं इस बात के लिए बधाई दूंगा, लगभग खरीफ की बुआई का लक्ष्य हमने पूरा कर लिया। हाँ, फसलें जरूर प्रभावित है कई जगह, जहाँ संकट है वहां मिलकर मुकाबला करना है और रबी की तैयारी भी करनी है। और रबी की तैयारी की जो कुछ प्रमुख चीजें हैं, कुछ जगह बारिश बहुत अच्छी हुई है, कुछ जगह एवरेज से कम है, लेकिन पानी बहुत इतना गिरता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बोनी पर। उन राज्यों के मित्रों को भी मेरा कहना है कि आप रबी की प्लानिंग पूरे साइंटिफिक तरीके से कीजिए, और जिन हिस्सों में देश के कम पानी है वहां कितना पानी की उपलब्धता है, नमी कितनी है, सिंचाई के पानी के लिए अभी से प्रबंध करें। मुझे लगता है कि इस समय जल बजट बनाने की जरूरत है, जहाँ पानी सीमित है उस पानी का उपयोग कैसे करें, उस पानी को देखते हुए कौन सी फसलों की हम सलाह दें, प्लानिंग करें। और तैयारियों में मैं समझता हूँ कि देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब हम रबी की बुआई के मुहाने पे खड़े हैं एकदम। दूसरे जो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए पानी के बाद, मिट्टी में हम नमी कैसे बचाएं और समय पर बुआई कैसे करें। और मैं ये मानता हूँ कि तैयारी के लिए सबसे जरूरी चीज़ है बीज, और बीज की तैयारी उपयुक्त बीज, उपयुक्त किस्म, पानी को देखते हुए। जहाँ भरपूर पानी है वहाँ आप देखिए कौन सी किस्म, जहाँ पानी की कमी है वहाँ कौन सी किस्म का बीज आपको चाहिए। और इसके बाद आप अभी से ये तैयारी भी करिए, अब हमने दलहन में तय किया है कि तुअर, मसूर, उड़द पूरी खरीदेंगे, लेकिन कई जगह खरीद की तैयारी ढंग से होती नहीं है, इसलिए तैयारी परफेक्ट और पूरी करें।
0: FM Rainbow 102.6 पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम फार्म टू सिटी, जिसके प्रायोजक है भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। और इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ आपका किसान दोस्त ओबी राठौर। किचन गार्डनिंग को समर्पित इस कार्यक्रम

0: में आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसी ही शौक शौक में घर के भीतर एक बगीचा लगाने वाली टेरेस गार्डनिंग की शौकीन दीपा जी से, जिनकी दीपा की बगिया में आइए चलें और देखें वहां उन्होंने क्या कुछ उगाया हुआ है। नमस्कार दीपा जी, पहले तो अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, किस शहर से हैं, क्या नाम है, क्या करती हैं?
1: नमस्कार सर, मेरा नाम है दीपा और मैं दिल्ली में ही रहती हूँ। शादीशुदा हूँ, दो छोटे बच्चे हैं मेरे और मैं घर की छत पर ही थोड़ी बहुत सब्जियां उगा लेती हूँ, थोड़े फूल पत्ते लगा लेती हूँ। मैं खुद करती थी, मेरा फोन बुक फुल रहता था। मतलब लोगों को सेल्फी लेने का शौक होता है लेकिन मुझे अपने पेड़ पौधों की फोटो लेने का शौक था, तो मेरा पूरा फोन बुक फुल हो जाता था। तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि किसी पेज पर या किसी पे डाल देती हूँ। वहां डालने लगी तो, क्योंकि मैंने प्राइमरी टीचर की पढ़ाई करी हुई है तो पढ़ाना या समझाना अच्छा लगता है, तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत वीडियोस रील्स वगैरह डालने लग गई। थोड़ा बहुत लोगों का रिस्पांस वगैरह आने लगा, कहते ना सामने से रिस्पांस आता तो अच्छा लगता है, तो इसी तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई थी।
0: दीपा जी, फिर ये बगिया कैसे लगी, ये प्यारी सी टेरेस गार्डनिंग का की शुरुआत कैसे हुई?
1: सर, मैं बताना चाहूंगी कि मैं पहाड़ों से हूँ, मैं बेसिकली उत्तराखंड से हूँ, तो हमारी ब्लड लाइन में ही है नेचर प्रकृति। तो जब पहाड़ का आदमी शहरों में आ जाता है लेकिन उससे पहाड़ नहीं छूटता है, तो मेरी मम्मी अगल बगल के जो खाली प्लॉट थे तब उनमें सब्जियां उगाया करती थी। तो बहुत कम उम्र में मेरी मम्मी, मतलब हम बहुत छोटे थे, कैंसर की वजह से मेरी मम्मी चली गई बहुत जल्दी, हमारे सर से साया हट गया माँ का। तो जो जो चीजें माँ को पसंद थी उन्हें मैं करके उन चीजों में अपनी माँ को तलाशने लगी और यहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी।
0: तो माँ को देखकर आपने ये सब बगिया का काम शुरू किया?
1: हाँ, जो मतलब मेरी मम्मी किचन गार्डनिंग करती थी तो उनको देख देख के मैंने शुरू करा। तो जब भी मुझे स्ट्रेस होता था या माँ की याद आती थी या कोई भी ऐसा पल आता था तो मैं जाके उसी किचन गार्डन में बैठ जाती थी, घंटों तक बैठा रहा करती थी। मुझे इतना स्ट्रेस रिलीफ होता था, बहुत आराम मिलता था। मैं किसी से ना बात करती थी, तब मैं इतनी ज्यादा बोलती भी नहीं थी, तो मैं सिर्फ उस खाली जगह पे जाके बैठ जाती थी, सिर्फ उन हरी सब्जियां हो रही होती थी उनके बीच में बैठी ही रहती थी कई घंटों तक और अपने आप ही मेरा स्ट्रेस चला जाता था। तो वहां से मेरा लगाव जुड़ता गया। मतलब मैं बोलती भी उन्हीं से हूँ, अच्छी बुरी बात भी सब कुछ अपने पौधों को ही बताती हूँ।
0: अच्छा, आप सब्जी ही उगाती हैं या कुछ फल फूल या कुछ और औषधीय पौधे?
1: हाँ जी, जब मैंने अपने छत से टेरेस गार्डनिंग फिर शुरू करी है तो मैंने पहले पहले सिर्फ फूलों को ही लगाना शुरू करा था। मेरी एक ये है कि मैं पौधे लगाती हूँ अपनी खुशी के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए मैं गार्डनिंग नहीं करती हूँ। तो मुझे शौक है बीज से पौधे लगाना या कटिंग से लगाना या किसी के पास एक्स्ट्रा प्लांट्स है उनसे मांग के ले आना, मुझे कोई शर्म नहीं है। बकायदा इसके कि मैं नर्सरी जाऊं, महंगे महंगे पौधों को खरीद के लेके आऊं और फिर कहूं कि मैं गार्डनर हूं। हर किसी का अपना नजरिया होता है, मेरा ये नजरिया है। तो फिर मैं इसी तरह से करती रही। उसके बाद धीरे धीरे थोड़े बहुत, क्योंकि मम्मी बताया किचन गार्डनिंग करती थी तो हमारे घर में राई पालक वगैरह होती रहती थी, पुदीना वगैरह, वहीं से शुरुआत होती रही। तो धीरे धीरे पौधे बढ़ते गए, पर ये है कि इतने मैंने बहुत ज्यादा भी स्पेस नहीं भर लिया क्योंकि हमारे पास लिमिटेड स्पेस होता है। छत पे भी एक लिमिट तक हम वजन रख सकते हैं, थोड़ा स्पेस हमें बच्चों के खेलने के लिए और जो हमारे हाउस होल्ड के रोज के काम है उसके लिए भी स्पेस चाहिए होता है। तो बहुत लोग जो छत को भर देते हैं, मैं उनको गलत नहीं बताती, लेकिन मुझे इस तरह का शौक है कि जो मैंने बगिया बनाई है मैं उसको इंजॉय भी कर सकूं, वहां बैठ सकूं, शाम की चाय पी सकूं, उन फूलों को निहार सकूं, सब्जियों को देख सकूं, हार्वेस्टिंग का मजा ले सकूं, मेरे बच्चे मेरा फैमिली भी उस चीज में इंजॉय करें, तो मेरा ये नजरिया है।
0: वाह, बड़ा अच्छा कर रही हैं दीपा जी। अच्छा, आपको देखकर आपके आस पड़ोस में कोई आपसे इंस्पायर हुआ है?
1: हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि मैं पौधे बीज जब मैं दूसरों से मांगने में शर्म नहीं करती तो मैं लोगों को भी बिन मांगे दे देती हूँ, उनको फूल देना, पत्ती देना। यहाँ तक कि मेरे गार्डन में अगर कोई साग सब्जी हो रही है तो एक्स्ट्रा है तो मैं उसको भी बांटती हूँ अपने पड़ोसियों में। और कल की ही बात है, मेरे बैक साइड में एक नेबर है, उन्होंने मुझे, मैं छत पे, क्योंकि अब सर्दी की सब्जियों की तैयारी शुरू होने लग गई है तो हम टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो हमें बहुत हिसाब से चलना पड़ता है, मतलब सीजन के हिसाब से हमें अपनी सब्जियों को भी चेंज करना होता है, सही टाइम पे भी सब्जियां लगानी है नहीं तो हार्वेस्टिंग में जर्मिनेशन में लेट हो जाता है। तो मैं अपने छत में सर्दियों की तैयारी कर रही थी, उन्होंने वहां से मुझे आवाज दी। तो मैंने जब सुना, उन्होंने कहा मैं परसों भी तुम्हें आवाज देने वाली थी लेकिन तुम चली गई थी। तो उन्होंने, मैंने कुछ दिन पहले उन्हें तोरी के बीज दिए थे तो उनका तोरी का फल जो उन्होंने हार्वेस्ट करा था वो उन्होंने मुझे वहीं से दिखाया कि ये देखो, और उनके साथ साथ वो खुशी मुझे भी हुई। उन्होंने ये भी बताया कि मैं दाई बाई से और लोगों से भी मांगा था बीज पर उनको नहीं हुआ था, पर तुम्हारा दिया हुआ देखो कैसे हो गया। तो मैंने उन्हें यही कहा, इसकी सब्जी बना के भी मुझे बताना कि कैसी लगी।
0: ये तो हम देख रहे हैं कि किचन गार्डनिंग का शौक दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो आप अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुंची हैं और जो हमारे श्रोता हैं जो आप ही की तरह किचन गार्डनिंग करते हैं या करना चाहते हैं, उनको कुछ स्पेशली कहना चाहेंगी?
1: मैं तो यही कहना चाहूंगी कि अगर आपके पास थोड़ा सा भी स्पेस है, मैं तो ये कहूंगी 2 फुट का भी स्पेस है ना,

0: उसको वेस्ट मत करिए। हाँ आपको फूल लगाने का शौक है वो लगाइए, सब्जी लगाने का शौक है वो लगाइए। हाँ गार्डनिंग आपको अपने हिसाब से करनी है, दूसरे के हिसाब से नहीं, कि किसी के वहाँ पे रोज होता है। टाइम टाइम पे पौधों की भी चीजें बदलती रहती है। आजकल जैसे अडेनियम ट्रेंड में चल रहा है, तो जरूरी नहीं है हर कोई अडेनियम लगा सके। तो मैं सबको ये एडवाइस करूंगी, अपने क्लाइमेट के, अपनी सहूलियतों के हिसाब से आपको गार्डनिंग करनी चाहिए, ना कि देखा देखी। तो अगर आपको कोई भी हल्के फुल्के फूल लगाने हैं वो लगाइए, पेड़ पौधे लगाइए, साग सब्जी लगाइए। पालक, चौलाई, पुदीना ऐसी चीजें होती है जो कहीं भी लग जाती है, छोटे से गमलों में भी लग जाती है। तो अगर आपको स्ट्रेस दूर रखना है, खुश रहना, एक थेरेपी चाहिए ना फ्री की, तो आपको दो पौधों से, दो गमलों से शुरुआत करनी चाहिए, बाकी तो फिर अपने आप ही होता जाएगा।
1: आपने बताया कि आपने पौधों से आप बात करती हैं, कुछ गाना वाना भी गाती हैं उनके लिए?
0: मैं तो उन्हें डांट भी लगाती हूँ। मैं तो कई बार अपने फेसबुक वगैरह पे शेयर करती रहती हूँ कि मैं जब भी मैं अपने छत पे आती हूँ तो मुझे यही होता है तुम ही हो, तुम ही हो, के अलावा मेरे पास कोई नहीं। क्योंकि मेरे लिए सबसे बेस्ट फ्रेंड जो आपको सिर्फ देता है, लेता सिर्फ एक हल्की फुल्की देखभाल है, वो भी आप देना चाहें तो। वरना पौधे को नेचर से बढ़िया कोई नहीं संभाल सकता, चाहे आप कितना ही कुछ कर ले। नेचर होगा, क्लाइमेट होगा, मौसम होगा, धूप होगा, तो चीजें अपने आप होगी। वरना आप कुछ भी खाद डाल लो, कोई पौधे नहीं बढ़ते हैं। तो वो अपना ध्यान रख, ना भी कुछ जानता है, सब कुछ जानता है, बस आपने प्यार देना है, आप उनके साथ बैठ के वक्त बिताइए।
1: बहुत बहुत शुक्रिया दीपा जी हमसे बात करने के लिए, और आपकी बगिया यूं ही चहकती महकती मुस्कुराती खिली खिली रहे, यही हमारी शुभकामना है। थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस। और आप चाहते हैं कि दीपा जी की तरह आपकी बगिया भी यहाँ मशहूर हो जाए, तो उसके बारे में हमें farmtocitydelhi@gmail.com पर अपने बारे में बताइए और हम बड़ी खुशी के साथ आप तक पहुंचेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब तो यही है कि चलना होगा, ताकि अगले संडे फिर मिलें। आज के फार्म टू सिटी के अंक को यहीं समाप्त करते हैं। इजाजत दीजिए अपने मित्र किसान ओपी राठौर को। FM रेनबो पर अगले संडे शाम 5:30 बजे फिर आएंगे हम लेकर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम फार्म टू सिटी, एक ऐसा प्रोग्राम जो डेडिकेटेड है किचन गार्डनर्स को, बागवानी के शौकीनों को। अगले हफ्ते तक के लिए नमस्ते।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

नमस्कार, शाम के 6 बज रहे हैं। लीजिए सुनिए अब तक के मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि विकसित भारत की यात्रा भारत के संस्थानों, लघु और मध्यम उद्यमों तथा नवाचार की ताकत पर आधारित होगी। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार आज समाप्त हो जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

कल से गुजरात में 2 दिन का चिंतन शिविर आयोजित करेगा। इसमें देश में राजमार्ग के विकास और परियोजनाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को रूपांतरित करने के उद्देश्य से शुरू की गई पीएम सेतु योजना ने 1 वर्ष पूरा कर लिया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने दिल्ली में सड़कों पर धूल और सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण में 35 किलोमीटर लंबे 25 सड़क मार्गों की जांच की गई। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। इस मामले में पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी को भी तलब किया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा और सुब्रमण्य शिवा को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। एशिया खेल 2026 का जापान के नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है। भारत ने खेलों में 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ तालिका में 4th स्थान हासिल किया और उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने एशियाई खेलों में 4th स्थान हासिल करने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका मैसेज मसाला मिक्स में। भगवती है आपके साथ। अक्टूबर का पहला संडे है। कैसे बिता रहे हैं, इसे क्या कर रहे हैं, कैसा चल रहा है? एक टाइम था ना जब संडे का मतलब था देर से उठना, घर में पकवानों की खुशबू, पूरा परिवार साथ टीवी के सामने बैठता था, कुछ फिक्स शोज थे और बस आराम। तो थोड़ी देर के लिए वापस भी जाया जा सकता है ना वहाँ पर, या फिर बताया जा सकता है कि अभी आपका संडे कैसा है। तो थोड़ी देर के लिए वापस जा सकते हैं उस संडे में जो सच में संडे हुआ करता था। तो बताइए आपके घर का संडे कैसा हुआ करता था, या फिर आजकल कैसा होता है आपका संडे? कोई मीठी याद या संडे से जुड़ी कोई भी बात शेयर कीजिए हमारे साथ। 9868107070 है नंबर, 9868107070 इज़ द नंबर फॉर व्हाट्सएप मैसेजेस।

गाजियाबाद से सौरभ अनेजा कहते हैं गुड इवनिंग दोस्त, वेलकम बैक, गुड इवनिंग जी, स्वागत है आपका भी। बबलू कश्यप, जॉनी कश्यप और विपिन कश्यप कहते हैं हैप्पी संडे आपको भी जी, हैप्पी वाला संडे। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास है, ओपन होने को तैयार नहीं हो रहा था, चलिए खुल गया मैसेज, विंडो खुल गई है। तो यशवंत आठमुरे धाराशिव महाराष्ट्र से कहते हैं संडे के दिन हम तालाब में डूबने को जाते हैं, डुबकी लगाने जाते हैं या तैरने जाते हैं। पंकज अमरावती महाराष्ट्र से कहते हैं गुड इवनिंग जी, कहते हैं कि मेरा पहले का संडे मतलब दिन भर छुट्टी का दिन, ना कोई पढ़ाई की टेंशन और ना स्कूल जाने की फिक्र। रविवार के दिन रंगोली, शक्तिमान, कृष्णा, चंद्रकांता और मोगली धारावाहिक देखना पसंद था, वो भी पड़ोस के घर पर टीवी पर देखना। क्या बात है। और ये बहुत सारे लोगों के लिए ना मतलब कॉमन होगा, बहुत सारे लोगों का संडे जो है पहले ऐसा ही इसी तरह से गुजरता होगा, ऐसा ही कुछ गुजरता होगा, है ना। तो आपके बचपन में संडे की सुबह किस चीज से शुरू होती थी? संडे को आपके घर में क्या क्या स्पेशल बनता था? आपके घर का संडे ब्रेकफास्ट पराठे पूरी सब्जी या कुछ और? संडे को टीवी का रिमोट किसके पास रहता था? बचपन का जो है आपके फेवरेट संडे का जो प्रोग्राम था संडे वाला, वो क्या होता था, बताइए ना हमें।

वीरेंद्र घटोल अकोला महाराष्ट्र से कहते हैं, मेरा संडे जो है आज खेत में गया है, सोयाबीन काटने गया था सुबह 5:30 बजे से और 1:30 बजे तक जो है उन्होंने पिक्चर्स भी भेजी हैं और जो पिक्स भेजी हैं खेत की, मुझे लगता है एक पिक में सोयाबीन तो नहीं है, मतलब नींबू जैसे दिख रहे हैं कुछ। बताइएगा हमें क्या है और संडे आपका भी अपनी तरह से जो है मज़े में गुजरा है, नहीं? अनिल शर्मा सरिता विहार से कहते हैं, हमारा संडे क्या हर दिन एक जैसा होता है, क्योंकि रिटायर्ड है, घर में ही रहना होता है। पुराने जमाने की बात की जाए तो संडे को इतवार बोलते थे, जी हाँ, रविवार भी बोल लेते थे कभी कभी, और दिन भर खेलने में गुजर जाता था। उस वक्त मोबाइल टेलीफोन तक नहीं था, इसका फायदा हर संडे मस्त और घर में मदद किया करते थे। अनिल शर्मा है सरिता विहार से। यश शिंदे मुंबई से कह रहे हैं और बहुत लंबा चौड़ा सा इन्होंने मैसेज भेजा है, कहते हैं, आज का संडे तो बस रील्स की दुनिया में खो जाता है, आंख खुलती है दोपहर को और शाम होते ही मंडे का खौफ आ जाता है, अलार्म तो बंद रहता है पर दिमाग कहाँ सोता है, आज का संडे तो बस मेल चेक करने में रोता है, हाथ में मोबाइल है पर दिल में वो बात नहीं, अपनों के बीच होकर भी अब वो मुलाकात नहीं, शक्तिमान का वो इंतज़ार और रंगोली की वो धुन, 90s का वो संडे था जिसमें बसता था सारा सुकून, शक्तिमान मोगली और रामायण की वो बात थी, पूरे मोहल्ले का एक ही टीवी, क्या गजब की वो रात थी, साइकिल के टायर और गलियों के वो खेल पुराने थे, 90s के संडे के सच में क्या हसीन जमाने थे, बिना घड़ी के भी वक्त बहुत मिल जाता था, 1 रुपए की कुल्फी से पूरा संडे खिल जाता था, वो इतवार का दिन नहीं जैसे खुशियों का मेला था, ना कोई डिप्रेशन था तब, ना कोई अकेला था, क्या बात है, बहुत खूब। जिन लोगों ने अभी तक मैसेज नहीं किया ना, बताइए क्या आपके घर में संडे की दोपहर की नींद कंपलसरी थी? संडे को मिलने वाला कौन सा ट्रीट था जिसका आप पूरे हफ्ते इंतजार करते थे? क्या संडे को आपके घर में रिश्तेदारों के यहाँ आना जाना होता था? किसके घर अक्सर जाया करते थे? बचपन के संडे की कौन सी छोटी सी बात है जो आज भी आप, जिसे याद करके आप जो है मुस्कुरा देते हैं? और आपके घर में संडे का सबसे बड़ा काम क्या होता था? सफाई, शॉपिंग या आराम?

आंची शर्मा है हसनापुर मेरठ यूपी से, कह रही हैं कि जब बात बीते टाइम के संडे की आती है तो उस टाइम स्मार्टफोन तो होता नहीं था, तो उस दिन जो है देर से उठते थे और फिर अगले दिन के लिए स्कूल का वर्क कंप्लीट करना, कभी कभी दोस्त के घर भी चले जाते थे क्वेश्चंस डिस्कस करने, या बस उस दिन जी भर कर खेलते थे इंडोर गेम्स जैसे लूडो अपनी बहन अपने भाई बहन के साथ, बस यही करते थे और इसी का तो अपना लुत्फ़ताना। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास है नेहा का दिल्ली से, कह रही हैं कि आजकल का संडे लिमिटेड हो गया है, अब सब किसी ने जो है बाहर अपनी एक दुनिया बना ली है, कई हफ्ते पहले से ही प्लान बन जाता है कि संडे दोस्तों के साथ यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, अब फैमिली टाइम कम हो गया है, अब फ्रेंड्स टाइम ने जगह ले ली है। मेरा संडे वैसे सूजी के हलवे से हमेशा जो है हर संडे

रंगोली स्टार्ट होता था, सब भाई बहन माँ पा एक साथ खाते थे, अब सब अपनी अपनी लाइफ में जॉब के लिए अलग अलग सिटी में चले गए हैं। क्या करें, मतलब दिस इज़ व्हाट लाइफ इज, जिंदगी ऐसे ही होती है ना। किशन वंजनी, नीलम स्वाति और किशु रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से कहते हैं कि संडे के दिन हम पड़ोसी के घर में जो है फिल्म देखने जाया करते थे टीवी पर उस समय, और उस समय में जो है शनिवार का दिन आधी फिल्म आती थी और उसका शेष भाग रविवार को शाम को आता था। देहरादून से आलोक पवार और मिनी कह रहे हैं कि पहले संडे में हम सभी सुबह दूरदर्शन में रंगोली देखने के लिए बेताब रहते थे। मतलब रंगोली लगता है कि सभी का जो है फेवरेट प्रोग्राम था। तब साथ बैठकर पुराने गानों का आनंद लिया करते थे दोपहर में फिल्म। अब सोशल मीडिया ने सब बदल दिया, हर किसी के हाथ में मोबाइल है और सब जो है बस अपने आप में मशगूल हैं। तो मतलब समय बदलता है, चीज़ें बदलती हैं, और जो पुरानी चीज़ें होती हैं ना, मतलब उनकी अपनी एक जगह होती है और उनकी मेमोरीज हमारे साथ रहती हैं। तो पहले संडे कैसा होता था, आज कैसा है, क्या बदल गया है, बताइए।

से सर्दियों में मूली के पराठे, गोभी के पराठे और बथुए के पराठे, गर्मियों में मूंग की दाल का हलवा और मखनी ब्रेड होती थी और बड़ा आनंद आता था। बचपन के दिन बहुत याद आते हैं। हम दिल से माता पिता का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने हमें इतने अच्छे तरीके से संभाला और परवरिश की। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अब हम उनका ध्यान रखें और उनकी अच्छी देखभाल करें। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास है नीता का, अमरावती से। कहती हैं कि वाह क्या बात है, मैं तो मेरी नानी के घर पढ़ने के लिए थी तो संडे का दिन कब आता उसका हम इंतज़ार करते थे, क्योंकि उस दिन महाभारत रहता था, घर पर टीवी नहीं था, किसी के घर देखने जाना पड़ता था, थोड़ा भी लेट होते तो प्रोग्राम शुरू हो गया होता तो वो दरवाज़ा बंद कर देते थे, इसलिए हम पहले ही उनके घर जाके बैठ जाते थे। वो भी क्या दिन थे। और बाज़ार का भी दिन रहता था ही, हमारी नानी मस्त कच्चा चिवड़ा बनाती थी, लाजवाब। गजब जी। ऑन एवरी संडे पुलाव इन लंच होता था, जो विंटर्स में टेरेस पर बैठकर खाते थे। 80s 90s का टाइम था। शैलजा नीमराना से कह रही हैं। बताइए आपके घर में संडे का मतलब छुट्टी था या मम्मी की सफाई का दिन? संडे को सबसे पहले कौन उठाता था, मम्मी पापा या पड़ोसी की आवाज़? और संडे से जुड़ी कोई भी बात जो आपको भी याद आ रही हो, ज़रूरी नहीं कि पुरानी हो, मतलब इस संडे की, पिछले संडे की, उसके पिछले संडे की भी हो सकती है, शेयर कीजिए हमारे साथ। 9868107070 है नंबर, 9868107070 इज़ द नंबर। मैसेज मसाला मिक्स सुन रहे हैं आप और मैं हूं भगवती।

यह आपका अपना आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक। सुशील कौशिक पलवल हरियाणा से कहते हैं कि मैं एफएम रेनबो 10 साल से सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। हमें भी ये सुनकर ना बहुत अच्छा लगता है, ये जानकर बहुत अच्छा लगता है, और जब आप मैसेज करते हैं तो और भी अच्छा लगता है। कहते हैं मेरा संडे का

0: दिन क्रिकेट खेलने में जाता था, अब तो काम बहुत होता है ना, कुछ रेस्ट करने कुछ कुछ रेस्ट करने में निकल जाता है। काम भी ज़रूरी है, रेस्ट भी ज़रूरी है, पर संडे भी तो ज़रूरी है ना। ये हैं सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांतिनगर सोनीपत से, कह रहे हैं कि हमारे बचपन के रविवार और आज के रविवार में पाताल आकाश का अंतर है। बचपन में बहुत दूर जाते थे रविवार दूरदर्शन पर जो है फिल्म देखने के लिए। रविवार का दिन बचपन में हमारे लिए इसलिए खास था क्योंकि रविवार को दूरदर्शन पर सुबह 9 बजे रामायण धारावाहिक आता था, जिससे देखने हम खेतों से वापस पैदल घर आते थे। और रविवार को ही दिन में आकाशवाणी इंदौर से हमारा पसंदीदा फरमाइशी फिल्मी गीतों का साप्ताहिक कार्यक्रम मनभावन आता था, जिसमें हमारी चिट्ठी भी शामिल होती थी। भेरूलाल वाकतरिया धाकड़ हैं उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से।
1: ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सारी जिंदगी एक ही काम करते रहते हैं और दूसरे जो एक ही जिंदगी में सारे काम कर देते हैं। ये मैं नहीं, ये वो दोनों कहते थे। और कहते क्या थे, करते थे।

0: प्रवीण चौहान खरगोन मध्य प्रदेश से कहते हैं, मुझे अच्छे से याद है संडे को मैं सोया रहता था और मेरी मम्मी टीवी में गानों वाले रंगोली प्रोग्राम को देखती थी तो उसके गाने की आवाज़ मेरे कानों में गूंजती रहती थी और फिर मैं भी आँख खोलकर देखने लग जाता था। एक दूसरे के घरों में जाकर खूब खेलते थे। घर में संडे को मम्मी खाने में कुछ ना कुछ स्पेशल ज़रूर बनाती थी, कभी मीठे पकवान तो कभी चटपटी दाल बाटी या फिर सीजनल स्पेशल चीज़। दोपहर को घर में इंडोर गेम खेलना, ड्राइंग पेंटिंग करना, फिर शाम होते ही सभी को इकट्ठा करना खेलने के लिए जो है, और फिर रात को टीवी देखना और होमवर्क खत्म करके आराम से सो जाना। अच्छा संडे है ना, मतलब मोर और लेस जो है ज़्यादातर लोगों की संडे की कहानी जो है मिलती जुलती सी है। गांधी चौक बाड़मेर राज से बबलेश पवार कहते हैं, आया संडे लाया छुट्टी, कामकाज से हो गई कट्टी, आज न कोई जल्दी उठना नहीं स्कूल दफ्तर भागना, सूरज दादा देर से जागे, आलस बाबू आगे आगे, गर्म चाय और पकौड़े खाएं, चलो आज हम मौज मनाएं, दिन भर खेलें दिन भर सोएं, बीते दिनों की थकान को खोएं, हंसते गाते शाम हो जाए, ऐसा प्यारा संडे आए, काम को बोलो बाय बाय, आज मस्ती का है अपना राज, हंसो हंसाओ खुशी मनाओ, हैप्पी संडे, सब चिल्लाओ।
1: है चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए तो जिंदगी में रंग भर दे,
2: मेरी जैसी मेरी अपनी पताका,
1: पताका चाय गजब का स्वाद।
3: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। Good morning, Delhi NCR. Always wherever you are. 102.6 आपके लिए।
0: भुवनेश अशोक विहार दिल्ली से कहते हैं कि जब मैं छोटा था तो संडे जो है हमारा हमेशा स्टार्ट होता था, मैं और मेरी बहन जो है साथ में मिलकर कार्टून्स देखते थे टीवी पर और बहुत मज़ा आता था और वो मज़ा दुगना हो जाता था अगर संडे के दिन जो है कोई त्यौहार पड़ता था तो।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान अरजान और अब्बासी कहते हैं कि संडे मौज मस्ती का हुआ करता था पहले, अब तो घर में भी दफ्तर बना रहे।

तो आप बताइए, आपके संडे की सबसे खूबसूरत याद क्या है? किसके घर में संडे का मतलब था नहाना थोड़ा लेट, खाना थोड़ा स्पेशल और सोना थोड़ा ज्यादा? अगर बचपन का एक संडे वापस मिल जाए ना, तो आप उसे किसके साथ बिताना चाहेंगे? 9868107070 है नंबर, 9868107070 इज द नंबर जिस पर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। प्रोग्राम है मैसेज मसाला मिक्स, मैं हूँ भगवती। ये है आपका अपना आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक। फ्रीक्वेंसी वही 102.6 मेगाहर्ट्ज़।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, आज की धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
5: बबलू कश्यप मंगलपुरी दिल्ली से कहते हैं कि बचपन में संडे के दिन पड़ोसी के घर टीवी में रामायण देखने का मज़ा ही कुछ अलग था, लेकिन ये मैसेज ना आपने

0: नहीं कि आपका मैसेज छोड़ दिया जाएगा अनटिल अनलेस, मतलब लास्ट में टाइम जो है ख़त्म हो गया, और टाइम चला जाएगा अगर आप इसी तरह बार बार एक ही मैसेज को कई कई बार भेजते रहेंगे। तो ऐसा ही एक और मैसेज है, ये जो है दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैयालाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार कहते हैं कि रविवार का दिन बहुत अच्छा लग रहा है। कभी ज़माना होता था जब रविवार का जो है, जब हम महाभारत देखने जाते थे, लोग जो है दूसरों के घरों में रामायण देखते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। नवाब अहमद भारती और बली मारान से कहते हैं कि हर संडे की दोपहर को हमारा मैच होता था पतंगबाजी का, हम बहुत दूर दूर तक पतंग उड़ाने जाया करते थे, जो अब जो है नहीं होता है, जैसा कि अब हम नहीं कर पाते हैं। तो आपके लिए संडे का मतलब था आराम, रिश्तेदार, खाना, टीवी या शरारत? क्या आपके संडे में भी कोई ऐसी आवाज़ थी जो आज सुनाई दे तो बचपन याद आ जाए? और अगर आपको अपने बचपन का सिर्फ एक संडे वापस जीने का मौका मिले तो आप उस दिन को किसके साथ और कैसे बिताएंगे?
1: What do you think?

गुरु धाकर उज्जैन जिले के बेड़ावन गांव से कहते हैं, हमारा रविवार तो कभी रविवार हुआ ही नहीं। बचपन में हमें घर वाले भैंस चराने भेज देते थे और अब खाने पीने की दुकान है तो हम दूसरों का संडे बनाते हैं। देखिए, अब दूसरों का संडे बना रहे हैं ना, मतलब कुछ लोगों का संडे सिर्फ आपकी वजह से यादगार बन रहा है। वो भी कहते होंगे ना कि हम संडे को जो है इनकी दुकान पर बिताते हैं, खाने जाते हैं। गुनौर से आदिल कमर तस्दीक अली मुजफ्फर अली कहते हैं, हमारी रविवार को छुट्टी होती थी तो हम बाग नदी पर नहाने के लिए जाते थे। और ये हैं सीमा राजेश भल्ला एडवोकेट कंकड़खेड़ा मेरठ से हैं, कह रहे हैं संडे आज भी बच्चों के लिए फंडे होता है, आज भी युवाओं के लिए कंपटीशन का एग्ज़ाम देने का दिन होता है, नए शादीशुदा के लिए घूमने का दिन होता है, बाकी का रिलैक्स का दिन होता है। आपने ये नहीं बताया कि आपके लिए संडे कैसा होता है। सुफिया नवाब जो है बली मारान से कहते हैं, पहले संडे के दिन हम सब इकट्ठे होकर खेला करते थे घर में, लेकिन अब मोबाइल आ गया है, फुर्सत ही नहीं मिलती है। बिल्कुल, मोबाइल ने ऐसा बिजी तो सबको कर ही दिया है ना। और ये मैसेज है नरेंद्र सोनी का देवीगढ़ पटियाला से, कहते हैं कि हमारे बचपन का संडे रामायण आने वाली होती थी तो जिन बच्चों के घर में टीवी नहीं था उनसे टिकट के तौर पर एक एक मेलोडी लिया करते थे। अच्छा जी, और इन्होंने साथ में कहा है कि जो है कुछ समय से मेरे मैसेजेस जो है किसी भी प्रोग्राम में शामिल नहीं किए जा रहे। देखिए, मैंने किया ना शामिल, और जब आपने मैसेज पहले भेजा था ना तो भी एक बार इस पर मेरी नज़र पड़ी थी, फिर जाने यहाँ के कहाँ खो गया, मे बी आप शायद दोबारा टाइप करने लगे या क्या हुआ नहीं पता मैं, लेकिन जब भी आपका मैसेज आता है ना तो शामिल तो ज़रूर किया जाता है।

शिवांगी बनारस से कहती हैं कि संडेज को मम्मी के हाथ के बने काले चने की घुगनी और आलू के पराठे खाने को मिलते थे, वो स्वाद आज के किसी रेस्टोरेंट में नहीं मिल पाता। कई बार पूरा परिवार घूमने जाया करता था, ढेर सारी बातें और कभी ना ख़त्म होने वाली जो है खुशी। वो तो आपने सच कहा कि जो मम्मी के हाथ के खाने का जो स्वाद होता है ना, वो कहीं भी किसी के भी हाथ में या किसी भी अच्छे से रेस्टोरेंट के खाने में नहीं मिल पाता है। और परिवार के साथ घूमने की जो अपनी खुशी होती है, जो अपनी मस्ती होती है, अपना मज़ा होता है, उसकी बात ही अलग होती है। कहते हैं अब जॉब के सिलसिले में हर कोई, चाहे परिवार वाले या बचपन के दोस्त ही, अलग अलग शहरों में हैं और मॉडर्न दोस्ती में वो बात नहीं, एक कमी है जो हमेशा खलती है। पहले बातें दिल से होती थी, अब कई बार महसूस होता है कि बातें शुरू होने के पीछे कोई ना कोई एजेंडा होता है, सिंप्लिसिटी नहीं रह गई है। आप सच भी कह रही हो सकती हैं, पर जो है थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाइए ना प्लीज़। नवलुवरक फ्रॉम गांव मलपड़, ज़िला उत्तर गोवा से कहते हैं कि पहले के ज़माने की संडे की बात ही कुछ और है, अब सब डिजिटल हो गया है, सभी प्लेलिस्ट अच्छा ओके कह रहे हैं कि प्लेलिस्ट वाकई अच्छी है। थैंक यू जी। शायद हम वो पुराने संडे वापस नहीं ला सकते, लेकिन शायद हम अपने आज में उनका थोड़ा सा हिस्सा वापस ला सकते हैं। तो इस संडे थोड़ी देर फ़ोन साइड में रखिए, परिवार के साथ बैठिए, साथ खाना खाइए, किसी पुराने दोस्त को कॉल करके देख लीजिए, और अगर बच्चे कहें मुझे हमें बाहर जाना है तो उनके साथ हो आइए ना बाहर, क्योंकि शायद कुछ साल बाद उन्हें भी यही संडे याद आएगा और वो भी कहेंगे वो संडे जो सच में संडे होता था। इन्जॉय कीजिए अपनी संडे की शाम, और समय है आपकी दोस्त भगवती ले आपसे अनुमति, घंटे भर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। सुशांत मल्होत्रा स्टूडियो में है अगले शो के साथ।

0: All right, we'll be proceeding further ahead in just a while from now, of course. But before we proceed further ahead, like I said, it's time for a short continuing break. We move to the second half of the show. That is 32 and a half minutes past 7 p.m. Time for a short break. I'll be right back after these messages. Do not, and I repeat that, do not touch the dial. I'll be right back after these messages.
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
3: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

नमस्कार। रात के 8 बज रहे हैं, लीजिए सुनिए अब तक के मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि विकसित भारत की यात्रा भारत के संस्थानों, लघु और मध्यम उद्यमों तथा नवाचार की ताकत पर आधारित होगी। भारत और कनाडा कल से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का 5वां दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को इस वर्ष के आखिर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड से राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव के लिए दिनेश आर्य को पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। वहीं पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव के लिए रुक्मिणी मलिक को उम्मीदवार घोषित किया है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार आज समाप्त हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने 23 अक्टूबर को होने वाले महाराष्ट्र विधान परिषद चुनावों के लिए 3 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। ये चुनाव स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की 5 सीटों के लिए होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि भदोही जिले का नाम अब संत रविदास नगर भदोही होगा। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने दिल्ली में सड़कों पर धूल और सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। इस मामले में पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी को भी तलब किया है। ओपेक प्लस के 7 देशों सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान ने नवंबर में भी सितंबर 2026 वाले उत्पादन कोटे को जारी रखने का फैसला किया है। एशिया खेल 2026 का जापान के नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है। भारत ने खेलों में 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में 4था स्थान हासिल किया। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: गुड इवनिंग, म्यूजिक मस्ती लेकर आपके साथ हूं मैं भगवती, और साथ में वादा एक से बढ़कर एक बिल्कुल मस्ती भरे प्यारे प्यारे से ट्रैक्स आपके लिए।

तो सीख लिया ना डांस के स्टेप्स, सो एंजॉय डांसिंग. यू आर ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी रेनबो, सो स्टे ट्यून्ड.

हाजिर है हुस्न इश्क की महफिल में आज फिर हाजिर है

0: और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन?
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: है बब्बई। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती भगवती के साथ।

यह है आपका अपना आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक। दिल्ली और एनसीआर में आप हमें सुन रहे हैं 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर, और उसके बाहर अगर आप हमें सुन रहे हैं तो जाहिर सी बात है न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर सुन रहे होंगे।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

म्यूजिक मस्ती में बस समय बचा है एक और ट्रैक का, और जाने से पहले आपको बता दूं कि 9 बजे से आपकी याद आती रही प्रोग्राम लेकर आपके साथ रहेंगी विनीता बेदी। 10 बजे से आप सुनेंगे डेली हाइलाइट्स कैप्सूल 20th एडिशन ऑफ एशियन गेम्स 2026, और 10:20 से वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम संडे रिक्वेस्ट लेकर आपके साथ होंगे सुशांत मल्होत्रा। 11 बजे से आप सुनेंगे प्रोग्राम रंगे महफिल विनीता बेदी के साथ, और अगर गजलें सुनना अच्छा लगता है आपको तो फिर ज़रूर सुनिएगा ये शो। और अब समय है आपके दोस्त भगवती ले आपसे अनुमति। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ खैर।

नमस्कार, लीजिए प्रस्तुत हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि बदलते वैश्विक परिदृश्य से उभरते और मध्यम स्तरीय देश के बीच सहयोग के नए रास्ते खुले। उन्होंने शांति, आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती और संपर्क को अपनी प्रमुख प्राथमिकताओं के रूप में रेखांकित किया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश को 3,600 करोड़ रुपए की लागत से बने 3,00,000 मकान सौंपे। भारत और कनाडा कल से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का पांचवा दौर शुरू करेंगे। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों पर और असम की 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव का प्रचार समाप्त हुआ। मतदान मंगलवार को होगा। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड से राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव के लिए दिनेश आर्य को पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। वहीं पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की 1 सीट पर उपचुनाव के लिए रुक्मिणी मलिक को उम्मीदवार घोषित किया है। भारतीय जनता पार्टी ने 23 अक्टूबर को होने वाले महाराष्ट्र विधान परिषद चुनावों के लिए 3 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि भदोही जिले के नाम अब संत रविदास नगर भदोही होगा। ईरान ने कहा है कि अमेरिका जब तक उनकी 7 शर्तें पूरी नहीं करेगा तब तक होर्मुज जल डमरू मध्य बंद रहेगा। ओपेक प्लस के 7 देशों सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान ने नवंबर में भी सितंबर 2026 वाले उत्पादन कोटे को जारी रखने का फैसला किया है। और एशिया खेल 2026 का जापान के नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है। भारत ने खेलों में 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में 4th स्थान हासिल किया है। आकाशवाणी रेनबो पर ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

गाते रहे। नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी रेनबो पर वक्त है आपकी याद आती रहेगा, और आज आपके साथ मैं हूं विनीता बेदी। रात की भीगी खामोशी में ना दोस्तों, बहुत सी यादें घिर कर आती हैं। कभी किसी की हंसी याद आ जाती है, तो कभी किसी की कही हुई कोई छोटी सी बात, और कभी किसी शाम की वो छोटी सी मुलाकात, और फिर लगता है ना जैसे बीता हुआ कोई पल अभी अभी हमारे साथ से होकर गुजरा है, और तब लगता है कैसी मुलाकात थी वो, कि वो इंसान दिल में ही नहीं रूह में समा गया। आपकी याद आती रही विनीता बेदी के साथ।

जी हाँ दोस्तों, आपकी याद आती रही, दिल को जाने क्यों भरमाती रही, और मिलने और बिछड़ने में बहुत छोटी सी दूरी है। जैसे ही ये दो कदम चल लिए ना, सब कुछ बदल जाता है। लेकिन जब तक ये दूरी बीच में नहीं आती, तब तक ऐसा लगता है कि सनम का रंग ही हमारी जिंदगी बन गया। चारों ओर जाने कितने फूल खिल गए, हर तरफ खुशबू, हर मौसम गुलजार, और हर रंग सिर्फ गेरुआ।

जी हाँ दोस्तों, आपकी याद आती रही विनीता बेदी के साथ, और इस याद में न जाने कितने अफसाने जुड़े हुए हैं, कितनी हकीकत, कितने फसाने, कितनी मोहब्बत, कितनी दीवानगी। कई बार लगता है ना कि तुम्हारे आ जाने से जैसे छा गई है रंगत इन गुलों में। क्या ये तुम्हें भी पता है कि तुम्हारी हर सांस इन्हें खुशबू देती है।

आपकी याद आती रही विनीता बेदी के साथ। और दोस्तों, हर रिश्ते की ना अपनी एक कहानी होती है, कभी बहुत लंबी तो कभी कुछ मुलाकातों जितनी ही। लेकिन कहानी छोटी हो ये ज़रूरी नहीं कि उसका असर भी कम हो। कुछ लोग ना हमारी ज़िंदगी में बहुत थोड़े समय के लिए आते हैं और बहुत लंबे समय तक याद रह जाते हैं।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
3: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
4: अल्फा जेन,
3: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

आपकी याद आती रही विनीता बेदी के साथ। और दोस्तों, यादों का रिश्ता बहुत गहरा होता है। दूरियां चाहे कितनी भी क्यों ना हो, कुछ चेहरे मन के इतने पास रहते हैं कि उनसे बात करने के लिए किसी फोन, किसी खत या किसी बहाने की जरूरत नहीं पड़ती। बस मन उन्हें याद करता है और वो जैसे एक तस्वीर की तरह सामने आ जाते हैं।

आपकी याद आती रही विनीता बेदी के साथ। दोस्तों सच ये है कि कुछ आसमान ऐसे होते हैं जिन्हें देखते हुए हम अपने भीतर के मौसम को जैसे एक नए सिरे से पहचान लेते हैं। एक खुला आकाश, धीमे धीमे बहती हवा और किसी बहुत अपने की याद, बस इतना ही तो चाहिए कभी कभी दिल को थोड़ा सा सुकून देने के लिए। पर वो सुकून भी पूरा कहाँ होता है जब कभी अपना ही दिल टूटकर बिखर जाए।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक।

ही याद आती रही विनीता बेदी के साथ। और दोस्तों, आज जब संगीत का इतना सुंदर सफर साथ में चल रहा है, तो एक बात तो ज़रूर मन में आती है कि जब कभी भी किसी की यादों का बादल लहराता है ना, तो मन में एक पुकार उठती है कई बार ये जानने के लिए कि ये जो दूरी है ये किस लिए, और कभी ये पूछने के लिए कि क्या वाकई कोई संबंध नहीं हमारा तुम्हारा, जितनी आसानी से भुला दिया तुमने।

आपकी याद आती रही विनीता बेदी के साथ। और दोस्तों, कभी हम किसी अनजाने रास्ते पर चलते हुए भी ना किसी जानी पहचानी आहट को खोजते हैं, जाने क्यों। दिल पूछता है कौन है यहाँ, जवाब आता है शायद कोई नहीं, या शायद वही कोई जिसकी तलाश हमें खुद भी नहीं मालूम कि दिल को जाने कब से है। कुछ गीत ना दोस्तों कभी भी ख़त्म नहीं होते, उनकी धुन शायद हमारे पास हमारे साथ बहुत देर तक रहती है। ऐसे ही कुछ गीत आपके साथ आज रहे, आपकी याद आती रही मैं। क्योंकि कुछ लोग ना दूर होकर भी हमारी ज़िंदगी से दोस्तों कभी दूर नहीं होते। आज का आपकी याद आती रही का सफ़र यहीं तक। अब विनीता बेदी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: नमस्कार, आईची नगोया में एशियन गेम्स 2026 का समापन हो चुका है। यहाँ से एशियाई खेलों का ध्वज अब कतर की राजधानी दोहा के लिए निकल चुका है, जहाँ चार साल बाद 2030 में एक बार फिर से पदकों के लिए गदर मचेगा और एशियाई देशों के धुरंधर खिलाड़ी देश के लिए एक पदक जीतने की चाह में अपने हुनर का एक एक कतरा झोंक देंगे। 20वें एशियाई खेलों की बात करें तो भारत के लिहाज से प्रदर्शन मिला जुला रहा। ओवरऑल पदकों की संख्या हांगझू के मुकाबले भले ही कम हुई, लेकिन हम अपना चौथा स्थान कायम रखने में सफल रहे। इस बार जो भारतीय दल ने कुल 85 पदक जीते, उनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल हैं। पिछले एशियाई खेलों में हमारे पदकों की संख्या 28 गोल्ड समेत कुल 106 थी। इस बार पदकों की संख्या कम होने की वजह पिछली बार के मुकाबले छोटा दल और कुछ प्रमुख खेलों में प्रदर्शन उम्मीदों के अनुरूप न होना रहा। हालांकि कुछ ऐसे खेल रहे जिनमें हमारे मैदान के योद्धाओं ने उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन किया। खासकर भारत की बेटियों ने इस बार कमाल कर दिया। अगर हम पदक तालिका पर गौर करते हैं तो हमने 11 स्वर्ण लड़कियों के इवेंट में हासिल किए, जबकि 7 गोल्ड लड़कों की स्पर्धाओं में रहे, 3 गोल्ड मिक्स इवेंट में आए। अब हम आपको बताते हैं कि भारतीय दल ने किन किन खेलों में कौन सा पदक जीता और हांगझू एशियन गेम्स के मुकाबले प्रदर्शन कैसा रहा। शुरुआत ट्रैक एंड फील्ड के खेल एथलेटिक्स से करते हैं, जिसमें हमारा सबसे बड़ा दल उतरा था और पदक की भी ढेर सारी उम्मीद थी, लेकिन वो उम्मीद खरी नहीं उतर सकी। इस बार एथलेटिक्स में हमने 1 गोल्ड, 9 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज समेत कुल 24 पदक जीते। पदकों की संख्या तो पिछले एशियन गेम्स के 29 पदकों के आसपास ही रही, लेकिन गोल्ड मेडल में भारी गिरावट आई। पिछली बार हमने 6 गोल्ड जीते थे। पदकों की दूसरी सबसे बड़ी उम्मीद शूटिंग में भी हमारी आस पूरी नहीं हुई। निशाना साधने के खेल में इस बार हमने 3 गोल्ड, 8 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज समेत 15 मेडल जीते। 19वें एशियाई खेलों में हमारे खाते में 7 स्वर्ण, 9 रजत और 6 कांस्य समेत 22 पदक आए थे। यहाँ भी सोने के तमगे की संख्या में 4 की कमी आई। बैडमिंटन, टेनिस और घुड़सवारी ने खासा निराश किया। पिछली बार स्क्वाश में हमारे 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक थे। इस बार कुल पदकों की संख्या तो 5 रही, लेकिन उसमें सोने का कोई तमगा शामिल नहीं रहा। 2 रजत और 3 कांस्य पदक भारत के खाते में आए। बैडमिंटन ने भी निराश किया। 2022 के एशियन गेम्स के 1 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक की तुलना में 2026 में सिर्फ 1 कांस्य पदक खाते में आया। टेनिस में तो पदकों का खाता तक नहीं खुला। पिछली बार 1 गोल्ड और 1 सिल्वर समेत 2 पदक आए थे। घुड़सवारी में भी अकाउंट ओपन नहीं हो सका। हांगझू में 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल आया था। दूसरी तरफ कुछ खेलों में हमारे सितारे पिछली बार से ज्यादा चमके। बॉक्सिंग में भरोसा तो था, लेकिन रिंग के उस्तादों ने उन उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन किया। जापान में 3 गोल्ड और 3 ब्रॉन्ज समेत 6 पदक आए, जबकि चीन में 1 रजत और 3 कांस्य पदक ही भारत के खाते में था। कुश्ती के अखाड़े में

0: हमारे पहलवानों ने खूब दांव दिखाए और पिछली बार के एक रजत और पांच कांस्य पदकों को इस बार दो स्वर्ण, दो रजत और दो कांस्य में बदल दिया। कमाल तो ये भी हुआ कि ग्रीको रोमन शैली में भारत का कोई पहलवान 64 साल बाद फाइनल में पहुंचा। नितेश शिवाच ने ये कमाल कर दिखाया। गोल्फ में न सिर्फ पदकों की संख्या पिछली बार के एक रजत से बढ़कर दो हो गई, बल्कि इनमें एक सोना और एक चांदी का मेडल भी शामिल रहा। खास बात तो ये भी रही कि प्रणवी उर्स व्यक्तिगत गोल्फ स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। हमारे धनुर्धनों ने पदकों की संख्या को कम नहीं होने दिया। इस बार भी पांच गोल्ड, दो सिल्वर और दो ब्रॉन्ज जीता। खास बात ये रही कि तीरंदाजों ने न सिर्फ कंपाउंड टीम इवेंट में अपने पिछले तीनों गोल्ड मेडल को कायम रखा, बल्कि रिकर्व में भी कमाल किया। महिला टीम ने एशियन गेम्स के इतिहास में पहला स्वर्ण पदक जीता। इतना ही नहीं, 17 साल की कुमकुम महोद ने महिला व्यक्तिगत इवेंट में भी स्वर्णिम निशाना साधा। पुरुष टीम को रजत पदक मिला। वेट लिफ्टिंग में देश की बड़ी उम्मीद मीराबाई चानू ने निराश नहीं किया। पिछली बार वजन उठाने के इस खेल में हमारा हाथ खाली रहा था, तो इस बार मीरा ने रजत देश के नाम किया। टीम इवेंट में भी हमारा प्रदर्शन पिछली बार से बेहतर रहा। हॉकी के पुरुष वर्ग में न सिर्फ हमारी टीम अपने स्वर्ण पदक का बचाव करने वाली एशिया की पहली टीम बनी, बल्कि महिला टीम तो उससे भी आगे निकल गई। झारखंड की सलीमा टेटे की अगुवाई में महिला टीम ने 44 साल बाद न सिर्फ गोल्ड मेडल जीता, बल्कि बेहद मजबूत चीन को हराकर लॉस एंजलिस ओलंपिक का टिकट भी कटाया। क्रिकेट में महिला और पुरुष टीमें अपने गोल्ड मेडल का बचाव करने में कामयाब रहीं। अपने पारंपरिक खेल कबड्डी के महिला और पुरुष दोनों वर्गों में हमारी बादशाहत कायम रही। दोनों ही वर्गों में ईरान को हराकर गोल्ड मेडल जीतने में कामयाबी मिली। हालांकि कुछ अन्य खेलों में हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन पिछली बार के मुकाबले कमतर रहा। इन खेलों में हमने पिछली बार 17 मेडल जीते थे, लेकिन इस बार ये संख्या 10 तक सिमट गई। इस समय हमारे साथ भारत के प्रदर्शन पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मोना पारसारथी। मोना, स्वागत है आपका।
1: शुक्रिया।
0: मोना, 20वें एशियाई खेलों में एक समय हम पदकों की दौड़ में काफी पिछड़ रहे थे और लग रहा था कि भारत का पोजीशन 2022 के मुकाबले पीछे न रह जाए, लेकिन जब अंतिम मेडल टैली आई और हम फिर से चौथा स्थान हासिल करने में कामयाब रहे, तो एक खेल प्रशंसक, एक भारतीय और खेल पत्रकार के तौर पर आपने कितनी राहत महसूस की?
1: जी बिल्कुल, आखिर के 4-5 दिन में जो प्रदर्शन हुआ उसने काफी राहत की सांस महसूस कराई, क्योंकि पहले 10वें, 11वें, 12वें नंबर पर लगातार भारत रह रहा था और ऐसा लग रहा था कि शायद हम टॉप 10 में आ पाएंगे भी या नहीं। एक उम्मीद जरूर थी कि कुछ टीम गेम्स के मेडल आने बाकी थे, लेकिन फिर भी लगा था कि 5वां-6वां स्थान शायद रह जाएगा, लेकिन अंत में जो आखिरी मेडल गोल्ड आया उसमें हमने उज्बेकिस्तान को पीछे छोड़कर फिर चौथा स्थान हासिल किया, तो ये जरूर राहत की बात रही। हालांकि पदकों की अगर हम बात करें तो पिछली बार सेंचुरी लगाई थी और इस बार 85 पर सिमट कर रह गए, तो वो थोड़ा चिंता का विषय रहा, लेकिन ये ब्रॉडर एस्पेक्ट में अगर हम देखें तो अलग अलग खेलों में इस बार पदक आए हैं, तो ये हम अगर सकारात्मक देखें तो ये हो सकता है।
0: तो मोना, पदकों की कुल संख्या का कम होने के पीछे वजह क्या रही और क्या सचमुच ये हमारे लिए चिंता की बात है, या फिर जिस तरह से हमने 20 गोल्ड मेडल गवाए तो 13 नए गोल्ड मेडल जोड़े भी हैं, तो ये सकारात्मक पहलू भी तो हो सकता है।
1: जब भी हम किसी बहुराष्ट्रीय खेलों में जाते हैं तो जिन खेलों से सबसे ज्यादा उम्मीद होती है उसमें निशानेबाजी है, बैडमिंटन है, टेनिस है और एथलेटिक्स है, तो इन खेलों में हमारा पिछली बार जो प्रदर्शन था अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो एथलेटिक्स में हमारे 6 गोल्ड मेडल थे, इस बार एक ही आया, तो काफी कुछ निराशा यहाँ रही, क्योंकि पारंपरिक रूप से भारत का इनमें पलड़ा भारी रहता है, तो जो अपनी ताकत है उस पर हम नहीं खेल पाए, वहाँ निराशा हाथ लगी। लेकिन जैसे आपने कहा कि कई नए खेलों में हमने, जैसे रिकर्व आर्चरी में हमने पहली बार गोल्ड मेडल जीता, ट्रैप शूटिंग में पदक आया, महिला हॉकी में 44 साल बाद पदक आया, तो ये कुछ अच्छे पहलू रहे। लेकिन नए खेलों में पदक जीतने के मायने ये नहीं है कि जो हमारे पारंपरिक रूप से मजबूत खेल है उनमें हमने अपना जो नुकसान हुआ है उस पर जरूर आत्ममंथन करने की जरूरत है।
0: हमारे पदकों की संख्या कम जरूर हुई, लेकिन हमें याद भी रखना होगा कि पिछली बार हमारे 700 से ज्यादा खिलाड़ियों की टीम गई थी, लेकिन इस बार उसके मुकाबले करीब करीब संख्या 200 कम थी, उसका भी कुछ असर हुआ है क्या?
1: नहीं, मुझे लगता है कि जो पदक उम्मीदें थी वो सारी ही थी इस कॉन्टिंजेंट में, और ये स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जहां पर उम्मीद नजर आती है पदकों की, भारतीय दल का हिस्सा वही खिलाड़ी होंगे, और उसको देखते हुए लगता है कि जो जो रेशो रहा है वो जिनसे उम्मीद की जा रही थी अगर वो मैदान पर उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं ला पाए तो वहां पर संख्या से मुझे लगता नहीं कि उसका कोई लेना देना है।
0: मोना, हम जानते हैं कि हॉकी पर आपकी खास निगाह रहती है और भारतीय पुरुष टीम ने तो स्वर्ण का बचाव कर नया इतिहास ही लिखा है इस बार, और महिला टीम ने 44 साल बाद स्वर्ण जीतकर

0: धमाल कर दिया है। दोनों टीमों के प्रदर्शन में इस बार क्या खास रहा?
1: देखिए, पुरुष टीम की अगर हम बात करें तो पिछली बार भी हमारी पुरुष टीम ने स्वर्ण पदक जीता था और सीधे ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था, और उस प्रतियोगिता में उतना जो प्रतिस्पर्धा का स्तर था वो भी इतना नहीं था। अगर आपने ग्रुप मैचेस देखे हो तो बहुत बड़े बड़े अंतर से हमने जीत दर्ज की। एक पाकिस्तान के खिलाफ मैच को छोड़ दिया जाए तो भारत को बहुत ज्यादा चुनौती का यहाँ सामना नहीं करना पड़ा, और जिस तरह से विश्व कप में प्रदर्शन रहा था भारतीय पुरुष हॉकी टीम का, 8वें स्थान पर रही थी, तो उस निराशा से उबरते हुए ये गोल्ड मेडल ने जरूर राहत का काम किया होगा। लेकिन इसमें मुझे लगता है कि पुरुष हॉकी के लिए खासतौर पर बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ प्रतिस्पर्धा का जो स्तर था वो बहुत अच्छा नहीं था। अब आगे के लिए हमें बड़ा सोचना होगा। लेकिन ये बात महिला हॉकी की अगर हम करें तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी उपलब्धि है। 1982 में दिल्ली में जब एशियन गेम्स हुए थे तब हमको गोल्ड मेडल मिला था, और यहाँ 44 साल बाद भारतीय महिला हॉकी टीम ने इसे ठीक एक महीना पहले विश्व कप में 52 साल बाद सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके 5वां स्थान हासिल किया। और यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि सीधे लॉस एंजलिस ओलंपिक का टिकट कटाया है। पिछली बार पेरिस में टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई थी टोक्यो हाई के बाद, तो ये सबसे बड़ी यहाँ राहत की बात है कि अब पूरे 2 साल महिला हॉकी टीम के पास है। और जिस तरीके से टीम की तैयारियां चल रही है, अगर हम ओलंपिक में पदक के दावेदारों में शामिल हो तो इसमें कोई अचरज की बात नहीं होगी।
0: तीरंदाजी में मुना हमने कमाल किया, पहले हमारी ताकत कंपाउंड इवेंट हुआ करती थी लेकिन इस बार तो रिकर्व में भी कमाल हुआ। हमारे धनुर्धरों की सफलता को लेकर आप कितनी खुश हैं और भविष्य का क्या संकेत मिलता है?
1: जो भारतीय टीम का पदक तालिका में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ वो मुझे लगता है तीरंदाजों ने ही शुरुआत की, और खासतौर पर यहाँ तारीफ करनी होगी कुमकुम मोहत की, जिन्होंने सिर्फ 17 साल की उम्र में जिस तरीके की परिपक्वता अपने खेल में दिखाई है, कोरिया की लेजेंडरी आर्चर को हराकर गोल्ड मेडल जीता, और जिस खिलाड़ी को उन्होंने हराया उन्हें वो अपना आदर्श भी मानती है, और शूट ऑफ तक उनका एक मुकाबला गया था, जबरदस्त संयम और एकाग्रता का प्रदर्शन देते हुए उन्होंने अपना प्रदर्शन किया है। 3 पदक उनकी झोली में गिरे हैं, और जब चयन हुआ था तीरंदाजी टीम का तो काफी सवाल उठे थे कि अनुभव पर युवाओं को तरजीह दी गई, लेकिन यहाँ पर कुमकुम की अगुवाई में रिकर्व टीम ने इतिहास रचा। और कंपाउंड आर्चरी की भी अगर हम बात करें तो ज्योति व्यक्तिगत स्पर्धा में भले ही कमाल नहीं कर पाई हो लेकिन उनकी अगुवाई में भारतीय टीम ने प्रदर्शन जबरदस्त किया और गोल्ड मेडल अपनी झोली में डाला, तो तीरंदाजी में भारत का बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन इन खेलों में देखने को मिला।
0: मोना, निशाना साधने की एक और खेल शूटिंग की बात करें तो वहां पर मेडल पिछले बार जितने नहीं आए लेकिन नीरू ढांडा का प्रदर्शन, जो कि कोविड से जूझ रही थी, करियर समाप्त होने की तरफ था, लेकिन उन्होंने 2 गोल्ड पर निशाना साधा।
1: बिल्कुल, इसको कहते हैं ना कि इच्छा शक्ति हो, लगन हो और कुछ पाने की चाहत हो। नीरू का मैं इंटरव्यू देख रही थी और कह रही थी कि मैं आई थी तो यही सोच के आई थी कि मुझे सिर्फ गोल्ड ही जीतना है, और उस तरीके का उन्होंने प्रदर्शन भी किया। ट्रैप में भारत को पहली बार स्वर्ण पदक दिलाया, महिला निशानेबाज बनी, और किनान के साथ मिलकर उन्होंने मिक्स में भी पदक जीता, तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा। ध्वजवाहक भी रही वो क्लोजिंग सेरेमनी में भारत की, और मुझे लगता है कि अगर इसी तरीके का उनका प्रदर्शन जारी रहा तो शायद 2004 के बाद जो शॉटगन में भारत को एक ओलंपिक मेडल की उम्मीद के रूप में वो उभर सकती है।
0: जी, और कुश्ती के मैट पर भी हमारे पहलवानों ने खूब दाव पेंच दिखाया, 2 सोने का मेडल भी जीता। ये पारंपरिक खेल हमारे लिए ओलंपिक में भी पदक की एक बड़ी उम्मीद हमेशा से रहा है। पहलवानों के इस बार के प्रदर्शन ने आपको कितना प्रभावित किया?
1: खास तौर पे सुजीत कलकल की अगर हम बात करें तो जिस तरह से हारा हुआ एक तरह मुकाबला था और वो जो वापसी की उन्होंने वो बहुत शानदार रही। अमन सहरावत के लिए भी ये वापसी वाले खेल रहे, तो कुश्ती में प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप रहा, 2 गोल्ड मेडल भारत की झोली में आए, और आगे उम्मीद यही रहेगी कि वहां से अच्छी खबरें ही सामने आए।
0: और खासकर ग्रीको रोमन शैली में भी सालों बाद हमारा कोई पहलवान फाइनल में पहुंचा, 2 मेडल भी आए। ये कुश्ती की पारंपरिक शैली नहीं है, फिर भी इस बात का संकेत तो मिलता है कि ग्रीको रोमन शैली की कुश्ती पर भी काफी काम हो रहा है।
1: बिल्कुल, जब भी कुश्ती के मैट पे भारतीय उतरते हैं तो फ्री स्टाइल में ही माना जाता है कि वो हमारा एक मजबूत पक्ष है, लेकिन ग्रीको रोमन ने चाहे वो नितेश सिवाच हो चाहे सुनील कुमार हो, जिस तरह से भारत की झोली में पदक डाले तो अब लगता है आगे किसी भी खेलों में इस शैली से भी भारत को पदक की उम्मीद की जा सकती है।
0: मुक्केबाजी में भी इस बार एशियाई देशों ने हमारे बॉक्सर्स के पंचों के दम को देखा, 3 गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रहे। लॉस एंजलिस ओलंपिक में हमारी मुक्केबाजी क्या कमाल कर सकती है?
1: बिल्कुल, लवलीना बोरगोहेन ने जो शुरुआत की, जिस तरह से उनका प्रदर्शन रहा और अपने जन्मदिन के दिन उन्होंने गोल्ड मेडल भारत की झोली में डाला, तो एक तरह से कहा जाए कमबैक ही रहा उनके लिए भी। परवीन हुड्डा ने उस सिलसिले को आगे बढ़ाया और

0: आयुष पंघाल, तो कुल मिलाकर 3 गोल्ड मेडल किसी भी खेल में अगर आ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए एक बहुत अच्छा संकेत भी है।
1: क्रिकेट और कबड्डी जैसे खेल में दोनों वर्गों में हमारी टीम्स का गोल्ड मेडल, क्या ये साबित करता है कि फिलहाल इनमें से कम एशियाई स्तर पर तो हमारी कोई टक्कर नहीं है?
0: बिल्कुल नहीं है। खासतौर पर अगर हम बात करें क्रिकेट की, तो महिला वर्ग में भी और पुरुष वर्ग में भी जिस तरीके का प्रदर्शन था, एक ही समय पर भारत की 2 टीमें अलग अलग टूर्नामेंट खेल रही है, वहां सीरीज जीत रहे हैं, यहाँ पे एशियन गेम्स, तो क्रिकेट में जो भारत की गहराई है उसका कोई मुकाबला नहीं, और एशिया स्तर पर तो कोई चुनौती थी नहीं भारत के पास। कबड्डी में एक ईरान को छोड़कर किसी टीम से भारत को चुनौती मिलने की वैसे भी उम्मीद नहीं थी, और भारतीयों ने उस पर खरे उतरते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम की।
1: एथलेटिक्स में पिछले एशियन गेम्स में हमारी झोली में सबसे अधिक पदक आए थे। इस बार न सिर्फ ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में पदकों की संख्या कम हुई बल्कि गोल्ड मेडल में भी ड्रास्टिक गिरावट आई। एशियन स्तर पर यह प्रदर्शन हमारे लिए कितनी चिंता की बात?
0: बिल्कुल, बहुत चिंता की बात है, क्योंकि पिछली बार 6 गोल्ड मेडल आए थे, इस बार 1 ही गोल्ड मेडल भारत की झोली में आया है। और इस तरह के इवेंट में जो एथलेटिक्स होता है वो उसको कहा जाता है रूह है उस आयोजन की, उस पूरे खेलों की रूह है, और उसमें सबकी नजरें लगी होती है। एशियन गेम्स शुरू होने से पहले ही नीरज चोपड़ा के न होने की वजह से काफी कुछ लग रहा था, रौनक कम हो गई है, डिफेंडिंग चैंपियन भी थे भाला फेंक में, लेकिन यहां निराशा हाथ लगी। अभी भाला फेंक की अगर हम बात करें तो यशवीर और रोहित ने 2 पदक भारत की झोली में डाले, और काफी समय तक यशवीर आगे भी चल रहे थे, लग रहा था गोल्ड आएगा, लेकिन जो इस समय एक तूफान आया हुआ है श्रीलंका के पाथिरागे के नाम से, उन्होंने एक भाला ऐसा फेंका कि वो 1 गोल्ड भारत के पास से निकल गया। फिर पूजा की अगर हम बात करें, वो भी काफी समय तक आगे चल रही थी लेकिन आखिरी 2 प्रयास में वो भी चूक गई। मुरली श्रीशंकर हो, एनसी सोजन हो, सर्वेश कुशारे हो और तेजिंदर पाल सिंह तूर, लगातार जिनका दबदबा रहा है, वो भी चूके उनका गोल्ड जो है सिल्वर में, तो काफी जो गोल्ड है हमारे सिल्वर में चले गए। लेकिन रिले टीम की यहां तारीफ करनी होगी, महिलाओं की 4x400 मीटर, उसमें भी विद्या रामराज की खासतौर पर, जिन्होंने लास्ट लैप में जिस तरीके से ओवरटेक किया है और भारत को गोल्ड दिलाया है, तो वो एक सिल्वर लाइनिंग रहा पूरे एथलेटिक्स में प्रदर्शन में। लेकिन यहां जरूर निराशा रही कि 5 गोल्ड सीधे हाथ से निकल गए।
1: और गोल्फ की बात करना भी जरूरी है क्योंकि वहां भी महिला वर्ग में हमने इतिहास रचा है। जो प्रदर्शन रहा प्रणवी उर्स का, वो कैसे देखती हैं, कितनी बड़ी ताकत हम बनने जा रहे हैं एशिया में?
0: देखिए, आप अगर ओवरऑल देखें मेडल टैली, तो महिलाओं ने ही बाजी मारी है इस बार स्वर्ण पदकों में। मुझे रियो ओलंपिक याद आ रहा है जब महिलाएं पदक लेकर आई थी, तो गोल्फ में भी आप प्रणवी उर्स का प्रदर्शन देखिए, शुरू से उन्होंने एक कंसिस्टेंसी बरकरार रखी और आखिर में पहली महिला बनी। कितनी ईमानदारी से लोगों ने सोचा होगा जब ये कंटिंजेंट रवाना हो रहा था कि गोल्फ में हमें गोल्ड मेडल मिलेगा, कम से कम हम लोगों ने, खेल पत्रकारों ने तो इसकी उम्मीद नहीं की थी, और ये एक अनएक्सपेक्टेड गोल्ड भारत की झोली में आया है। और बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा टीम का भी, जिसमें अदिति अशोक और दीक्षा डागर भी थी कि सिल्वर मेडल भारत की झोली में डाला। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में काफी अच्छा प्रदर्शन यहां से देखने को मिलेगा, और इसकी शुरुआत अदिति अशोक से हुई थी जब उन्होंने ओलंपिक में 4th स्थान हासिल किया था, और अभी महिलाओं ने उस सिलसिले को आगे बढ़ाया है, तो शुरुआत अच्छी हुई है।
1: उन्हें स्क्वाश में भी मेडल तो आया, लेकिन आपको लगता है कि उतना भरोसा पूरा हुआ जितने की उम्मीद थी?
0: स्क्वाश में गोल्ड मेडल नहीं आया भारत की झोली में, लेकिन संभावनाएं जरूर जगी हैं, खासतौर पे अनहद सिंह ने जो वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप जीती हैं और भविष्य के लिए बहुत अच्छी उम्मीद मानी जा रही। उन्होंने पहली बार महिला एकल में फाइनल में पहुंचने वाली पहली खिलाड़ी रही और सिल्वर मेडल अपने नाम किया, तो ये एक अच्छा प्रदर्शन भारत के लिए रहा।
1: साइकिलिंग और स्विमिंग जैसे खेलों ने पूरी तरह से निराश किया, आप मानती हैं कि खेलों में काफी काम करने की जरूरत है?
0: देखिए, हमारी जो पूरी स्ट्रेटजी तैयार होती है खेलों की, तो उसमें फोकस इस बार ये था कि उन खेलों पर भी ध्यान दिया जाए जिनमें पारंपरिक रूप से हम अच्छे पदक जीतने की हमारी उम्मीद नहीं होती है, जैसा चीन ने किया था बीजिंग ओलंपिक से पहले। लेकिन मुझे लगता है कि अभी बहुत जल्दबाजी होगा कुछ कहना, क्योंकि इन खेलों में जिस तरह से निराशा सामने आई है, हर वर्ग में भारतीय फाइनल दौड़ में भी जगह नहीं बना पाए, शुरुआती दौर में ही बाहर होते गए, तो यहां पर मुझे लगता है कि बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन।
1: और एक अंतिम सवाल, सेलिंग, सेपक टेकरा, सॉफ्ट टेनिस जैसे खेल नई उम्मीद जगा गए, जबकि घुड़सवारी जैसे कुछ खेलों ने निराश किया। कुल मिलाकर इस बार के एशियाई खेल भविष्य के लिए कितनी उम्मीदें जगाने वाले रहे और किन खेलों में और ज्यादा मेहनत करने की तरफ इशारा कर गए?
0: बिल्कुल, आप देखिए सेलिंग में जिस तरह नेत्रा कुमारन काफी अनुभवी सेलर है और डिंगी, महिलाओं की डिंगी स्पर्धा में उन्होंने एक मेडल भारत को दिलाया जो पहला पदक है। जय मीना ने जैसे आपने बात की सॉफ्ट टेनिस की, और पुरुषों की चौकड़ी ने सेपक टेकरा में भारत को पदक दिलाया। तो ये जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे कि एक ब्रॉड हुआ है जो स्पेक्ट्रम है, वो थोड़ा चौड़ा हुआ है कि अलग अलग

0: खेलों में हमें पदक मिले जरूर है, लेकिन जो पारंपरिक हमारे खेल हैं उनमें कहीं ना कहीं हम पिछड़े हैं। तो यहाँ पर ये आत्ममंथन करने की जरूरत है कि एक तरफ आपको ये सकारात्मक बात भी है कि आपने नए नए खेलों में प्रवेश किया, पदकों पोडियम पर खड़े हुए, लेकिन जो हमारी ताकत है उस पर भी हमें पोडियम पे ही खड़े होना है। उसमें किसी तरह का समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि उसका सीधा असर आपकी मेडल टैली पर पड़ता है। आप देखिए टेनिस में 40 साल बाद एक भी पदक नहीं भारत को मिला, बैडमिंटन में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी दोनों गोल्ड मेडल जीते थे, शुरुआती दौर में ही बाहर हो गए। तो बिल्कुल सारे हमारे धुरंधर बैडमिंटन टीम में थे, लेकिन कोई पदक नहीं उसमें हाथ लगा। तो यहाँ बहुत निराशा है और इस पर जरूर आत्ममंथन करने की जरूरत है।
1: मोना स्टूडियो में आने के लिए और हमसे एशियाई खेलों में भारत के प्रदर्शन पर बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: शुक्रिया।
2: आईची नागोया में भारत का 85 पदकों का ये आंकड़ा जश्न मनाने के लिए काफी है, लेकिन कहीं न कहीं आत्ममंथन का भी संकेत है। पिछली बार के मुकाबले इस बार पदकों की संख्या में थोड़ी गिरावट आई है, जिसका मतलब है कि हमें एथलेटिक्स, शूटिंग, कुश्ती के साथ साथ उन खेलों में भी ग्रास रूट स्तर पर काम करना होगा जहां एशियाई स्तर पर हम पीछे रह जाते हैं। लेकिन हमारे हर खिलाड़ी का जोश और जज्बा ये कह रहा है कि 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक और भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय मंचों के लिए भारत की नींव बेहद मजबूत है। तो जीत का जश्न जारी रहे और खिलाड़ियों का ये कारवां यूं ही तिरंगा ऊंचा करता रहे। एशियन गेम्स 2026 में भारत के प्रदर्शन पर हमारी स्पेशल कवरेज के अंतिम एपिसोड से कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शहनवाज खान, एडिटर विशाल कुमार के साथ मुझे धर्मेंद्र मणि राजेश को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
3: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

0: धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
2: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
3: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: गया है बबल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

लीजिए प्रस्तुत है आकाशवाणी रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि बदलते वैश्विक परिदृश्य से उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते खुले। उन्होंने शांति, आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती और संपर्क को अपनी प्रमुख प्राथमिकताओं के रूप में रेखांकित किया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश को 3600 करोड़ रुपए की लागत से बने 3 लाख मकान सौंपे। भारत और कनाडा कल से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का 5वां दौर शुरू करेंगे। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव का प्रचार समाप्त हुआ। मतदान मंगलवार को होगा। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड से राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव के लिए दिनेश आर्या को पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। वहीं पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की 1 सीट पर उपचुनाव के लिए रुक्मिणी मलिक को उम्मीदवार घोषित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने 23 अक्टूबर को होने वाले महाराष्ट्र विधान परिषद चुनावों के लिए 3 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि भदोही जिले का नाम अब संत रविदास नगर भदोही होगा। ईरान ने कहा कि अमेरिका जब तक उसकी 7 शर्तें पूरी नहीं करेगा तब तक हॉर्मुज जल डमरू मध्य बंद रहेगा। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन के लिए कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी के तटीय और दक्षिणी आंतरिक क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। और एशिया खेल 2026 का जापान के नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है। भारत ने खेलों में 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पद के साथ तालिका में 4था स्थान हासिल किया। आकाशवाणी रेनबो पर ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: आकाशवाणी रेनबो पर स्वागत है आप सभी का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनीता बेदी और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग महफिल। रात अब अपने गहरे रंग में उतर आई है दोस्तों। शहर की रफ्तार थमने लगी है, लेकिन दिल के भीतर चलती हुई कुछ आवाजें अभी भी जाग रही हैं। तो आइए आज की इस महफिल में कुछ देर उन भावनाओं के साथ बैठते हैं जो रात के सन्नाटे में और भी साफ साफ सुनाई देती हैं। काश लौट आए वो लम्हे जो यूं ही बिता दिए थे कभी।

फिल्म में आप हैं विनीता बेदी के साथ। और दोस्तों, मोहब्बत को शायद हमेशा ही धीरे धीरे चलना चाहिए, क्योंकि जल्दी में मिले रिश्ते अक्सर जल्दी ही थक भी जाते हैं। लेकिन जो रिश्ता समय लेता है ना, जो एक दूसरे को समझने में ठहरता है, वो दिल में थोड़ा गहरा उतरता है। इसीलिए तो कहा भी जाता है ना कि कुछ रास्तों पर आहिस्ता चलना ही ठीक रहता है, कभी खुशी से तो कभी मुस्कुराकर।

रंग महफिल विनीता बेदी के साथ। दोस्तों, इश्क इंसान से क्या क्या नहीं करवाता। जो शख्स कभी बहुत मजबूत था, वही किसी की सिर्फ एक नजर से पिघल जाता है। जो कभी किसी पर निर्भर नहीं था, वही किसी की आवाज का दिन रात इंतजार करने लगता है। शायद यही इश्क है ना, कि अपने दिल के अंदर खुद से पहले किसी और के लिए जगह बना देता है। ये इश्क क्या नहीं करवा।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6

दोस्तों, ये है आकाशवाणी रेनबो और आप सुन रहे हैं रंग महफिल विनीता बेदी के साथ। दोस्तों, दर्द को भी कभी कभी किसी सहारे की जरूरत होती है। कोई एक आवाज, कोई एक हमदर्द या फिर बस कोई एक ऐसा जो बिना पूछे ही समझ सके कि दिल के भीतर चल क्या रहा है। दोस्तों, हर आह के पीछे एक कहानी होती है और हर खामोशी की कोई ना कोई वजह तो जरूर होती है।

वही दिल जो हमें कभी सबसे खूबसूरत सपने दिखाता है, कभी उन्हीं सपनों के टूटने का दर्द भी देता है, फिर भी हम इस दिल की ही सुनते हैं, पता नहीं क्यों। शायद इसीलिए कि दुनिया चाहे कितना भी जोर डाले, पर मोहब्बत जो होती है ना, वो शुरू भी इस दिल से ही होती है।

किसी के आने का इंतजार भी कितना खूबसूरत होता है ना। घड़ी की सुइयां चलती रहती हैं, रात गहराती रहती है, लेकिन मन की आंखें दरवाजे पर टिकी रहती हैं। शायद वो आए या शायद ना आए, लेकिन इंतजार जो है ना, वो अपने आप में ही एक खूबसूरत एहसास होता है।

और अब आज की महफिल की आखिरी गजल। कितना लंबा बिछोड़ा, कोई खबर तक नहीं, बस यादें और आंसू। और फिर एक दिन एक खत आता है, कभी डाक से, कभी किसी के संदेश की शक्ल में, और कभी अचानक किसी याद के रूप में। कुछ खबरें ना बहुत दूर से आती हैं, लेकिन जब आती हैं तो सीधे दिल तक पहुंचती हैं। इसके साथ ही दोस्तों, विनीता बेदी को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए और उन रिश्तों को संभाल कर रखिए जिन्हें वक्त ने भले ही दूर कर दिया हो, लेकिन दिल ने आज भी उन्हें संभाल के रखा है। चलती हूँ, शब खैर, शुभ रात्रि।

नमस्कार। बज चुके हैं रात्रि के ठीक 12 और दिन भी अब बदल गया है, अब संडे नहीं है जनाब, हम मंडे में आ चुके हैं, ऑफिशियली एंट्री हो चुकी है। हाँ, लेकिन आपको कहीं भी जाना है वो आप सुबह ही जाएंगे, लेकिन हम सोमवार में आ चुके हैं और इस दिन का ये पहला शो जीरो आवर्स। इससे पहले कि हम शो शुरू करें, एक सिलसिला जो मैंने निभाना है वो सिलसिला है मुख्य समाचारों का। आइए लेते हैं जानकारी इस घंटे के मुख्य समाचारों की। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाई पारमेलिन 3 दिन के राजकीय दौरे पर आज भारत आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पारमेलिन आज नई दिल्ली में विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति की समीक्षा के लिए वार्ता करेंगे। भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का 5वां दौर शुरू करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि बदलते वैश्विक परिदृश्य से उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते खुलेंगे। उन्होंने शांति आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती और संपर्क को अपनी प्रमुख प्राथमिकताओं के रूप में रेखांकित किया। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव का प्रचार समाप्त हुआ। मतदान मंगलवार को होगा। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड से राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव के लिए दिनेश आर्य को पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। वहीं पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की 1 सीट पर उपचुनाव के लिए रुक्मिणी मल्लिक को उम्मीदवार घोषित किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि भदोही जिले का नाम अब संत रविदास नगर भदोही होगा। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। ईरान ने कहा है कि अमेरिका जब तक उसकी 7 शर्तें पूरी नहीं करेगा तब तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों के लिए कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी के तटीय और दक्षिणी आंतरिक क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। और एशिया खेल 2026 का जापान के नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है। भारत ने खेलों में 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदकों सहित 85 पदकों के साथ तालिका में 4th स्थान हासिल किया। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर कुछ ही देर में हाजिर है प्रोग्राम जीरो आवर शो में रेन रजत के साथ। 102.6 के साथ आप जुड़े हैं हमारे साथ न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी, देश और दुनिया के सभी हिस्सों से, देश और दुनिया के हर कोने से हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर यह ऐप आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी करें, गाड़ी निकल ना जाए। वैसे गाड़ी हमारे हाथ में निकलेगी नहीं, लेकिन आप अगर हम तक पहुंचना चाहते हैं और हर जगह से पहुंचना चाहते हैं तो इस ऐप को आज ही डाउनलोड करें। स्वागत है आप सभी का जीरो आवर्स शो में।

0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6, दिल से दिल तक।

आज के इस खूबसूरत पड़ाव में साथ रहा आप सभी का अफशा खानम, रिया जी दिल्ली से, एम राजकुमार भी जुड़े हमारे साथ पर नहीं भी जुड़े, ऐसा भी हुआ ही है शायद, और हमारे धर्मेंद्र भाई इसराइल से हमारे साथ जुड़े। अफशा जी का बर्थडे है आज और आपको तहे दिल मुबारकबाद अफशा जी, और सभी दोस्तों को शुभकामनाएं आज के इस दिन की, और जन्मदिन की तो बहुत सारी शुभकामनाएं एक बार फिर से अफशा जी आपके लिए। अब कार्यक्रम ही संपन्न करना चाहूँगा, थोड़ी देर में होगा सुहानी रात।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाई पारमेलिन 3 दिन के राजकीय दौरे पर आज भारत आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पारमेलिन आज नई दिल्ली में विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति की समीक्षा के लिए वार्ता करेंगे। भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का 5वां दौर शुरू करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, भारत और रूस के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से बहुत अच्छे रहे हैं। सोवियत संघ कई मौकों पर भारत के साथ खड़ा रहा, खासकर

तब जब भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता खतरे में थी। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ के बोगीबील टर्मिनल से पहली अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। स्वतंत्रता के बाद यह पहली बार होगा जब डिब्रूगढ़ से किसी विदेशी बंदरगाह के लिए माल की खेप जलमार्ग से भेजी जाएगी। तमिलनाडु, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव का प्रचार समाप्त हुआ। मतदान मंगलवार को होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि भदोही जिले का नाम अब संत रविदास नगर भदोही होगा। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। ईरान ने कहा है कि अमेरिका जब तक उसकी 7 शर्तें पूरी नहीं करेगा तब तक होर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुपर इंटेलिजेंस फोर्स नामक नए सरकारी कार्यबल की घोषणा की है। ट्रंप ने कहा है कि यह कार्यबल सरकारी कोशिशों में तालमेल बनाएगा ताकि अमेरिका सुपर इंटेलिजेंस के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व जारी रखे। और एशिया खेल 2026 का जापान के नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है। भारत ने खेलों में 21 स्वर्ण, 27 रजत और 23 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में चौथा स्थान हासिल किया। इसी के साथ ये अब तक के मुख्य समाचार समाप्त होते हैं।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। अब समय है हमारे अगले प्रोग्राम सुहानी रात का, तो यूं ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री।

बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम रहा इससे पहले सुहानी रात। और अब हम बढ़ चले हैं उस दौर में जब हम बात करते हैं वो जो भुलाए ना बने, गीत सुनवाते हैं वो जो भुलाए ना बने। खैर आप रहे हमारे साथ तब तक, लेकिन उससे पहले एक परंपरा का निर्वाह और वो है अब तक के मुख्य समाचार। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाई पारमेलिन 3 दिन के राजकीय दौरे पर आज भारत आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पारमेलिन आज नई दिल्ली में विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति की समीक्षा के लिए वार्ता करेंगे। भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का 5वां दौर शुरू करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, भारत और रूस के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से बहुत अच्छे रहे हैं। सोवियत संघ कई मौकों पर भारत के साथ खड़ा रहा, खासकर तब जब भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता खतरे में थी। केंद्रीय पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल आज असम में डिब्रूगढ़ के बोगीबील टर्मिनल से पहली अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक यात्रा को झंडी दिखाएंगे। स्वतंत्रता के बाद ये पहली बार होगा जब डिब्रूगढ़ से किसी विदेशी बंदरगाह के लिए माल की खेप जलमार्ग से भेजी जाएगी। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों पर

और असम की एक लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव का प्रचार समाप्त हुआ। मतदान मंगलवार को होगा। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने देश भर में 150 से अधिक स्थानों पर नशा मुक्त युवा के लिए नशा मुक्त मार्च का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 1,00,000 से अधिक युवाओं और नागरिकों ने भाग लिया। ईरान ने कहा है कि अमेरिका जब तक उसकी 7 शर्तें पूरी नहीं करेगा तब तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुपर इंटेलिजेंस फोर्स नामक नए सरकारी कार्यबल की घोषणा की है। ट्रंप ने कहा कि यह कार्यबल सरकारी कोशिशों में तालमेल बनाएगा ताकि अमेरिका सुपर इंटेलिजेंस के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व जारी रखे। और जापान में एशियाई खेलों का आधिकारिक समापन हुआ। भारत ने खेलों के इतिहास में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। 21 स्वर्ण पदक सहित 85 पदकों के साथ भारत रहा चौथे स्थान पर। ये थे अब तक के मुख्य समाचार आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। आप जुड़े हैं हमारे साथ इस कार्यक्रम में जिसका नाम है भुलाए न बने। मैंने जिक्र भी किया, बस कुछ ही पल में हाजिर होते हैं खूबसूरत एक और खूबसूरत प्रोग्राम आपके नजर करने, आकाशवाणी रेनबो 102.6। इसके अलावा न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी आप हमारे साथ जुड़े हैं।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

आप जुड़े हुए आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाई पारमेलिन 3 दिन के राजकीय दौरे पर आज भारत आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पारमेलिन आज नई दिल्ली में विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर प्रगति की समीक्षा के लिए वार्ता करेंगे। भारत और कनाडा से ओटावा से में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का 5वां दौर शुरू करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, भारत और रूस के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से बहुत अच्छे रहे हैं। सोवियत संघ कई मौकों पर भारत के साथ खड़ा रहा, खासकर तब जब भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता खतरे में थी। केंद्रीय पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम में डिब्रूगढ़ के बोगीबिल टर्मिनल से पहली अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। स्वतंत्रता के बाद यह पहली बार होगा जब डिब्रूगढ़ से किसी विदेशी बंदरगाह के लिए माल की खेप जलमार्ग से भेजी जाएगी। तमिलनाडु, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव का प्रचार समाप्त हुआ। मतदान मंगलवार को होगा। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने देश भर में 150 से अधिक स्थानों पर नशा मुक्त युवा के लिए नशा मुक्त मार्च का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 1,00,000 से अधिक युवाओं और नागरिकों ने भाग लिया। ईरान ने कहा है कि अमेरिका जब तक उसकी 7 शर्तें पूरी नहीं करेगा तब तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुपर इंटेलिजेंस फोर्स नामक नए सरकारी कार्यबल की घोषणा की है। ट्रंप ने कहा है कि यह कार्यबल सरकारी कोशिकाओं में तालमेल बनाएगा ताकि अमेरिका सुपर इंटेलिजेंस के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व जारी रखे। और जापान में एशियाई खेलों का आधिकारिक समापन, भारत ने खेलों के इतिहास में 2रा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। 21 स्वर्ण पदक सहित 85 पदकों के साथ 4था स्थान पर रहा। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

आप जुड़े हुए आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। अब समय हो चला है हमारे अगले प्रोग्राम मिडनाइट मेलोडीज का, तो जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: कोयल सी तेरी बोली।

0: तेरी
1: हाय।
0: तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पारमेलिन 3 दिन के राजकीय दौरे पर आज भारत आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पारमेलिन आज नई दिल्ली में विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति की समीक्षा के लिए वार्ता करेंगे। भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का 5वां दौर शुरू करेंगे। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम में डिब्रूगढ़ के बोगीबील टर्मिनल से पहली अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। स्वतंत्रता के बाद यह पहली बार होगा जब डिब्रूगढ़ से किसी विदेशी बंदरगाह के लिए माल की खेप जलमार्ग से भेजी जाएगी। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव का प्रचार समाप्त हुआ। मतदान मंगलवार को होगा। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में 70वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने देश भर में 150 से अधिक स्थानों पर नशा मुक्त युवा के लिए नशा मुक्त मार्च का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 1 लाख से अधिक युवाओं और नागरिकों ने भाग लिया। ईरान ने कहा है कि अमेरिका जब तक उसकी 7 शर्तें पूरी नहीं करेगा तब तक होर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुपर इंटेलिजेंस फोर्स नामक एक सरकारी कार्यबल की घोषणा की है। ट्रंप ने कहा है कि यह कार्यबल सरकारी कोशिशों में तालमेल बनाएगी ताकि अमेरिका सुपर इंटेलिजेंस के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व जारी रखे। और जापान में एशियाई खेलों का आधिकारिक समापन। भारत ने खेलों के इतिहास में 2रा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। 21 स्वर्ण पदक सहित 85 पदकों के साथ 4थे स्थान पर रहा। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

सुबह के 4:07 और इस खूबसूरत गीत जिसकी आवाज़ थी महेंद्र कपूर साहब की फिल्म गुमराह से अभी आपने सुना। इस आगाज़ ने शुरुआत दी है उस प्रोग्राम की जिसे हम कहते हैं सारेगामा आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। इसके अलावा न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी हम उपलब्ध हैं। तो दुनिया जहान के किसी भी कोने से आप हमें सुनना चाहें अब

0: आप कभी भी सुन सकते हैं। अगर ये ऐप डाउनलोड नहीं हुई है आपके फ़ोन में या डिवाइस में किसी में भी, तो ज़रूर कीजिए और जुड़े हमारे साथ। प्रोग्राम है सारेगामा, मेरे यानी रजत के साथ आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। खूबसूरत गानों का संग्रह है, नए तो नहीं कहूँगा लेकिन हाँ, पुराने गानों को अब आप तक पहुँचाने का ये सही रास्ता है सारेगामा। और उन गानों को जो कहीं ना कहीं आपको यादों के झरोखों में ले जाते होंगे, कहीं ना कहीं मदद करेंगे एक खूबसूरत दिन की ताज़ा तरीन शुरुआत करने की। और जब आप होंगे तैयार ऑफिस के लिए, स्कूल या कॉलेज के लिए, जो भी आप करते हैं, तो ये गाने आपको हिम्मत भी देंगे और ताजगी भी देंगे और खुशगवार माहौल भी देंगे। इस उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। स्वीकार कीजिए मेरा अभिनंदन, मैं हूँ रजत आपके साथ।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
3: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

हाँ हाँ दैया दाय उठाय लियो गिर नक पर बंस बजावत देन चलैया जग के मोहन मन में भाए नित्य करत राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा।

0: गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग
1: बेटा।
2: यस पापा।
1: बरखोरदार।
0: यस डैडी। अपनी भाषा में बोलो। अरे हाँ हाँ आई एम सॉरी।
3: नमस्ते नमस्ते ओ पिताजी।
4: नमस्ते।
3: जय हिंद ओ पिताजी।
4: जय हिंद।
3: नमस्ते नमस्ते है सबको।
5: नमस्ते बाबू।
3: नमस्ते
0: नमस्ते नमस्ते नमस्ते, नमस्ते।

0: dum, na na na de dum, na na na de dum, na na na de dum, na na na de dum, de dum, de dum, de dum, de dum, de dum, de dum, de dum, de dum, de dum, de dum, de dum, de dum, de dum, de dum, de dum.
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
2: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तिरछी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
5: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आप जुड़े हुए आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार। भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का पांचवा दौर शुरू करेंगे। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पारमेलिन 3 दिन की राजकीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पारमेलिन आज नई दिल्ली में विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति की समीक्षा के लिए वार्ता करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल नई दिल्ली में 62वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में कहा कि रूस ऐसा देश है जो कई ऐसे अवसरों पर भारत के साथ खड़ा रहा जब भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता खतरे में थी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम में डिब्रूगढ़ के बोगीबील टर्मिनल से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। स्वतंत्रता के बाद यह पहली बार होगा जब डिब्रूगढ़ से किसी विदेशी बंदरगाह के माल की खेप जलमार्ग से भेजी जाएगी। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव का प्रचार समाप्त हुआ। मतदान कल होगा। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने देश में 150 से अधिक स्थानों पर नशा मुक्त युवा के लिए नशा मुक्त मार्च का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 1,00,000 से अधिक युवाओं और नागरिकों ने भाग लिया। ईरान ने कहा है कि अमेरिका जब तक उसकी 7 शर्तें पूरी नहीं करेगा तब तक होर्मुज जल डबरूमध्य बंद रहेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुपर इंटेलिजेंस फोर्स नामक नई सरकारी कार्यबल की घोषणा की है। ट्रंप ने कहा है कि यह कार्यबल सरकारी कोशिशों में तालमेल बनाएगा ताकि अमेरिका सुपर इंटेलिजेंस के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व जारी रखे। और जापान में एशियाई खेलों का आधिकारिक समापन, भारत ने खेल के इतिहास में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, 21 स्वर्ण पदक सहित 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: कल से तेरी बोली तेरी तेरे छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तो मैं सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने।

0: दूसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।